आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन में राहें उलझ जाएं और दिशा समझ ना आए तो प्रभु का नाम ही सही मार्ग दिखाता है।

इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि तदनुसार 2 मई 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको जानकारी दें, आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पे कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। 6:10 का समय रहेगा प्रोग्राम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर।

12:10 का समय होगा प्रोग्राम घर आंगन का। दोपहर एक बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

दोपहर 3:25 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते।

शाम 7:25 का समय रहेगा प्रोग्राम सांझ ढले का। 8:10 पर आप सुनेंगे मधुरिमा। रात्रि 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हार सिंगार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कोलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। यह सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला

0: Kings will take on Mumbai Indians at M. A. Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 7:10 हुए हैं। समीन पेश होता है आज का लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह।

0: है, खुद को देखना है ग्राउंड लेवल पे कि किस कोई हमें बाहर से नहीं आने वाला है भाई, आपके पास आमदनी अठनी है, क्योंकि हमारे पास जो भी बंदा आने वाला है वो हमें, हमारे पास हर कोई चीज़ सेल करने के लिए आता है, हमारे पास कोई भी चीज़ सेल करने के लिए आता है, बेचने के लिए आता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो जेब में हमारे पास पैसा है, अठन्नी है हमारे पास, हम क्यों 1 रुपया खर्च करेंगे।
1: जी
0: हमने देखना है कि भाई अगर हमारे पास जेब में जितना कुछ हमारे पास बचा हुआ है, हमें उसी हिसाब से शॉपिंग करनी है।
1: देखिए शबीर, यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है एतदाल। ये हमारे प्रॉफिट ने भी फरमाया है कि
0: सल्लल्लाहु अलैहि
1: एतदाल करें,
0: वसल्लम,
1: एतदाल रखें चीज़ों में, हर
0: बिल्कुल
1: मामले में एतदाल रखें। मान के चलिए कि मेरी जो सैलरी है ये 100 रुपये है महीने की,
0: बिल्कुल
1: तो मुझे कोशिश करनी है कि मुझे 80 रुपये में अपना सारा मैनेज करना है।
0: बेशक
1: अब ये मैनेज कैसे होगा,
0: बिल्कुल
1: इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना
0: प्लानिंग के साथ
1: पड़ेगा।
0: बिल्कुल एक बजट फ्रेंड बजट
1: आपके
0: बनाना
1: पास
0: है हमें,
1: बजट होना चाहिए
0: बिल्कुल
1: कि मेरे महीने का बजट
0: छोटी
1: ये
0: छोटी
1: है
0: चीजें लिखने हैं हमें,
1: एग्जैक्टली कि मुझे क्या खर्च करना है।
0: बिल्कुल
1: मेरा मेजर जो पहला मसला है वो है मेरा राशन घर में होना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: मेरे माँ बाप की अगर दवाइयाँ हैं, बच्चों की दवाइयाँ हैं, इनके
0: बेशक
1: लिए बजट रखना है,
0: बेशक
1: आपके बिजली की फी है, आपके
0: बिल्कुल
1: बच्चों की स्कूल फी है,
0: बिल्कुल
1: ये चीज़ें आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी।
0: बिल्कुल
1: और आपको कोशिश करनी है कि मैं 80 रुपये में ये कंप्लीट कर लूं।
0: बिल्कुल
1: और जब तक आप देखा देखी में नहीं है
0: बिल्कुल
1: तब तक आप इत्मीनान में हैं।
0: बिल्कुल
1: जिस दिन आप देखा देखी में आ गए कि
0: बिल्कुल
1: शब्बीर भाई ने आज अपने जैकेट जो पहनी है, इन्होंने बड़े ब्रांड की जैकेट पहनी है, मुझे भी ये चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तो मैं मारा जाता हूं।
0: बिल्कुल
1: हमें कोशिश करनी चाहिए, हर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ सिफात के साथ भेजा है,
0: बिल्कुल
1: हर किसी
0: बेशक
1: के पास अलग एक, वो कहते हैं ना, हर कोई स्पेशली एबल्ड है,
0: बिल्कुल
1: हर किसी के पास कोई खास
0: अपना हुनर है अपना,
1: हुनर है,
0: बिल्कुल
1: तो हर कोई अलग है, हर
0: बिल्कुल
1: किसी की उम्मीदें, हर
0: बिल्कुल
1: किसी की जो एक्सपेक्टेशंस,
0: बिल्कुल
1: सबकी अलग अलग है। हमें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है,
0: बिल्कुल
1: एतदाल में रहना है,
0: बिल्कुल
1: फिजूल खर्ची नहीं करनी।
0: बिल्कुल
1: इस पर हम और भी बात करेंगे, फिजूल खर्ची होती कहाँ पर है, कैसे होती है, और हम कैसे अपने बजट को और कटेल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सामिन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा शब्बीर ने क्यों करके रखा है, पहले ये नगमा सुनते हैं, नगमे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत।
0: नगमे से पहले तबरे साहब मैं यही कहना चाहूंगा,
1: जी
0: क्योंकि पयाम सुबह का भी यही थीम रहता है कि हम अपने सामाइन को बिल्कुल खुश करें,
1: बिल्कुल
0: और इनका ये जो नया दिन, हर नया दिन एक नई उम्मीद लेके आए, नया मौका लेकर आए,
1: जी बिल्कुल
0: आता भी है बिल्कुल, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ये अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है कि जिस तरह से आदमी सुबह उठ के अपने दिन को ले लेता है, उसी हिसाब से उसका दिन गुजर जाता है,
1: बिल्कुल सही
0: खुशी से ले ले खुशी गुजर जाता है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समईन का आज का दिन, बल्कि हर दिन खुशी से गुजरे, मुबारक
1: बिल्कुल
0: हो ये दिन। और इसी हवाले से, इसी सिचुएशन के हिसाब से हमने आज गाना क्यों करके रखा है, पता नहीं तबरेज भाई को ये पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनको भी पसंद आएगा और हमारे समईन को भी पसंद आएगा।

0: जैसमीन, सपना वो हो जाए पूरा जो हमने देखा है, मेरे दिल की ये दुआ। ये दुआ हमारे सब समयीन के लिए, और यहाँ पर मेरे तबरेज़ भाई बैठे हैं, इनके लिए भी, सबके सपने पूरे हों जो सबों ने देखे। आज सुबह उठ के, अपनी बिस्तर से उठ के आज एक नया सपना देखा होगा उन्होंने, एक नई उम्मीद के साथ। और हम उम्मीद करते हैं, यहाँ दुआ गु हैं इस प्रोग्राम पयाम सुबह में, कि उनका वो सपना सचमुच पूरा हो जाए।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने सपने की बात की है शबीर, हम दुआ ये वो इसके लिए भी हैं कि अल्लाह ताला आपके भी तमाम सपने पूरे करे।
0: आमीन।
1: लेकिन सपना हमने जो देखा, हमारे सामईन ने जो सपना देखा, सपने इंसान आंखें बंद करके देखता है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन को पूरा करने के लिए आंखें
0: खोलनी पड़ती है,
1: बिस्तरा छोड़ के निकलना पड़ता
0: है।
1: और जब तक आप अपना बिस्तरा छोड़ कर ना निकलेंगे, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, तब सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे।
0: बिल्कुल नहीं।
1: बात हम महंगाई की कर रहे हैं, आपने अभी गाने से पहले छेड़ी थी बात, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। अभी अगर हम देखें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं, और बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि आपको, हम सब लोग जानते हैं, सामीन भी जानते हैं, कि जो मिडल ईस्ट में इश्यूज पैदा हुए थे, रोनमा हुए थे, जिसकी वजह से ये सारा असर हमें देखने को मिल रहा है। अब इनसे हम कैसे निपटे, ये एक बड़ा चैलेंज।
0: बिल्कुल,
1: देखिए पहली बात यह कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, जिसपे हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और आजकल हम देखते हैं जहां पर जाने के लिए 15 मिनट लगा करते थे, आज ट्रैफिक कितना ज्यादा हो गया है, उसी सफर के लिए हमें एक घंटा लग जाता है, और उस एक घंटे में इतना ज्यादा पेट्रोल भी फूकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या करें, अब हम कैसे इसको मैनेज करें? इसके लिए कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर छोटा मोटा सफर है, उसके लिए हम या तो पैदल चलना शुरू करें, पैदल चलें और अपनी मंजिल तक पहुंचे, सेहत ठीक रहेगी। आपको वॉक की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती है। हमें ले लीजिए, हम आते हैं माइक्रोफोन के सामने बैठ जाते हैं।

0: कुर्सी पर बैठे रहते हैं, हमारी यहाँ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी हमारी सिर्फ जुबान की होती है
1: बिल्कुल
0: और थोड़ा सा दिमाग की, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें निकलना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: और अगर हम अब छोटे मोटे जैसे सब्जी के लिए जा रहे हैं तो
1: बिल्कुल
0: वॉक करके जाएं, सब्जी लेकर आए, या अगर आपको लगता है सब्जी के लिए थोड़ा सा दूर जाना है तो आप एक साइकिल रखें, फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, आपका पेट्रोल भी बचेगा और आप बहुत इत्मीनान से अपना सामान खरीद के घर ला सकते हैं, जो होता था, जो
1: बिल्कुल
0: पहले जमाने में भी होता था।
1: बिल्कुल
0: तो हमने साइकिल्स को छोड़ के अब स्कूटीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है,
1: बिल्कुल
0: हमने गाड़ियों का इस्तेमाल, बहुत
1: बिल्कुल
0: छोटे से सफर के लिए भी जाना होता है तो हम पैदल निकलते नहीं हैं,
1: बिल्कुल
0: गाड़ी लेके जाते हैं या स्कूटी लेकर जाते हैं, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे हम एक तो ये फ्यूल का खर्चा बचाएंगे
1: बिल्कुल
0: और फ्यूल एक ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ये खजाना है, लेकिन इस खजाने की भी कोई लिमिट है,
1: सही
0: ये
1: बात
0: ऐसा नहीं है कि इसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना बनता
1: बनता
0: रहेगा,
1: रहेगा
0: नहीं,
1: बिल्कुल ना
0: ये खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: इसलिए इसे बचाए रखना, इसका
1: बिल्कुल
0: इस्तेमाल तरीके से करना, वो फायदे दो देगा। एक, हमारा जेब बचा रहेगा,
1: बिल्कुल
0: हमारी सेहत बची रहेगी,
1: बिल्कुल
0: और एट द सेम टाइम यही जो फ्यूल्स हैं ये शायद आने वाले वक्त के लिए बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: ये एक चीज, इस तरह से अगर हम करें तो एक बहुत बड़ी रकम हम बचा सकते हैं। मैं
1: बिल्कुल
0: आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, आजकल घर बना रहे हैं, अपना नया घर बना रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो अपना वो जो सपनों का महल सजा रहे हैं वो सपनों का महल उनका मुकम्मल हो जाए और उन्हें अल्लाह ताला सेहत व सलामत उस घर में रहने की जो
1: अमीन
0: है उनको मौका मिले उस घर में रहने का अपने पूरे फैमिली के साथ। उनसे मैं परसों बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि तबरेज़, मेरे महीने के पेट्रोल का खर्चा जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का है।
1: ओहो
0: यहाँ तक मैं समझ गया। फिर उनने मुझे कहा कि मैं अभी, लाइक अभी मैं कह रहा हूँ ये 20 तारीख के आसपास की बात है,
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि मेरा ऑलरेडी 7 हज़ार रुपये पेट्रोल पे चला गया है। मैंने कहा वजह? कहा क्योंकि मुझे ज़मीन पे आजकल जाना पड़ रहा है, वहाँ
1: बिल्कुल
0: काम चल रहा है, वहाँ देखने के लिए जाता हूँ तो मुझे गाड़ी से जाना पड़ता है, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बता यार जिससे मैं ये फ्यूल के पैसे थोड़ा बचा
1: बचा
0: पाऊँ।
1: सकूं
0: मैंने कहा तेरे दो ऑप्शन, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आजकल हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ आई है, हमारे पास आई है इलेक्ट्रिक साइकिल्स जिसको आप पैडल भी मार सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और वो बैटरी से भी भागती है।
1: बिल्कुल
0: अगर आप थक चुके हैं, अब आप पैडल नहीं मार सकते तो आप उसको बैटरी पे कर लीजिए
1: बिल्कुल
0: और चलाइए,
1: एनर्जी वापस आ जाएगी फिर
0: एनर्जी
1: से
0: आप, अगर आपको
1: लाइए
0: लगता है कि नहीं मेरे में हिम्मत है तो आप उसको पैडल मार के ले
1: बिल्कुल
0: जाइए, उससे आपकी सेहत भी रहेगी
1: बिल्कुल
0: और आप अपनी
1: पेट्रोल भी
0: मंजिल
1: बचता
0: पे पहुंच
1: रहेगा
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: वही चीज मैंने उसको भी बताई
1: बिल्कुल
0: उसका भी, लेकिन एक ध्यान ये रखना है कि जो हम आजकल स्कूटीज देखते हैं, जो ई हमारा
1: स्कूटीज हाँ हाँ बिल्कुल
0: ई
1: उनमें भी
0: व्हीकल्स
1: हमें
0: हैं,
1: इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चार्जिंग के
0: उसमें
1: लिए
0: भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और जब हम इन बैटरीज को चार्ज करते हैं
1: बिल्कुल
0: उनमें से भी एक किस्म का फ्यूम निकलता है,
1: हाँ गैस
0: वो गैस
1: बिल्कुल
0: जो निकलती है दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, उसका भी हमें
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखना है, तो उसका भी जितना मिनिमम हम इस्तेमाल
1: बिल्कुल
0: कर सके वो बेहतर है।
1: सही बात है
0: फाइनली अगर हम सब लोग मिलकर
1: बिल्कुल
0: साइकिल्स का जो रिवाज है, जैसे
1: बिल्कुल
0: हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी ने साइकिल दे दी थी जगह जगह, आज भी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा दो लोग साइकिल का वो स्कैन करके साइकिल निकाल रहे थे, तो अगर हम साइकिल्स पे आ जाए तो बहुत सारे मामले आसान हो जाएंगे।
1: बिल्कुल तबरेज़ भाई ये बहुत ही अच्छी आदत है जो आपने साइकिल की बोली है क्योंकि इससे हमारा सेहत भी बचता रहेगा बल्कि बनता रहेगा
0: बिल्कुल,
1: और हमारा जो जेब है जेब
0: वो
1: में जो
0: जेब भी बची
1: हमारी
0: रहेगी।
1: जेब भी बची रहेगी हमारा पेट्रोल भी आप ये असासा है हमारे
0: हाँ
1: लिए सरमा
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: इसको बचाए
1: हमारी
0: रखना है
1: अगली जो जनरेशन है अगर हम
0: उनके
1: ही
0: लिए,
1: खत्म करते रहेंगे इसको तो उनके लिए वो कहते हैं ना तिमन खतर रोज़ कहीं
0: यही इशू जरूरी, आई शुड तीन खतर बचाऊं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तीन खतर बचाऊं मतलब छू कि अच्छे ऐते
1: اعتدالس
0: دالس
1: منز
0: مزے وان
1: بالکل اعتدالس منز امسات نس خرچاو کانہ تہ چیز سو روز سانی جنریشن مطلب سون پوی بروکن ان شاء اللہ ان والن چھ بروکن تم پتہ
0: ہاں
1: بیا
0: ان شاء
1: تم
0: اللہ
1: پتہ بیا ان شاء اللہ تہندی خاطر ہم ان کے لیے یہ اساسا
0: بالکل
1: بچا
0: صحیح
1: کے رکھے
0: بالکل صحیح
1: تاکہ تم تہ دن اس پگا دعا کہ نسا سانیو پشتو سانیو یمو کیا چھ سپتو
0: زٹھو
1: جدو یا زٹھو یا تمو سا اس سانی
0: بزرگو
1: خاطر
0: سانی
1: رت
0: تھومت کیا تھا
1: رت
0: مت
1: اس سانی خاطر کرمت یم سیت اس بروکن زندگی گزارن من مشکل ہوکن فیل فیس کر
0: وچھو
1: کے
0: من کیا دل ہنس کات کران دل من شو آج کل اے کیو آئی واریا خراب
1: بالکل
0: تا چھو لکن شاہ کھال نستے ما مصیبت بنا
1: صحیح حقیقت
0: تو وجہ چھو کہ تیوتا زیادہ پولوشن چھو
1: پولوشن ایئر پولوشن
0: سو پولوشن کتھ پٹ کرو اس وقت کنٹرول تا خطر چھ یمے چیز
1: یمے چیز
0: یمے
1: بالکل
0: چیز چھ اپناوی
1: بالکل
0: تاکہ دوہ نیر نہیں کی بے چھس بہ گزارش کران تمام بوزن والن چھٹ ڈیر چھ کن جائے آسان سمت استو زالان کہیں یہ
1: صحیح
0: چھٹ زالون چھ بڑ بار جرم نہ صرف مطلب جرمی یوت یہ چھ انسانیتس خلاف اک حرکت سو پائز نہ اس کرن کہیں۔ شبیر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو آج کل سبزیوں کے دام بڑھے ہیں سبزیوں کے داموں کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
1: اس سے پہلے کہ ہم سبزیوں کے بارے میں یا کچھ اور ٹاپک ہم چھیڑے ہمیں میوزک بھی سننا ہے اس کا بھی
0: بالکل
1: خیال رکھنا
0: بالکل
1: ہے
0: بالکل
1: اپنے
0: میوزک
1: سامعین کے
0: سنائیے،
1: لیے کیونکہ
0: میرے کو سنائیے
1: ہم نے بور نہیں کرنا ہے اپنے
0: کیونکہ اس سے
1: سامعین
0: پہلے
1: کو
0: جو نغمہ آپ نے سنایا تھا
1: ہاں ہاں
0: یسوداس کی آواز میں دیٹ واز ٹو گڈ، بہت اچھا۔

0: लगा मुझे,
1: थैंक
0: क्योंकि
1: यू
0: यसुदास की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी कोई और
1: या
0: नगमा?
1: चलिए इसके बाद पहले हम आपकी भी इच्छा पूरी करते हैं, अपने
0: बिल्कुल
1: सामीन भी इंतजार कर रहे
0: इंतजार
1: होंगे
0: में
1: कि क्या
0: होंगे,
1: सुनने वाले
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही,
1: बिल्कुल उनके लिए भी सुनाएंगे, उसके बाद बातें
0: बात को
1: और
0: आगे
1: भी होती
0: बढ़ाएंगे।
1: रहेंगी।
0: बिल्कुल
1: हमने क्यों करके रखा है, ये कश्मीरी नगमा है, ये इछो शमीमा देव ने आवाज़ में।
0: वाह क्या बात है।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल वेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
4: इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
5: अपने सपनों को दो एक पावरफुल डायरेक्शन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रेस्टीजियस MBA प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स अब ओपन है। CMAT स्कोर के बेसिस पर चूज फ्रॉम 4 करियर डिफाइनिंग ऑप्शंस: MBA, MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA इन क्राफ्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव MBA। यहां मिलेगी आपको क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी लीडर। याद रखें, सिलेक्शन होगा सिर्फ आपके CMAT स्कोर पर। लास्ट डेट एक्सटेंडेड है 4th मई तक, अभी भी वक्त है, लेकिन ज्यादा नहीं। अप्लाई नाउ और अपने मैनेजमेंट करियर को ले जाएं नेक्स्ट लेवल पर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेपिंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
6: तो समीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और इस वक्त समाप्त कर रहे हैं अपना फेवरेट लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। और उन समीन के लिए एक बार फिर बताना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है कि आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। और ये मीटर्स है 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शबीर खान, और मेरे साथ है इज्जत माब तबरेज मदनी।
7: अरे बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई। ये
6: सामिन
7: को बोलना ही चाह रहा था कि शबीर भाई ने अभी जब हम ऑफ माइक थे, ऑफ द ईयर थे, तो म्यूजिक बज रहा था, तो शबीर भाई बड़े कंसर्न है इस महंगाई को लेकर, और महंगाई पर वो बहुत कुछ लेकर मतलब अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा शबीर भाई से पहले वो महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा।
6: बिल्कुल तबरेज़ साहब, द्रजर शुवारियाज, द्रजर मतलब महंगाई के बारे में ये एक कंसर्न है, पब्लिक इशू है, मतलब ऑल ओवर हमारे जो खत्ता है कश्मीर का, ये पूरे खत्ते में ये कंसर्न एक है हर एक के लिए, हर किसी के लिए, चाहे लोअर क्लास फैमिली का हो, मिडिल क्लास का हो या हाई क्लास का हो, किसी भी क्लास का आदमी हो, उसके लिए एक कंसर्न है, इशू है। इसको टैकल किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह किया जा सकता है, जैसे तबरेज़ साहब ने भी फरमाया है इससे पहले, मैं इसमें तबरेज़ साहब की बात के साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि आए दिन हम इस रेस में लगे रहते हैं कि उसके पास अगर ये, उस बंदे के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास आमदनी नहीं है वो चीज़ बियर करने की, वो चीज़ अपने पास लाने की, फिर भी मैं इस रेस में लगा रहता हूँ कि बकर वजू वरुण कहना क्या कर मुझे इसके साथ ये
7: काम टक्कर में दिन,
6: मैं टक्कर में दिन। उसी हवाले से एक अख रुझान ज्यादा हमने पाला है, एक रुझान वो ये है कि अशदपान घर से आने, मेरे पास घर में रखने की जगह नहीं है, मगर फिर भी मैं इस दौड़ में लगा रहता हूँ कि किस प्रकार ये आज मेरे पास
7: आगे गड़ आने गड़ अनु सुन तो ठीक वन छ नेसेसिटी थी गड़
6: बिल्कुल
7: गरम में सवारी है बीमार देरी शा सा गाड़ी से
6: सही है
7: उतना जो ठीक
6: हकीकत
7: गाड़ी लेनी है, लेकिन अब ये गाड़ी कौन सी लेनी है?
6: बिल्कुल सही बात।
7: तत्मत सुपर ब्रांड छाड़ी तत्मत सुपर गड़ आने यमिश में आवका

0: अरे इसका हम पे, ये तो हम पे एक जिम्मेवारी आयद होती है कि हमें अपने सामाइन तक हाइलाइट्स पहुंचाने होते हैं, उन्हें मालूम पड़े कि आज पूरा दिन हम हमारे इस स्टेशन से उनके लिए क्या क्या पेश करने जा रहे हैं। आप प्लीज हाइलाइट्स पढ़ दें।
1: बहुत शुक्रिया।

0: पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाले बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया

0: में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17

चीन महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटे ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज

0: नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC Under-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आवाज है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की बिल्कुल मधुर आवाज तबरेज भाई की। मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। तबरेज भाई, यहाँ पर बनता है कि अपने सामईन को एक बार फिर बताएं कि जिन सामईन ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए ये बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव मॉर्निंग शो के साथ जिसका नाम है पयामे सुबह। और ये भी बताते चलें कि ये प्रोग्राम आप मीडियम और FM के अलावा, मीडियम वेव और FM के अलावा DTH पर भी समाप्त करते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हमको हमें सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं हमें मोबाइल ऐप AIR मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं आप हमें। तो क्या कहेंगे आप, अब हम फिर

0: समय चुन किया है आकाशवाणी श्रीनगर। जी हाँ, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। और आप पयाम सुबह सुन रहे हैं अपने साथियों के साथ। जी हाँ, मैं तबरेज मदनी, और मेरे साथ मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शब्बीर खां। शब्बीर, महंगाई की बात हो रही है, महंगाई में जब आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में हर दिन ये टॉपिक होता है, आज क्या रनोस्यून,
1: बिल्कुल
0: ये हर दिन का मामला है।
1: बिल्कुल बेशक।
0: इसमें भी बड़ा अच्छा तरीका था कि अगर हमने एक शेड्यूल बनाया होता, एक टाइम टेबल बनाया होता कि हफ्ते में 2 दिन सब्जी पकनी है, तो हमें मालूम होता कि सब्जी है आज, कोई भी
1: बिल्कुल
0: सब्जी ले आते,
1: सही।
0: या दाल बननी है वो भी है, या नॉनवेज पकना है वो भी है, पनीर बननी है वो
1: बिल्कुल
0: भी है। हमारे पास एक शेड्यूल होता तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: 5-6 साल लड़ाई कि आज ए मान हो
1: मां क्या
0: हा
1: रहना हुआ सर,
0: कम ए हा अच्छा
1: जू
0: काम
1: जो में
0: द्रो
1: खराब,
0: अच्छा करो बेशा सा ये हा कि मोछा सा त्रे मीडियम
1: खाद
0: दवैया
1: वगैरह हुई।
0: खा अच्छा सा मुतरा मसी छुन सही कीन हुई। आज छुवा तरीक अगर इस गरस में सब्जी वबदाओ वो जो बनो तो पानी गरज का मेन फादर घर टेरिस छतस पे टेरिस पे लगो मत लकूट।

0: भागा
1: बिल्कुल
0: यमलेट उस तिमो वोमुत वंदस मज उस तिमो वोमुत रोहन
1: सही
0: तो खुदा सवाल द्राय रोहन गेज ज
1: असल
0: तो मे बसान अस नेर यह
1: सीजन
0: सीजन रोहनस
1: बिल्कुल हाँ हाँ
0: तम अलव कम रोहन कोड़ तो वन वोवुक वोवुक पुदन
1: दानिबल
0: पुदन गरस मज ये तेज खोश कान आज पुदन सटिन खेन हेर अना शुर वाल पुदन बनान मे बड़ खोश कान लाइम फ्रेश लाइम सोडा चोन मे बड़ खोश कान बहु मज चवान तो उसके लिए पुदीना चाहिए तो फ्रेश मिंट मेरे घर में है फादरन वमस दानवल तम वमस अल तम वम लर मरसवांगन टमाटर वांगन ये सारा उन्होंने जो लगाया है ये गमलों में लगाया है और ये सब पूरा जो निकल रहा है गमलों से ही निकल रहा है।
1: सही बात है।
0: हमारे बहुत सारे साथी ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है।
1: हाँ हाँ।
0: जिनके पास जमीन है वो जमीन का इस्तेमाल करें, जिनके पास नहीं है वो बाकी चीजों के इस्तेमाल से सब्जी उगा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज की डेट में वर्टिकल गार्डन लगते हैं, वर्टिकल गार्डन दीवार पर आप बॉटल्स को काट के उसमें सब्जी लगा सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, आप देखिए दुनिया भर में क्या चलन है।
1: सही बात है।
0: अगर तो गरस मज सब्जी ड्राइव हफ्ते में अगर दही दे तो सब्जी गरम करव
1: लड़ाई
0: एक अच्छा खासा रकम जो है वो आप बचा पाएंगे।
1: दो चीज लड़ाई थी गसन काम
0: सब्जी फ्रेश फ्रेश फ्रेश सब्जी गरिज ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्जी जब आप खाएंगे तो आप बेटर फील करेंगे। सामान्य प्रोग्राम पयाम सुबह जारी है। महंगाई तो हमारे सर पर है लेकिन इससे निपटने के रास्ते भी हैं। इसको अगर आपने निपटना है तो महंगाई से बचने के लिए कोशिश कीजिए जरूर।
1: तबरेज भाई, इसी महंगाई के हवाले से हमने एक गाना चुना है। इसी हवाले से

0: सामईन तबीयत के बारे में यहाँ गाने में जिक्र आया था। तबीयत हमारी ठीक है और हम चाहते हैं हमारे तमाम सामईन की तबीयत ठीक रहे, लेकिन वक्त हो चला है खबरों का। ये नगमा आगे मौका मिला तो आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली जहाँ से आप सुनेंगे खबरें।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल में दो असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। IMD ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरा नुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल

0: फाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। और फुटबॉल में भारतीय खवातीन की टीम चीन में 21 साल बाद 17 साल तक की उम्र के खवातीन के AFC एशियाई कप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने मगरी बंगाल के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में मगराहाट पश्चिम असेंबली हलके के 11 पोलिंग स्टेशनों और डायमंड हार्बर असेंबली हलके के 4 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की जानिब से मौसूल रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है। मगरी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इन पोलिंग स्टेशनों पर बुध के रोज वोट डाले गए थे। रिपोर्टों की बुनियाद पर कमीशन ने इन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाले चुनाव का कल अदम करार दिया। कमीशन ने सिलसिले में मगरी बंगाल के आला चुनाव अफसर को तहरीर भेजी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मगरी बंगाल के 2 हलकों के 15 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। चुनाव कमीशन ने बेजाबतगियों की इतलात मिलने के बाद इन मराकज पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए थे। इस दौरान एक और वाकये में सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की फौरी सुनवाई के लिए खसूसी बेंच कायम की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने गिनती के मराकज पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के जरिए गिनती कराए जाने का हुक्म दिया था। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच आज सुबह 10:30 पर इस मामले की सुनवाई करेगी। वोटों की गिनती का अमल पीर को किया जाएगा। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। जुमेरात को कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की अर्जदाश्त को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि अदालत गिनती के अमल की तकरूरी के बारे में इंतखाबी कमीशन के फैसले में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। इसके जवाब में पार्टी ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कल छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बिला ताखीर सुनवाई को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी बेंच तशकील दी। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल से मकानात की फहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इन रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में अजखुद शुमारी के अमल के मुकर्रा 15 दिन मुकम्मल होने के बाद ये काम शुरू हुआ। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: उमूर दाखिला की वजारत के मुताबिक ये अमल इस माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान तरबियत याफ्ता अमला घर घर जाकर आदाद शुमार इकट्ठा करेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अजखुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके बाद 16 मई से 14 जून के और इन रियासतों और मरकज के दरमियान के जेर इंतजाम इलाकों में घर घर जाकर मकानात की फहरिस्तबंदी का अमल अंजाम दिया जाएगा। मर्दमशुमारी 2027 के लिए अपनाए गए डिजिटल तरीके के हिस्से के तौर पर अब तक तकरीबन 82 लाख घरों ने सरकारी पोर्टल SE.census.gov.in के जरिए खुद शुमारी की सहूलत से इस्तेफादा किया है। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने खाम तेल के वसीले की बुनियाद को 41 मुल्कों तक तौसी दे दी है। पहले इन मुल्कों की तादाद 27 थी। ये तौसी तवानाई के आलमी बहरान के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। जुनूबी गुजरात में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ने बहरान से निमटने में बुनियादी किरदार अदा किया है। घरेलू पैदावार में इजाफा करने के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि रिफाइनरीज में LPG की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और हमने घरेलू पैदावार में 60% तक इजाफा कर दिया है। ये पैदावार पहले 36,000 मीट्रिक टन रोजाना थी, जबकि अब यह पैदावार 54,000 मीट्रिक टन रोजाना हो गई है। जनाब पुरी ने आलमी कीमतों में इजाफे से अपने सार्फीन को महफूज रखने के लिए किए गए इकदाम का भी जिक्र किया।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और

0: हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की ताजा तरीन तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुजाकरात पर मबनी एक हल्के मंजरनामे पर शक का इजहार किया है और मजीद कशीदगी के खतरे का इंतबाह दिया है। ईरान ने अपनी असर नौ पेशकश सालिसों के जरिए दी थी, जिसकी तस्दीक सरकारी मीडिया ने की। ट्रंप ने एतराफ किया है कि ईरान ने मुजाकरात में पेशरफ्त की है, अलबत्त उन्होंने कहा कि वह पेश की गई शराइत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जो वो कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने ईरान की क्यादत को बेरब्त करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार गैर एतमादी का इशारा मिल रहा है। फारस खबर एजेंसी समेत ईरान के सरकारी राबते वाले मीडिया ने बताया है कि मुल्क की क्यादत अंदरूनी गैर इस्तेहकाम की कयास आराइयों से निमटने की निगरानी में पूरी तरह मसरूफ है। यह सिफारती तातुल लबनान में तशद्दुद में इजाफा हो जाने के दौरान पेश आया है। लबनान में इसराइल के हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिससे अमरीका की सालिसी वाले पिछले महीने के जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्ला ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, सिक्किम और जैली हिमालयी मगरी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्त साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले तीन दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाजाबता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई, जो इस खित्ते में रेल राबतों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2000 रुपए के करेंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। RBI ने करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और यह 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रुपये थी। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सहूलत RBI के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है, जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमलावरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुतहदा अरब अमारात जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA से, जो 4 साल पहले अमल में आया था, भारतीय किसानों, MSMEs और

0: जी तब्रेज, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा और उसकी सुर्खी, कश्मीर में पायदार अमन व अमान, देरपा इस्तेकाम और तरक्की व खुशहाली, हमारा अजम, लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह, सिविल इंतजामिया और अवाम के साथ करीबी तालमेल तरजीह।
1: मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और खबर तश्वीश नाक कह सकते हैं। जे एंड के स्प्रिंग रेनफॉल डेफिसिट स्टिल एट 24%। देखिए, ये सोचने की बात है शबीर, हमने इतनी बारिशें देखी पिछले इन दिनों में।
0: बिल्कुल,
1: लोग कह रहे हैं कि रूदी छुन मकला।
0: हाँ सही,
1: रू छुन मकला की हिंद, बट स्टिल स्प्रिंग के रेनफॉल के हिसाब से अभी भी हम 24% कमी में हैं। पानी 24% कम गिरा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस चीज को निपटे। जी
0: तब्रेज, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे समाज में उर्दू के हवाले से, उसी हवाले से, मतलब उर्दू, मतलब सुनने में आया है कि इसको हटाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक ये बात सच है। उसी हवाले से एक सुर्खी अखबार में, मेरे उर्दू रोजनामे में है, मेरे सामने है, मैं आप तक, अपने समय तक पहुँचाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं किया, वजीर आला, हुकूमत ने महज अवामी राय तलब की और अपोजिशन गलत मालूम फैलाने लगी। एक और सुर्खी इसी अखबार से,
1: जी,
0: आबी जखायर के तहफ़ के लिए जामा इकदाम तेज, 1810 की निशानदेही, डल और वुलर समेत बड़ी झीलों की माहौलियाती निगरानी, इंसिदाद तजावुजात मुहिम जारी।
1: मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और खबर कुछ इस तरह कि चाइल्डहुड ओबेसिटी सर्ज, लूमिंग हेल्थ क्राइसिस फॉर यंगर जनरेशन। ये बड़ा प्यारा सा आर्टिकल लिखा गया है, इसमें आगे लिखता है अखबार कि 1 in 10 चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज ओवरवेट इन J&K। ये समझने की बात है, जो हमारे बच्चे जो जंक फूड की तरफ आ रहे हैं, जंक का जो चलन बढ़ गया है, उसकी वजह से ये ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी ही जड़ है मुख्तलिफ
0: बीमारियों की, जिसमें हार्ट की बीमारी,
1: हार्ट की बीमारी है, मतलब ये हार्ट के अलावा हम देखते हैं बच्चों में थायराइड बढ़ रहा है, उनमें हाइपरटेंशन आ रहा है, उनमें आज की डेट में फीमेल्स में PCOS, PCOD इस तरह की बीमारियां भी देखी जा रही हैं, एंड द रीजन इज जंक फूड एंड प्लास्टिक।
0: एग्जैक्टली। तब्रेज भाई, अभी समीन को हम बताते चले कि सुर्खियां जारी हैं, फिलहाल रुकते हैं चंद तजारती पैगामात के लिए।

0: लोग जुड़ने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को ड्रग फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है।
1: जी।
0: इसी अखबार के स्पोर्ट्स पेज से खबर, पुलवामा कबड्डी लीग 2026 बिगिंस, इनॉग्रल थ्री डेज टूर्नामेंट पार्ट ऑफ जे एंड के एंटी ड्रग स्पोर्ट्स ड्राइव एट पुलवामा क्रिकेट स्टेडियम। देखिए ये भी जुड़ा हुआ है इसी से कि ड्रग फ्री करना है। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी, ईरान विल प्ले वर्ल्ड कप मैचेस इन यूएसए, फीफा प्रेसिडेंट गिनी इन्फेंटिनो, इनका बयान आया है कि ईरान वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा।
1: जी तब्रेज, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा और उसकी सुर्खी, मरकजी पेकेप्शन का यकुम जून से 4 जून तक श्रीनगर में कयाम, 16 मई तक याददाश्त जमा कराने और मुलाकात के लिए दरख्वास्तें देने की हिदायत। और तब्रेज एक और सुर्खी एक रोजनामे से, उर्दू रोजनामे से
0: जी,
1: जो दरबार मुंह के हवाले से है, क्योंकि दरबार मुंह तो अब 4 मई से शुरू होने वाला है, यहाँ पर एक बार फिर से यह रिवायत कायम होने जा रही है, तो इसी हवाले से एक सुर्खी मेरे पास है उर्दू रोजनामे से, 4 मई को श्रीनगर में हुकूमती कामकाज का आगाज और 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा 2026, सरकारी अफसरों व मुलाजमीन रिकॉर्ड और अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम।
0: जी तो इस तरह से अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई, हमने सामने तक अखबारों की सुर्खियां पहुंचाई। इसके अलावा अगर आप सुर्खियां पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा, अखबार खरीदना पड़ेगा और उस अखबार को चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय करना पड़ेगा।
1: तब्रेज भाई, हमने तो बहुत मतलब अहम अहम सुर्खियां जो
0: वो सामने तक पहुंचा दी। जी
1: वो पहुंचा दी हमने।
0: जी बिल्कुल सही,
1: आपने सही वजह फरमाया कि वो अखबार पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, खर्चा करें उसके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कर ही सकते हैं।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: समय ने अब ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और अब समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। जी हाँ, लाइव मॉर्निंग ट्रांसमिशन है ये जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। समय हम बात कर रहे थे आज सुबह से ही, हमने महंगाई की बात की और महंगाई पर हम बात कर रहे हैं और उसके अलावा हमने सब्जियों की बात की। फीमेल्स को हमारी जो है सब्जियों के लिए निकलना पड़ता है, अक्सर व बेशतर हमने देखा है फीमेल सब्जियों के लिए जाती हैं, बाजार से खरीदारी करती हैं। लेकिन अगर मेल्स चाहें तो मेल्स आज की डेट में बाजार से जब सब्जी खरीदते हैं तो वो हफ्ते भर की सब्जी ला सकते हैं, क्योंकि आज हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर की सहूलियत है और बहुत सारे तरीके हैं सब्जी को प्रिजर्व करने का। अगर वो करें, क्योंकि फीमेल जब बाहर जाती हैं तो फीमेल्स को एक दिक्कत रहती है कि उनको कभी कभी वो एटमॉस्फेयर बाहर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, वो चीजें झेलनी पड़ती हैं जो जो उनके लिए सही नहीं होती।
1: बिल्कुल, मतलब सुद अगर सब्जी है मतलब बार्गेनिंग कहीं अगर मर्द गए सुबह सुधा याद में याद में मगर फीमेल नबर यह बिचर मतलब बार्गेनिंग करें पत अगर दुकानदार मतलब यहाँ पर ऐसे भी दुकानदार है मतलब खुदगर्जी बन गए तुम जो दाम बता दिया
0: वही देने ही देने हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसलिए हमें चाहिए कि हम खवातीन के लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि वो कंफर्टेबल फील करें, वो सेफ फील करें, वो खुशी महसूस करें। अगर वो घर से बाहर आती हैं तो उन्हें खुशी का एहसास हो। आज इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन बात हो रही है महंगाई की। महंगाई हमें आज की डेट में मार रही है और इससे बचने के लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम महंगाई से कैसे बचे।
1: जी तब्रेज भाई, हमने सामीन से अपने प्रोग्राम से पहले वादा किया था, अगर हमें टाइम मिल गया, वक्त मिल गया वो नगमा आप तक पहुंचाने का, तो मिल रहा है हमें, लग रहा है कि अभी मिल गया हमें समय उन तक ये नगमा पहुंचाने का, तो अभी सामीन के लिए मुझे लग रहा है वो इंतजार कर रहे होंगे जो हमने आधा ही नगमा चलाया
0: जी, जी, जी,
1: पूरा उनके लिए चलाएंगे।
0: बिल्कुल।

कुछ पैसे लेकर पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे।

0: समीन आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। इस वक्त समय हो चला है खबरें सुनने का। समाप्त कीजिए पहले कश्मीरी, उसके फौरन बाद उर्दू में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर 9:20 सपद खबरन हुंद बुलेटिन हेठ चुस्बु खुर्शीद अहमद। आज सपूद जम पेठ श्रीनगर बापत सीधे सियोद वंदे भारत रेल सर्विस हुंद बाजाब्त बड़ आगाज। जम के तवी रेलवे स्टेशन पेठ सपूज आज सुबह सुल 6:00 पेठ गोडनिच वंदे भारत रेल गाड़ी श्रीनगर बापत रवाना। तो पाओ याद रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णवन 30 अप्रैल जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पेठ श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस झंडी हेवित रवाना करमच। अत दौरान को रेल मन सफर कर मुसाफिरों खुशी बावान वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद शुक्रिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोनमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंदिस क़यादतस मन भारतन एतमाद वकार तो तरक्की हुंद अख नव दौर वुचमुत। एल जी एस लोक भवन जमे गुजरात महाराष्ट्र किस यौमित आसीस किस मौकस पे मनकद तकरीब खिताब करान तमो वोन आज दुरुस्त दुनिया अंदर भारतीय बरदारी फख्र महसूस करान तो मुल्क अंदर खुद एतमदी हज नव लहर पैद ग जत अक तरक् याफ्त मुल्क ख्वाब हकीकत बनान बापत तमाम तबकन मुतहद करान।
2: मैं इन दोनों राज्यों को भारत के विकास के इंजन के रूप में देखता हूं, जिससे विकसित भारत की यात्रा को नई गति मिली। मुझे लगता है कि भारतीयों के भीतर एक नया आत्मसम्मान पैदा हुआ है। समाज का हर एक वर्ग मिलकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है। हम सबका सौभाग्य है गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर भारत माता को बेड़ियों से आजाद कराने वाले अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने का अवसर हमें मिला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने में जुटा है।
1: लोक भवन जम को रात मुख्तलिफ शख्सियतों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सी मुलाकात। यह दौरान मुख्तलिफ सियासी तो समाजी मामल वतलान आए यम एल जी एन गौर सान बूझ। मुलाकात कर वाले मं पार्लियामेंट मेंबर संजय सेठ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद सदर सैयद मोहम्मद अलता बुखारी तो सबक डी डी सी मेंबर तो बीजेपी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन शामिल। वजीर अला उमर अब्दुल्ला वोनमुत सरकार मुलाजमन जबर सहूलत दस्तियाब कर वाद बंद। यम कथ बावि वजीर अला सेमपुर पापर सरकारी मुलाजमन बापत 90,65,00,000 रोपयन हंद लागत समीर कर आमतन 308 रिहायशी यूनिटन दस तुल दौरान पत् मीडिया सत कान वो तमो उर्दू जबान नौकरी हज अहलियत नश लोब थान कह मनसूब। तमो वो अमे हवाल पी डी पी एस कट कड़ान
3: हमने उनसे कहा ना खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड ड्रॉपिंग अ सब्जेक्ट। ड्रॉपेज की फाइल आज भी मेरे टेबल पे है। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो वजीर अला उमर अब्दुल्ला टेक्यून पुलवाम किस चौहरस बच्चे मोहम्मद हंजला सिंदिस दबजन शुपियन गरकियाब सपदनस पे सठा दुख तो अफसोस बोमुत। पन्न बोन बोन सोशल मीडिया पोस्टन मं यह हादसे दिल खराश वाक करार दिवान तमो अमिस शुरि सिंद रूह के अबदि सुकून तो लवैकीन हंदे सब्र बापत दुआ मोंगमुत। ठम मरकजी पे कमीशन कर अवल जून पे चूरमिस जूनस तमाम श्रीनगर दौर। अत सिलसिलस मे पे कमीशन किस डायरेक्टर सिंद तरफ अख नोटिफिकेशन जारी कर आम तालुकदारन वन आमुत जम कर यम रेत शुरहमिस तारीखस तमाम यादाश्त मुलाकात बापत पन दरखास्त पे कमीशन च वेबसाइट 8cpc.gov.in पे आनलाइन जमा। तालुकदारन यह वन आमुत जम कर आनलाइन मेमोरेंडम जमा कर बापत हासिल सपदन वोल यूनिक

0: और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा, इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट यूनाइट नेशंस जम्मू कॉन्फ्रेंस में तलबा के एक इज्तम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तरक्की पसंद और खुशहाल जम्मू कश्मीर की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार को उजागर करते हुए मुनशियात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए इज्तमाही कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुनशियात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल के समाजी ताने बाने और उमंगों के लिए संगीन खतरा है। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, प्रोग्राम चल रहा है लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह।
2: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रीड।
0: न्यूज रीड का ताजा शुमारा लेकर मैं बसारत गुल। हमारे आज के शुमारे में श्रीनगर और जम्मू के दरमियान भराए रास रेल खिदमत का बाजाबता आगाज आज से, रेल सर्विस का वसी पैमाने पर खैर मकदम। लेफ्टिनेंट गवर्नर का आब हवा की तब्दीली के नतीजे में पैदावारी सेक्टर को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इख्तराई पॉलिसी इख्तियार करने पर जोर। ज़िराअत के मरकजी वजीर ने श्रीनगर में चौथे मरहले के तहत करीब 3,500 करोड़ रुपए के सेंक्शन लेटर वजीर आला को किए तफवीज। और वादी में मुनाकिदा 3 रोजा चिंतन शिविर के आखिरी रोज श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज जारी। अब इन और दीगर मौजूदात की तफसील। जम्मू से श्रीनगर तक बराए रास रेल खिदमत का 30 अप्रैल से रस्मी आगाज हो गया और आज से यह सर्विस बाजाबता तौर पर शुरू हो गई है। रेलवे के वजीर अश्नवी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस को झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना करने के मौके पर कहा।
3: प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन लास्ट ईयर किया था और वंदे भारत सर्विस चालू की थी। 8 कोच की ट्रेन को 20 कोच की ट्रेन में अपग्रेड किया गया है आज, और जो कटरा से नगर चलती थी उसको एक्सटेंशन करके जम्मू से स्टार्ट। ये जम्मू कश्मीर के सभी जनता के लिए, सभी आवाम के लिए, सभी नागरिकों के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहेगा।
0: इस मौके पर वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मम्लिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा,
4: इस वंदे भारत की खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी, और वो ये कि जम्मू से श्रीनगर का इसका सफर निहायत ही रोमांचक। एक तरफ जहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, वहाँ एक बार फिर से फिल्मी दुनिया इस तरफ रुख करेगी, और अनेकों ऐसे रास्ते में मकान है जो निहायत ही खूबसूरत है, निहायत ही मनमोहक है, लेकिन वो नजर में नहीं आए क्योंकि वहाँ पहुँचना दुश्वार था। ये भी हमारे लिए दर्शन और पर्यटन का एक।
0: नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक ये रेलगाड़ी 20 डिब्बों पर मुश्तमिल होगी। वाजह रहे कि इस रेल सर्विस का सियासी, समाजी और अवामी सतह पर वसी खैर मकदम किया जा रहा है। आकाशवाणी न्यूज के नामा निगार ने इस ट्रेन से सफर करने वाले कुछ अफराद के साथ बात की जिन्होंने अपने ख्यालात का कुछ इस तरह इजहार किया।
5: मेरा नाम अर्चना कौशल है। अब जम्मू के लोगों को बहुत ही फायदा होगा, कटरा के लिए, कश्मीर के लिए, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा जाने के लिए जितने भी यात्री, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी का विषय रहेगा।
6: राकेश कौर मेरा नाम है। आज एक ऐतिहासिक पल है, खासकर भारतीय रेल के लिए। पहले तो सड़क का यूज होता था या हवाई, सड़क में टाइम लगता था, रेल के माध्यम से बड़ा अच्छा रहेगा। ट्रेन को डिजाइन किया गया है उस तरीके से, इसको कश्मीर का भी टेम्परेचर में ध्यान रखा गया और जम्मू को भी ध्यान रखा गया है।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बराह रास रेल सर्विस से कश्मीर खिते में मईशत और सियाहत को मजीद फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सर्विस से कश्मीर का राबता मुल्क के बाकी खितों के साथ हर मौसम में बहाल रहेगा।
7: इस दिन का हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि अब जम्मू में बैठ के हम ट्रेन से सवार होकर श्रीनगर पहुंच सकते हैं। अब हमें यहां से गाड़ी के जरिए कटरा या कटरा के जरिए गाड़ी में जम्मू आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल मंत्री साहब से मेरी एक नौजवाना गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में एक इनलैंड पोर्ट, एक ड्राई पोर्ट की बहुत अहम जरूरत है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आब हवा की तब्दीली की वजह से ज़िराअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इख्तराई पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया है। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट

0: एग्रो इकोसिस्टम इनोवेशंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क से मुतालिक एक कौमी समिट से खिताब करते हुए एलजी ने कहा,
1: समय आ गया है हम इंक्रीमेंटल चेंजेस से आगे बढ़े और एक व्यापक साइंटिफिक और किसान केंद्रित परिवर्तन को कैसे इस देश में ड्राइव किया जा सकता है इस पर काम करें। लक्ष्य भी मुझे लगता है कि स्पष्ट होना चाहिए कि लैब टू लैंड की यात्रा के बीच समय को कितना हम कम कर सकते हैं। मैं सभी साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स से आग्रह करूंगा कि अभी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि मार्जिनल फार्मर्स क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे कम जिम्मेदार है पर सबसे ज्यादा प्रभावित भी वही, और इसलिए उनके साथ न्याय कैसे इसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरी बात, किसान केवल अन्न उत्पादक नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी परंपरा हमारी संस्कृति फूड सिक्योरिटी के संरक्षक हैं और ऐसे भविष्य के निर्माण के साझीदार भी जो सुरक्षित स्थायी और समृद्धि देती।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मनुष्यात की लानत से बचाने के लिए अपने आजम को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत हमारे समाजी ताने बाने को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। उधमपुर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनाकिदा पद यात्रा और बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद एलजी ने कहा कि समाज के हर फर्द को मनुष्यात के खिलाफ जंग में अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए।
1: बहुत लंबे समय से ड्रग्स जम्मू कश्मीर के सपनों का विनाशक रहा, नशे की लत ने हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को हमसे छीना है, पारिवारिक बंधनों को तोड़ा है। इस अभियान में हमें सभी प्रकार के विभाजन से, वो क्षेत्र का विभाजन हो, वर्ग का विभाजन हो, धर्म का विभाजन हो, इसके ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर वासियों के रूप में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेना होगा।
0: ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में न सिर्फ सड़कों की तामीर बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए वादाबंद है। एसके आईसीसी श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे मरहले के दूसरे बैच के 3,566 करोड़ रुपए के सेंक्शन लेटर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंपने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ एक साल में 8,000 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट मंजूर कराना एक तारीखी हसूलियाबी है।
2: दिल के द्वार भी खुले हैं और दिल्ली के द्वार भी खुले हैं। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली संपन्न समृद्ध शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर हमें चाहिए।
0: इस मौके पर वजीर मौसूफ ने 24 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए डे एनआरएलएम के तहत 4,568 करोड़ रुपए मंजूर किए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जग्राफियाई और मौसमी हालात के तनाजुर में बेहतर सड़क राब्तों का होना निहायत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि PMGSY के पहले मरहलों के दौरान दूर उफ्तादा इलाकों को स्कूलों बाजारों और अस्पतालों के साथ जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि सरकार मंजूर शुदा प्रोजेक्टों की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाकर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की वादाबंद है।
3: हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने दिया है उसका मैचिंग जो यूटी शेयर हमें देना होगा वो हम आपको दे देंगे। और जमीनी सतह पे यहाँ जितने ऑनरेबल MLA बैठे हुए हैं लगभग हर किसी का प्रोजेक्ट जो है इस PMGSY फेज 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने सैंक्शन कर दिया है। इन कामों को हम जल्दी शुरू करके इनके इलाकों में लोगों का मुस्तकबिल जो है वो हम बदल देंगे। सड़कों से लोगों की जिंदगियां बदलती।
0: इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मंजूर शुदा सड़क प्रोजेक्टों की बदौलत देही इलाकों के लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
4: 330 सड़कों का जो बैच आज यहाँ पे अनाउंस हुआ है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये बैच जो है PMGSY सड़कों का अनाउंस किया है, क्योंकि ये गाँव देहात ग्रामीण जो हमारे दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं ये उनकी सड़कें हैं।
0: कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने मरकजी वजीर ज़िराअत शिवराज सिंह चौहान के नाम एक खुला खत लिखने के अलावा वजीर मौसूफ से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के ज़रई शोबे और बागवानी के सेक्टर से जुड़े मसाइल, उनके निपटारे और इन दोनों शोबों में बेहतरी लाने की कई तजावीज रखी। न्यूज रील से बात करते हुए बशीर अहमद बशीर ने इस बारे में कहा,
5: हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए जो उनके साथ मुद्दे उठाए डिजीज फ्री प्लांटेशन जिसका वादा उन्होंने पिछले साल किया था, उन्होंने कई साल इंशाल्लाह इसका हम ऐलान करेंगे। सी ग्रेड और फॉलन फ्रूट जो हमारे गिरान माल है उसके लिए MI स्कीम की चालू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस फॉर हॉर्टिकल्स इंडस्ट्री और फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीनिंग प्लांट प्रोग्राम एट वागुरा सोपोर। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी नरम दिल्ली से सारे हमारे मुतालबे सुने और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब इम्प्लीमेंट इसी साल होंगे।

0: श्रीनगर में मुनाकिद हुए तीन रोजा चिंतन शिविर के आखिरी रोज खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज की रस्म इजराई अंजाम दी। इस दस्तावेज में मुल्क में खेलों के मंजरनामे को मजीद मुस्तकम करने का एक कौमी नजरिया तरतीब दिया गया है। तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: आने वाले 10 साल में हम 1 से 10वें क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में कैसे उभरे, हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग देश में कैसे हो, देश में मेडल टैली में कैसे बढ़ोतरी हो, देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कैसे बने, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करा जाए, उसके पर विस्तृत डिस्कशन हुआ। सभी स्टेट की भी उसमें सहभागिता रही।
0: इस मौके पर 15 रियासतों के वज़राए खेल और खेलों से जुड़े कई नामवर शख्सियात मौजूद थी। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चिंतन शिविर से खिताब करते हुए जमीनी सतह पर गांव देहात में खेलकूद के कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत उजागर की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी ने जम्मू सूबे के डोडा जिले में वक्फ बोर्ड के पहले कसीरुल मकासिद स्पोर्ट्स स्टेडियम और तफरी मरकज का इफ्तिताह किया। खेल मुकाबलों के लिए जदीद सहूलियात से लैस ये स्टेडियम जम्मू कश्मीर में अपनी नवीयत का पहला स्टेडियम है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने कहा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में आवाम की फलाह के लिए ठोस इकदाम कर रहा है।
2: खेलने की जगह मिली है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, वो काम करे जो वाकई में कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमें आने वाली पीढ़ी को कुछ फायदा दे।
0: इतलात और नशरियात की मरकजी वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रतुल कुमार ने कश्मीर और करगिल का 5 रोजा दौरा किया। अपने दौरे के आगाज पर 23 अप्रैल को उन्होंने श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी श्रीनगर का दौरा करके अफसरान के साथ एक मीटिंग में इन इदारों की कारगुजारी का जायजा लिया। करगिल के दौरे के दौरान उन्होंने वहां आकाशवाणी स्टेशन के कामकाज का जायजा लिया। प्रतुल कुमार ने करगिल वार मेमोरियल पर भी हाजिरी दी। न्यूज रील के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: 6 महीनों से कोशिश कर रहा था कि इस स्पेशल जगह को विजिट करूं, कारगिल को। ये हमारे देश का एक ताज है, यहाँ पे स्टेशन स्थित है, यहाँ पे रेडियो की लिसनरशिप बहुत अच्छी है और सिमिलरली हमारे टीवी की भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। दर्शन की जो हमारे कार्यक्रम बनते हैं वो सभी जो यहाँ पे लैंग्वेजेस के बने हैं, प्लस जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिस तरह के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं वो ये रिले कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि हमारे रेडियो जो कारगिल से रिले होता है उसकी लिसनरशिप बहुत अच्छी है और लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं।
0: मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में पीएम श्री स्कूलों के लिए माली साल 2026-27 के लिए 243 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पीएम श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के प्रोजेक्ट के अप्रूवल बोर्ड ने इस सिलसिले में एक मीटिंग मुनाकिद की। इस दौरान बोर्ड ने गुजश्ता साल के दौरान स्कीम की अमलावरी पर माली और मादी पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर अफसरान को जानकारी दी गई कि माली साल 2025-26 के लिए दस्तियाब जायदा 200 करोड़ रुपए में से 194 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की गई है। दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक टीकाकारी से मुतलिक हफ्ता मनाया गया। यह हफ्ता मुख्तलिफ बीमारियों में इंसानी जानों के बचाव के लिए टीकाकारी की अहमियत उजागर करने के मकसद से मनाया जाता है। इस ताल्लुक से डायरेक्टोरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने न्यूज रील को बताया,
4: हमारी कंट्री में तो अब बिल्कुल हम पोलियो फ्री है, 2014 से सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी हमारा बिल्कुल जोर है इसके ऊपर। पिछले दिसंबर में 2025 को भी हमने एक कैंपेन करी थी 3 दिन की, आपके थ्रू फिर बताऊं कि अब जून 28 को फिर हम ये कैंपेन करने जा रहे हैं। मतलब हमने अपना गार्ड लोअर नहीं किया है, हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि हमारे जो देश है उसके कहीं बॉर्डरिंग कंट्रीज में कहीं ना अभी भी पोलियो के कुछ केसेस पाए जाते हैं, उसको बचाने के लिए अभी भी हम इस मुहिम को चलाए जा रहे हैं और बच्चों को ये ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं।
0: बुजुर्ग अफराद को आमतौर चलने फिरने के दौरान खासकर गुसलखाने में जिस्मानी तवाज़ुन बिगड़ने का सामना रहता है। इस सूरत हाल से बचाव की तदाबीर से मुतालिक बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने न्यूज़रील से बात करते हुए कहा,
5: बाथरूम में बुजुर्ग अफराद के फिसलने और गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। इससे सर में हेमोरेज, जिस्म पर जख्म, हड्डियों का फ्रैक्चर, खास तौर पे हिप फ्रैक्चर होने का ज्यादा खतरा रहता है। बाथरूम में एंटी स्लिप मैट और एंटी स्लिप चप्पल रखें, ग्रैब बार्स रखें, बड़ी चौकी और प्रॉपर लाइटिंग रखें। बैठकर नहाना, जमीन पर साबुन पानी जमा ना होने देना और अंदर से कुंडी ना रखना, ये छोटी आदतें बड़े हादसों को रोक सकती है।
0: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के तहत 5 से 18 वर्ष

0: उम्र के बच्चों के लिए नामजदगियां खुल गई हैं। इस ताल्लुक से 31 जुलाई तक नामजदगियां नेशनल अवार्ड्स पोर्टल पर पेश की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक नुमाया कौमी अवार्ड है जो हर साल सदर जमहूरिया की तरफ से उन बच्चों को दिया जाता है जो मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इसके साथ ही न्यूज रील का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरानी आला तारिक राठौर, तरतीब तहजीब अशफाक शाह, कौशिकी कश्यप, मुदीर शबीरुज्जमा, रिकॉर्डिंग एडिटिंग आसिफ बशीर, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
3: यारो वन बाजी यारो वन।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह।
4: सुनो सजना
2: पयामे सुबह।
5: जी ऐसा मैंने आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयामे सुबह। जी हाँ, ये लाइव ट्रांसमिशन होता है हमारा ठीक 7:10 से शुरू होकर ये 11:30 तक चलता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी समीर ने ज्वाइन किया हमें। जी हाँ, हमारे इंजीनियर समीर अभी ज्वाइन किए हैं और वो भी मुस्कुरा के हमें हमारी सलाम का जवाब दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सामने हम बात कर रहे थे आज पूरी महंगाई पे, हमने बात की और हमने रास्ते बताए, क्योंकि सिर्फ इशू रेज करना कोई बात नहीं होती, इशू रेज करने के साथ साथ शब्बीर हमें कहीं ना कहीं रास्ता भी बताना है, कहीं ना कहीं उसकी तदबीर भी बतानी है ना?
6: बिल्कुल तबरेज, क्योंकि पयामे सुबह का थीम ही रहता है, आज का जो थीम था हमारी सैटरडे का जो थीम रहता है वो रहता है पब्लिक इश्यू के हवाले से। तो हमने मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल खूबसूरती से माशाल्लाह ये इश्यूज उठाए, एक अच्छे तरीके से उठाए और इसके हल के बारे में भी आपने बोला कि किस तरह से अगर हमारे पास ये इशू है, कोई महंगाई का इशू है या जिस भी तरह से हम अपने जो खर्चा अखराजात है हमारे घर के वो किसी भी तरह से हम बचा सकें, उस तरह से उपाय भी आपने बड़ी खूबसूरती से बताए। तो इसी बात पर मैं फिर से आऊँगा कि पयामे सुबह का थीम ही यही रहता है कि अपने समाइन तक, अपने अवाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में कोई इशू हम फेस करते हैं उसके लिए हमें खुद ही हल का भी तदारुक करना पड़ता है, हल ढूंढना पड़ता है ताकि हम उससे ओवरकम करें, जो हमें मुश्किलात सामने आए उससे ओवरकम हम खुद ही कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि जो हमने आज प्रोग्राम पेश किया पयामे सुबह, उसमें हमने ये बिल्कुल ये अच्छी तरह से अपने सामाइन तक ये बात पहुंचाई, क्यों तबरेज?
5: बिल्कुल सही, और कोशिश भी हमारी यही रहती है कि हर सुबह का आगाज खूबसूरती से किया जाए, प्यारा सा आगाज हो, मीठा सा आगाज हो, दिन भर वो एनर्जी, वो मिठास पूरे दिन हमारे जहन पे बनी रहे, यही कोशिश हम करते हैं, यही कोशिश हम करते रहेंगे। और जो आज बातें हमने की, हमें उम्मीद है कि हमारे सामाइन कहीं ना कहीं उस पर गौर करेंगे और कहीं ना कहीं उन बातों को अपनाकर अपनी जिंदगी में थोड़ा आसानी जरूर लाएंगे।
6: बिल्कुल।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और प्रोग्राम चल रहा है पयाम सुबह मॉर्निंग लाइव शो। समीन आपको बताते चलें कि अभी 11:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है और इसमें आगे 10 बजे आप समाप्त करेंगे सूफी सलाह और एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाला है 10:30 बजे। उनसे हम कलाम होंगे हमारे तबरेज साहब और इनका साथ देने वाली हैं एक और साथी हमारी नाहिदा बशीर। तो फिलहाल प्रोग्राम जारी है और अभी मेरी तरफ देख रहे हैं तबरेज साहब और घूर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलने वाले हैं अपने समय से। तो
1: मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं हूं। मैं बस इतना बोलने वाला हूं कि शबीर, आज जो हमने सामाइन से बात की, जो हमने उन तक बातें पहुंचाई, जो मालूमात हमने पहुंचाई या जो तजुर्बा हमने उनके साथ शेयर किया, ये कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी में भी अपनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बेशक,
1: और तभी ये चीज असर रखेगी, तभी ये चीज सामने एक पॉजिटिव वे में ली जाएगी, जब हम कहीं ना कहीं इसका खुद भी इसका
0: बेशक
1: इस्तेमाल करें।
0: बेशक बेशक, जब हम अपनाएंगे इसको तभी इसकी एक्सपीरियंस हम करेंगे
1: बिल्कुल सही।
0: आगे से अपने समय तक। हम अपना मतलब अपनी
1: और
0: भी अपना भी तजुर्बा उन तक पहुंचाएंगे कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल
1: बिल्कुल सही। और आपको मैं बताऊं, देखिए हमारे एक साथी हैं यहीं रेडियो में ही, वसीम फारूक।
0: हाँ बिल्कुल
1: वसीम फारूक को हम पिछले साल भी देख रहे थे कि वो साइकिल पर घर से आते हैं, और उनको आना भी बहुत बड़ी दूर से होता है, सौरा से आते हैं वो।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो ही यूज टू कम बाई साइकिल,
0: बहुत अच्छी बात है
1: और साइकिल पर आना, साइकिल पर जाना, एक तो उससे क्या है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, क्यों
0: बेशक,
1: पूरा दिन तो हम लोग फिर कुर्सी पर
0: बिल्कुल
1: ही बैठे रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ये एक्सरसाइज का मौका मिलता है।
0: बिल्कुल
1: और कोई मसला नहीं है, आप अगर आदत

0: जाना है, शुरुआत शायद आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ही करें, उससे ज्यादा शायद ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, बात वहीं पर फिर से पहुंचती है, इससे आपका खर्चा भी बच जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया या
0: हाँ
1: पेट्रोल का
0: बिल्कुल
1: खर्चा वो भी
0: बिल्कुल
1: बच
0: बिल्कुल, वो भी
1: जाएगा
0: बच
1: आपका
0: जाएगा
1: साइकिल का
0: और सेहत भी
1: यूटिलाइज
0: ठीक
1: करने
0: रहेगी,
1: के।
0: और सेहत भी ठीक रहेगी और माहौल को भी आप खराब
1: बिल्कुल
0: नहीं करोगे।
1: बेशक,
0: समय कार्यवाहिया कहते थे वमे अच्छे से तो आया संसार या चीम कहते तारीख है इसमें से मगर बहुत ते बोझने तो हिंदी ते बोझने कशुर ते बोझने ते वंश में वमे के मोन सत ही बोझना कशुर बहुत आ कर पेश तुंदे बापत ते शो विजय कुमार मल्ला सब ने हटे बहुत यह मे फेवरेट सॉन्ग यह यून ट्रैक बड़ खूबसूरत ट्रैक मे फेवरेट यह बशीर मरज सब लिखमुत बह कर गुजारिश मे सतियस कि तुम कर पेश तम पत वातो सूफी सदस पे।
1: बिल्कुल तबीर صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد، مےٚ چھُ تُہٕنٛدِس فرماونَس پٮ۪ٹھ گۄڈَے یہِ کیوٗ تھوٚومُت کٔرِتھ، تِکیٛازِ تۄہہِ چھُ یہِ فیورِٹ، تُہُنٛد
0: اہن حظ
1: فیورِٹ آسہِ
0: بالکل
1: کانٛہہ چیٖز سُہ کَرٕ نہٕ بہٕ پٕلے،
0: نہ سُہ
1: یہِ
0: چَلہِ
1: چھُ
0: نہٕ کینٛہہ
1: نامُمکِن، یہِ چَلہِ نہٕ کینٛہہ، بوٗزِو تُہۍ پَنُن پَسنٛد۔

0: सही आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, और इस वक्त लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह चल रहा है, और मेरे लिए तो वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और इस वक्त अब के बाद का जो प्रोग्राम है, अब के बाद की जो नशरियात है प्रोग्राम पयामे सुबह की जो लाइव नशरियात है, वो संभालेंगी मेरी साथी नाहिदा बशीर। जी नाहिदा।
1: शुक्रिया। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ये आकाशवाणी श्रीनगर बलि बोजो सूफी वतारण पेठ मबनी प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

त्यो त रहिम साहब नि कमालातन हुन तालुक छु वुचुन कि सूफियाई किराम यम छि तिमो ति कोर तबलीग दीन रूहनी कमालात है सिम कि यम लुख यमान है तिम अस पाने तदनस मुशरा ब इस्लाम गसन तिम अस पाने तदनस नेक बनन कुतुब बनन गौस बनन अफजल बनन चुनाची कहत अक्ष सपुदमुत यति कशीर मस अथ कहत किस दौरानस मस यह बहशत पचनमत हिजरी यथ मे कहत ये सपुदमुत कहतस मज मूद आम लुक क्या तम फिर इंतजाम कह तमि कस्म कि लूकन वात है खुराक या बाकी चीज यूद सपुद वहम कि प्रत घर मे मरा मरान गई लूख तो यम जिंद चल इलाक मे तो जनाब रहीमन कर कम कमर गोड़ तम पतन इम इम लावरिस वाश लाश इम तुलिख तो पन्नी दस्ति मुबारक सतन कर दफन चुनाच ये सहन पाकस मज हम तरफ इस मजार इम सारी तम तम वक्त इम कहत मज मूदम तो तम से तमो पे पो अथस दफन करम तन तनख तो यम पेमित तम खुराक दिन तम त्रेश दिन तम बाकी चीज दिन इसमो तम फिर कर्मुत तुल छान कुल तम पे बन कन बच्चे हत्या सू खान।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छो प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नश्र सब्दान।
2: सभी तो ऐसे सूफी बचारन पेठ मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन प्रोग्राम पयाम सुबह अभी जारी है, जो कि जारी रहता है सुबह 7:10 से 11:30 बजे तक। और अब प्रोग्राम में वक्त हो रहा है इंटरैक्टिव सेगमेंट का, और मैं हूं आपकी मेज़बान नाहिदा। मेरे साथ है मेरे को होस्ट तबरेज मदनी।
3: बहुत शुक्रिया नाहिदा। सामिन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और आप समाप्त कर रहे हैं मॉर्निंग लाइव ट्रांसमिशन। जी हाँ, पयाम सुबह, और पयाम सुबह में ठीक 7:10 से लेकर 11:30 तक चलता है, जैसा कि नाहिदा ने अभी आपसे कहा। और इसमें आज हम एक खास मेहमान से इस इंटरेक्टिव सेशन में बात करने जा रहे हैं, और बात बड़ी ही एक अहम मौजू पे होने जा रही है, हैरेसमेंट ऑफ फीमेल्स एट मल्टीपल प्लेसेस। हैरेसमेंट उनके घर पर हो सकती है, हैरेसमेंट उनके वर्क प्लेस पे हो सकती है, हैरेसमेंट उनके ट्रैवलिंग में हो सकती है, कहीं पर भी हैरेसमेंट हो सकती है। इन सभी बातों पर आज बात होगी, और उन पर बात करने के लिए आज एक खास मेहमान को हमने स्टूडियो में दावत दी है। उनसे बात करेंगे, उनके बारे में बताऊंगा कौन है, कहां से आई है, उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, काफी देर से म्यूजिक हमने नहीं सुना, तो बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, आइए आगाज में ट्रैक सुनते हैं। ट्रैक के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत।

0: दोस्तों, आपने हेमंत कुमार की आवाज में नगमा सुना और उम्मीद करते हैं कि नगमा आपने पसंद फरमाया होगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और आप शो एंजॉय कर रहे हैं पयाम सुबह। पयाम सुबह में आज जिस मेहमान को हमने स्टूडियो में मधु किया है, ये एक जेकेएस ऑफिसर है 2011 बैच के और अभी करंटली जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से, जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रही है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की। और साथ ही साथ ये फाउंडर मेंबर हैं एक ऐसे ट्रस्ट की जो ख्वातीन की बहबूद के लिए काम करता है। जी हाँ, अगर हम हमारे मेहमान की बात करें तो इनके पास मास्टर्स डिग्री है सोशल वर्क में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से हासिल की है और एक और मास्टर्स इनके पास है जो इन्होंने हासिल की है जेंडर एंड पॉलिसी में। ये फुल ब्राइट फेलोशिप इनके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज की हमारी मेहमान डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद की। डॉक्टर मंतशा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस लाइव शो में और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे बीच हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तब्रीज दावत देने के लिए।
0: आप सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है बल्कि एक सोशल वर्कर हैं जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। आगाज में मुख्तसरन जानना चाहेंगे ये जो शुरुआत किया, जो मामला है जहां पर आपने 2016 में कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव के नाम से आप सामने आई, ये ट्रस्ट लेकर 17 से इसने काम करना शुरू करा, इसके बारे में बताएं। ये ख्याल क्यों आया, कहां से आया और क्या था ये?
1: जी तब्रेज, अमूमन हम ये सोचते हैं कि हमारा समाज जो है ये औरतों के लिए बहुत सेफ है। कहीं पर भी आप विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स या सेफ्टी की बात करें तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमारे मजहब में तो ख्वातीन को सारे हकूक दिए गए हैं तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अक्सर मैंने ये भी सुना है कि फेमिनिज्म जो है ये एक वेस्टर्न नोशन है, हमारे समाज में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे समाज में हर तरह की जो वायलेंसेस है, अब्यूज़ है, डिस्क्रिमिनेशंस है ख्वातीन के साथ, जो तो कहीं पर भी ग्लोबली मौजूद है वो हमारे समाज में भी मौजूद है। लेकिन अब ये है कि हम एक कॉन्जर्वेटिव साउथ एशियन सोसाइटी है तो हमारा ये मानना है कि हम डिनाइल में रहते हैं कि हम अगर कहें कि यहाँ कुछ होता नहीं है तो हमें लगता है कि वो ऑस्ट्रिच की तरह, जब कहते हैं कि ऑस्ट्रिच पे हमला होता है तो वो अपना सिर रेत में छुपा देता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, जबकि वो किसी को नहीं देखना चाहता होता है और उसे उसका फेयर जो है वो कम हो जाता है। तो वैसे ही शुतुरमुर्ग की तरह हम भी है, वी चूज टू लिव इन डिनायल रादर देन एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये जो वायलेंसेस है औरतों के साथ, ख्वातीन के साथ, ये बहुत पुरानी है, एज ओल्ड है, ग्लोबल है और हमारा समाज कोई भी सुपीरियर या अलूफ नहीं है इन चीज़ों से। ये हर जगह हर वक्त मौजूद रही है और आजकल ज़माना ऐसा है सोशल मीडियाज का, स्ट्रॉन्ग लॉज का, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों को सामने लाए और उनको रिजॉल्व करें।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में बताने के लिए। और यहाँ मैं सामने इनको बताना चाहूँगा कि जहाँ ये हमारी जो

0: मेहमान हैं आज की श्रीनगर से ही ताल्लुक रखती हैं, जहां ये जेकेएस ऑफिसर है वहीं पर इनके पास डॉक्टरेट है, इनके पास डॉक्टरेट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन कश्मीर, इस टॉपिक पर इन्होंने डॉक्टरेट हासिल किया। ये डॉक्टरेट हासिल करना क्यों जरूरी महसूस हुआ, कब लगा आपको?
1: जी मेरा जो जहन था पहले से ही विमेन्स राइट्स और नॉट जस्ट विमेन बट राइट्स ऑफ द वल्नरेबल की तरफ जाता था, तो जहन ही ऐसा था, शायद मिजाज ही ऐसा था कि जो अंडरडॉग है उसके क्या हकूक है, अगर कोई पिट रहा है, किसी की ताकत कम है, चाहे घर के अंदर है या ऑफिस में है या कहीं और है, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, तो उनके साथ एक दिली लगाव सा था। तो उसी के चलते कॉलेज में भी मेरा काफ़ी एक्टिविज्म रहा है, मैं कॉलेज मैगजीन्स एडिट करती थी, ऐसी पोएम्स लिखती थी, एलोक्यूशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, रिप्रेजेंट भी किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को। उसके बाद जब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया तो ये लगा कि मुझे जेंडर में आगे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। खैर अभी भी शायद हमारे कंट्री में लार्जली इतना इस्तेमाल नहीं होता है स्पेशलाइजेशन का, रिसर्च का, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए पर्टिकुलरली वेस्ट में ये डिग्रियां अवेलेबल है। तो उसी के चलते मैंने एक फुलब्राइट फेलोशिप के लिए अप्लाई किया आफ्टर क्वालिफाइंग माय सिविल सर्विस 2014 में। तो आई वाज लकी एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो फेलोशिप जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की है वो प्रेस्टिजियस फेलोशिप मुझे मिली। दो साल के लिए मैं अमेरिका गई पढ़ने के लिए जेंडर और पॉलिसी पे, वहां मैंने न्यूयॉर्क रेप क्राइसिस सेंटर में इंटर्नशिप की। मैं वहां सिविल सोसाइटी के साथ उठती बैठती बहुत थी और वो कैसे काम करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल्दो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी था यहाँ क्योंकि मैं सोशल वर्क में मास्टर्स कर रखा था मैंने, और यहाँ पे भी जो नेशनली एक्टिव एनजीओज है उनके साथ भी मैंने काफी काम किया था, लेकिन वहां पर इस चीज का फ्रेमवर्क बना कि एक औरत अगर किसी मुसीबत में है, अल्लाह ना करे उनका रेप हो गया है या कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई ज्यादती हुई है, हमें ये ऐसा लगता है कि शायद शादी के बाद ही क्रुएल्टी होती है, लेकिन कई लड़कियों के साथ अपने घर पे अपने माँ बाप की तरफ से या अपने लड़कियों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, बिल्कुल अपने घर पे ये चीजें होती है। तो वहां पर कैसे उसके साथ डील करें, कैसे एक सेटअप एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बाहर जो कि अब हमारी कंट्री में भी बना हुआ है कि कैसे औरतें कंप्लेंट कर सकती है, कैसे वो अपने जो ग्रीवियंस है उसका रिड्रेसल कर सकती है, और कैसे एक स्ट्रक्चर इन प्लेस है जो उनको विक्टिमाइज फर्दर विक्टिमाइज करने के बजाय उनकी कंप्लेंट को सेंसिटिवली उस पर गौर करता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये थी वो चिंगारी जहां से मुझे समझ आया कि वी नीड टू हैव सिविल सोसाइटी मेजर्स ऑन ग्राउंड इन कश्मीर, एंड वी ट्रांसलेटेड इट इनटू कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव, अ ट्रस्ट रन बाय वुमेन, सपोर्टेड बाय वुमेन, अ ट्रस्ट विद जीरो फंडिंग। हम क्योंकि आपस में हम लोग पैसा जमा करके ट्रेनिंग्स करते हैं, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या जो भी किसी की हेल्प करना है, क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ पेशे से और नेचुरली जो सिविल सर्विस रेगुलेशंस है उनकी कुछ बंदिश है, तो मैं कोई आई कैन नॉट होल्ड अ पोजिशन ऑफ पावर, आई कैन नॉट मेक एनी मनी और आई कैन नॉट बी एफिलिएटेड विद एनी पोलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने ये ट्रस्ट बनाया, विच वॉज चैलेंजिंग क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में अक्सर ये बोला जाता है, अरे तुम तो ऑफिसर हो, तुम कैसे सोशल वर्कर कैसे बन सकती हो, तुम एक एनजीओ कैसे चला सकती हो। तो आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज अ लॉयर हु सेड कि कपल ऑफ इयर्स अगो, तो ही सेड कि मैम जब किरण बेदी जी जो आईपीएस ऑफिसर अपने नाम से उनका ट्रस्ट है तो आप क्यों नहीं कर सकते। दैट गिव मी अ लॉट ऑफ करेज क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली डिस्करेज ज्यादा करते हैं अप्रिशिएट करने के बजाय। तो दैट वाज द होल स्टार्टिंग।
0: और जो एक कोशिश की आप बात कर रहे हैं, बार बार लफ्ज कोशिश आ रहा है, ये कोशिश आप सोशल मीडिया के जरिए भी कर रही हैं, इस कोशिश के बारे में हमें हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं।
1: थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। कोशिश अ बैलेंस मेरा पॉडकास्ट है जो पिछले साल से मैंने शुरू किया है। आप यूट्यूब पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कोशिश अ बैलेंस आप टाइप करेंगे तो आपको यू विल गेट एक्सेस टू माई पॉडकास्ट। इसमें जो खवातीन के जो मसाइल है, खवातीन के जो इश्यूज है, वो हाईलाइट किए जाते हैं, या ऐसी खवातीन जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है, वो आगे बढ़ी हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब गर्ज ये कि एक ऐसी स्पेस है विच इज फॉर वुमेन, स्पेशली डेडिकेटेड टू वुमेन। इस पे भी कुछ जो मेरे फ्रेंड्स
0: सवाल उठे,
1: उनका ये क्रिटिसिज्म था कि मैम आप सिर्फ औरतों का पॉडकास्ट क्यों कर रही है, अभी तक तो जब ओनली मैन वुड डू यू वुड से कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो मैंने कहा इट्स सदियां गई है, मर्द होस्ट करते हैं, मर्द गेस्ट है, तो अगर एक 1% 0.1% स्पेस हमने भी ले ली तो क्या प्रॉब्लम है। और दुनिया को औरतों की नज़र से देखना, औरतों के लेंस से देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट है कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू सी मैन एंड वीमेन एज एनिमीज और वी हैव टू सी देम इन ऑपोजिशन।

0: In fact, they are partners. They are partners at home, at workplace, in society. But ये है कि उनका नजरिया जो है वो जरा मुख्तलिफ है औरतों से. और औरतें, जब मैं औरतें शब्द इस्तेमाल करती हूँ, खवातीन शब्द इस्तेमाल करती हूँ, ये वर्ड यूज कर रही हूँ, ये भी एक मोनोलिथ नहीं है. औरतें सारी एक जैसी नहीं है. आपकी रूरल वेमेन के इश्यूज अलग है, अर्बन के अलग है, आपके यू नो रेशियल माइनॉरिटी इश्यूज के वेमेन के इश्यूज अलग है और मेजोरिटी के इश्यूज अलग है. इलीट औरतों के अलग इश्यूज है जिनके पास क्लास प्रिविलेज है या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है. तो औरतें भी एक ग्रुप नहीं है, इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप.
1: ट्रू, बहुत खूब. आपकी पसंद के काफी सारे नगमे हैं और जब आपने आज नगमों की अपनी फहरिस्त बताई तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उससे जोड़ दिया. और मैं उम्मीद करता हूँ जो नगमा मैं प्ले करने जा रहा हूँ, जो हमारी आज की मेहमान की पसंद का नगमा है नुसरत अली खान साहब की आवाज में, उस्ताद की आवाज में है, तो मैं उम्मीद करता हूँ नाहिद आपको भी ये नगमा अच्छा लगे और हमारे सुनने
2: खान को तो सभी सुनते हैं.
0: मैं यहाँ करते ही करते बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ ये ऐड कर दूं कि ये जो नगमा है ये एक फिल्म से, जो ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म थी डेड मैन वॉकिंग, तो ये भी एक रेप पे है कि कैसे एक रेप करने वाला रिफॉर्म हो जाता है एक काउंसलर की टच से, उसकी मदद से. तो ये कहीं ना कहीं यू नो मेरी इमोशंस के साथ, मेरे काम के साथ भी जुड़ा है. एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट नंबर, वेस्टर्न और ईस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन है.
1: आइए सुनते हैं मिलकर इस प्यार से ट्रैक को.

0: जी दोस्तों, आपने ये ट्रैक सुना और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो ख़ास तौर पे पसंद आया और आज इस इंटरेक्टिव सेगमेंट में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद, जो कि फाउंडर है कश्मीर विमेंस कलेक्टिव की, और इनसे बात कर रहे हैं तबरेज़ मदनी और मैं आपकी मेज़बान नाहिदा। जी तबरेज़
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिदा। और समय इनको बताना चाहेंगे कि ये जो आज की हमारी मेहमान हैं, ये सिर्फ एक JKS ऑफिसर नहीं है, ये एक सोशल वर्कर हैं। इनसे हम जानना ये चाहेंगे कि JKS ऑफिसर्स पे इतनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं और इतनी सारी जिम्मेवारियों में हमारी ये जो ऑफिशियल हैं, ये कैसे मैनेज करती हैं अपना सोशल वर्क, अपनी कोशिश और अपना जो उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है।
2: जी तबरेज़, इंटरेस्टिंग सवाल है। और जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत काम करते हैं या बहुत पैशनेट होते हैं, उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, और जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, बैठे होते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं या प्रोकेस्टिनेट करते हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। तो वक्त तो मैनेज करना और वक्त को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा टूल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है या आपकी कोई हॉबी है, तो आपको वो परस्यू करना छोड़ना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज एक नौकरी मिल गई, एक लाइवलीहुड की सिक्योरिटी मिल गई, फिर आप जद्दोजहद करना, सीखना या नई चीज़ों में नई शौक उनको परस्यू करना वो छोड़ देंगे, वो मेरे ख्याल से इज़ लाइक डेथ ऑफ योर सोल। ये मेरा मानना है कि सून आफ्टर आई क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज JKPSC का 2011 में, आई फेल्ट कि आई शुड डू समथिंग एल्स। तो मैंने फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, जैसा आपने अभी फरमाया। तो आफ्टर दैट आई थॉट कि नहीं, कुछ और करना चाहिए। मैंने PhD कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, मैंने कश्मीर विमेंस कलेक्टिव स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, मैंने कोशिश बैलेंस शुरू किया। हमारे कश्मीर विमेंस कलेक्टिव में भी अभी हमारे एक दो एक्टिव प्रोग्राम चल रहे हैं। कोविड के दौरान हमने बहुत काम किया। एक प्रोग्राम है हमारा, फूड फॉर पोअर इज फूड फॉर ऑल। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया, फिनेंशियल बेनिफिट दिया डेली वेजर्स को, उन लोगों को जिनकी जो लाइवलीहुड है कोविड में इफ़ेक्ट हो गई। तो वी वुड सेंड द मनी, लगभग 50-100 लोगों का ग्रुप बन गया, उन पर मुश्तमिल है ये एक्टिविटी अब। साथ में ही हमारा ऑल विमेंस ट्रैक भी चला, जो संडे संडे हम शंकराचार्य जाते थे, और फिर छोटे ट्रैक्स के बाद हम बड़े ट्रैक्स पे भी जाने लगे। हम दौदपत्री गए, हम अखल कंगन गए, हम कई जगहों पे गए। आइडिया ये था कि जो पब्लिक में स्पेसेस है वो औरतों के लिए भी इक्वली अवेलेबल और एक्सेसिबल हो। हमारे यहाँ जैसे इट्स अ सिटी और इट्स अ इट्स अ प्लेस ऑफ लेक्स एंड प्लेस ऑफ माउंटेंस, लेकिन हाउ मेनी वीमेन हैव एक्सेस टू लेक्स एंड माउंटेंस? हाउ मेनी वीमेन नो हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग?

0: How many of them are allowed to go and explore the nature? अभी आप देखेंगे स्टडीज कहती हैं कि जापान में फॉरेस्ट बेदिंग करते हैं लोग, वो अपने स्ट्रेस को कम करते हैं. अभी जो मॉडर्न जमाना है इसकी इतने स्ट्रेसेस है, इतने पुशेज एंड पुल्स है, और हमारे पास इसकी रेमेडीज हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. तो ये जो प्रोग्राम्स हमारे विमेंस कलेक्टिव के बैनर के अंडर चलते हैं, इससे भी बहुत सारे लोग इस्तेफादा लेते हैं. लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ वीमेन पर्टिकुलरली हु हैव बेनिफिटेड. तो यही है आइडिया, ये है कि आपने अपनी जॉब कर ली, अपना घर बसा लिया, आप खुश हैं, क्या उसके आगे भी आपकी कोई जिम्मेदारी है अपने समाज के तई, क्या आपने लोगों के तई, अपनी कम्युनिटी के लिए? क्योंकि ये स्पिरिट मेरे अंदर, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट हैव आई ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, लेकिन पहले से था. और जब मैं वेस्ट में गई, लेट मी ऑल्सो गिव क्रेडिट टू द सोसाइटी देयर, मैंने देखा कि कैसे अपने वल्नरेबल लोगों का ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे, चाहे वो ब्लैक कम्युनिटी है या वल्नरेबल सेक्शंस है, डिफरेंटली एबल्ड लोग है या ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है. तो वहां से काफी कुछ सीखा मैंने.
1: डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद
0: जी,
1: एक लाइटर नोट पे सवाल पूछने जा रहा हूँ. डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद जब सिर्फ मंतशा थी
0: जी,
1: ये जिंदगी का आगाज, क्योंकि सुनने वाले जरूर जानना चाहेंगे कि मंतशा जी कहाँ पैदा हुई, कहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई, क्या रहे बचपन के मामले, वहां पर थोड़ा बात करें उस बारे में.
0: जी तबरेज डाउनटाउन में पैदा हुई, नवाकदल में. तो सारा बचपन वहीं बीता, मैलिनसन स्कूल जाती थी, और माँ बाप को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं. तो शायद जो मैंने पीएचडी किया, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माय माइंड वो भी था,
1: बट दे वांटेड मी टू,
0: एक्टिवली नहीं लेकिन शायद सबकॉन्शियस में ये जरूर रहा होगा, बिकॉज दे वांटेड मी टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, जो कि हमारे समाज की एक कमी है. मैं ये कहूंगी कि एक हर्ड मेंटालिटी है, डॉक्टर बनेंगे तो सब बनेंगे, सुमो खरीदेंगे तो सब खरीदेंगे. अब
1: आजकल
0: बिल्कुल, या इवन आज सिविल सर्विसेज का खुल गया है, सबको केएसआईएस
1: करना है.
0: तो इस सब में हम कहीं ना कहीं एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी जो है ना, उसको किल करते हैं, वो क्या चाहता है. तो मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी, मैं ड्राइंग करती थी, पेंटिंग करती थी, पोएम्स लिखती थी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में, मेरे कजिन्स या फ्रेंड्स या इवन मेरे अबू भी, ही वुड एनकरेज मी कि लिखा करो, पढ़ा करो. तो रीडिंग राइटिंग का बहुत शौक था पहले से ही. और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग से ही मैंने अपनी हॉबी स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और टीवी पे सितारों से आगे, टेली क्लासरूम, शायद हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हो वो यह शायद ये याद करे, रिकॉल करे कि मैं संडे शो किया करती थी टीवी पे. तो बहुत वहाँ से एक कॉन्फिडेंस और एक मैं ये कहूँ कि पब्लिक स्पीकिंग का जो हुनर है वो कहीं ना कहीं होन हुआ. और वहीं जाकर जब आगे लिया मैंने, तो वुमेन्स कलेक्टिव बनाया, और जो मेरा कोशिश है बैलेंस पॉडकास्ट है वो बनाया. ये सारे जो मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपको बनाते हैं. आप कितना ट्रैवल करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना सोचते हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस माइनस कर दें तो आपकी पर्सनैलिटी वो ना हो जो आज है, कुछ और हो. तो आई थिंक ऑल दीज एक्सपीरियंसेस हैव अ वैल्यू. तो मेरा भी वही ऑर्डिनरी सा डाउनटाउन की गलियों में खेलने वाला बचपन था, और खैर अभी भी ऑर्डिनरी ही है. इट्स देर इज़ नथिंग यू नो आउट ऑफ द वर्ल्ड. और मैं ये मानती हूँ कि इंसान जितना कुछ करे उतना शायद और चाहत बढ़ती है करने की, और अगर वो ना हो तो आई थिंक दैट्स अ डेड एंड ऑफ दैट
1: पर्सन.
0: एक स्टैग्नेशन है, आपको
1: सही.
0: लगता है बहुत कुछ हासिल कर लिया,
1: अरे मेरा हो गया.
0: वो कहते ना कश्मीरी, मैं अक्सर मजाक करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, जब केस कर लिया तो वो कहते थे ठीक खुश कहते सर छोड़ अब यार रहने दे बैठ अब. मैंने कहा तो शुगर सांग कश्मीर पर अर्ली से डाकुर, दे स्टार्टेड लाफिंग. मैंने कहा यार किया क्या है हम लोगों ने, क्या किया है. जिंदगी इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है, वी आर वेरी पेटी, बट कहीं ना कहीं वी हैव दैट सेंस ऑफ ईगो एंड सेंस ऑफ सेल्फ.
1: और कंट्रीब्यूट कहीं करें तो अच्छी बात है, अगर सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती.
0: एब्सोल्युटली.
1: और यहां सामिन को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद एक सिविल सर्विस में ऑफिसर नहीं होती, वो डॉक्टर भी नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं, तो वो जर्नलिस्ट होती, ये मैं आपको क्लियर कर दूं. तो सामिन हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद से, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकते हैं उन्हीं की पसंद के एक और नगमे के, नगमा ये रहा.

दोस्तों, तो नगमा सुना तेरे इश्क में फिल्म से ये नगमा था और उम्मीद करते हैं कि नगमा आपने एंजॉय किया होगा। आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और आप जानते हैं कल यानी 3 मई को एक बहुत बड़ी पद यात्रा प्लान की गई है श्रीनगर में, जिसे एलजी साहब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जैन के श्री मनोज सिन्हा साहब झंडी दिखा के रवाना करेंगे टीआरसी श्रीनगर से। इस पर कुछ एडवाइजरी आई है हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से, और ये क्या एडवाइजरी है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं

0: जनाब हसीबुर रहमान साहब जो कि हमारे डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या तैयारियां हैं इस रैली के लेकर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हसीब साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पदयात्रा कल हो रही है इसके लिए एडवाइजरी आपने जारी की है, क्या है ये और किस तरह से लोगों को इसका ख्याल रखना होगा? हालांकि कल नीट के एग्जाम भी हैं, उसका भी क्या प्रोविजन है कल?
1: देखिए, कल ये नशा मुक्त भारत अभियान की जो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है
0: जी,
1: ये हमारा जो टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड है ये मेन वेन्यू रहेगा, वहां से ये पदयात्रा स्टार्ट होगी और लाल चौक तक ये जाएगी और वहां कल्पिनेट होगी।

0: देखिए, कल ये नशा मुक्त भारत अभियान की जो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है
1: जी,
0: ये हमारा जो टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड है, ये मेन वेन्यू रहेगा, वहां से ये पद यात्रा स्टार्ट होगी और लाल चौक तक ये जाएगी और वहां कल्मिनेट होगी। ये तकरीबन 10:30 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज से, पेरिफेरल एरियाज से आना शुरू हो जाएंगे। आप समझे कि तकरीबन 7:30 बजे सुबह से ही लोग इस यात्रा के लिए आना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ डाइवर्शंस दी हैं, कौन सा रूट फॉलो करना है वो कल सोशल मीडिया में डिफरेंट चैनल्स पे ऑलरेडी बताया गया है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप बिला वजह घर से बाहर ना निकलें ताकि आपको तकलीफ हो। कल नीट के भी एग्जाम हैं, जो बच्चे नीट के लिए आएंगे उनका जो एडमिट कार्ड होगा उसको देख के उनको अलाउ किया जाएगा। इसमें एमए रोड में ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, रेजिडेंसी रोड पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा जो यात्रा के लिए लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक का अमला हाजिर रहेगा, वो उनको गाइड करेगा कि किस रूट को फॉलो करना है।
1: तो इसका मतलब कुल मिला के ये पूरा प्रोग्राम जो है ये सेट है, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी और वही लोग कल घर से बाहर निकलें जिन्हें निकलना जरूरी है।
0: मैं अपील भी करूंगा कि हर एक को आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉज है जो हम सबको इफेक्ट करता है। जिस तरह नशा की वबा पूरे जेएंडके में फैली हुई है, इस पे इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, हम सबका इसमें एक रोल होना चाहिए। इसी सिलसिले में ये जो पद यात्रा हो रही है, मुझे लगता है कि हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
1: हजीब साहब, जो लोग आपने जैसे कहा पेरिफेरल एरिया से आ रहे हैं, दूर दूर इलाकों से आ रहे हैं, उनका जो वो गाड़ियां लेकर आएंगे वो कहां पर अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे, क्या पार्किंग की फैसिलिटी कहीं रखी गई है?
0: बिल्कुल, इसमें जो साउथ कश्मीर और बडगाम से आएंगी
1: जी,
0: उनको जो साउथ कश्मीर से आ रहे हैं जैसे वो पंथा चौक, नौगाम, सनतनगर, हैदरपुरा, बागात, बरजुला से होते हुए रामबाग और उनकी जो इंडोर स्टेडियम की तरफ आएंगे और उनकी पार्किंग्स उसी एरिया में रखी गई है
1: जी।
0: जैसे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वहां पे रखी गई है, इंडोर स्टेडियम में रखी गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में रखी गई है, जो गिंदन पार्क है राजबाग में वहां पे रखी गई है
1: जी।
0: उसके अलावा जो क्रिकेट ग्राउंड है हमारा टीआरसी में, वहां पे पार्किंग रखी गई है, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर राजबाग में पार्किंग रखी गई है
1: जी।
0: उसके अलावा जो जैसे गांधरबल से कोई गाड़ी आती है
1: जी,
0: उसके लिए एसपी कॉलेज का जो ग्राउंड है वहां पे पार्किंग रखी गई है
1: जी।
0: तो जो भी लोग आ रहे हैं इस फंक्शन के लिए, इनका रूट बताया गया है और मुझे लगता है कि वो अवेयर भी होंगे वो कौन सा रूट फॉलो करेंगे और उनकी जो डेजिग्नेटेड पार्किंग है वहीं पे वो जाएंगे, वहीं पे गाड़ी को पार्क करेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हजीब साहब, हमारे आकाशवाणी को अपना वक्त और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कल की ये पद यात्रा बहुत स्मूथली जाएगी और इससे डेफिनेटली हमारे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया तब्जी, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, ये थे हसीबुर रहमान साहब, डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर, जिन्होंने बताया कि कल की पदयात्रा कैसे प्लान की गई है और किस तरह से हमें इसको फॉलो करना है। और हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान से, जी हाँ, डॉक्टर मंतशा बिंत रशीद, 2011 बैच की हमारी जेकेएस ऑफिसर और साथ ही साथ कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव की फाउंडर, उनसे बात हो रही है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल अगला, और सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल है ये जो हैरेसमेंट के केसेस आपके सामने आते हैं, खासकर हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन, इसको आप कैसे देखती हैं और इसको कैसे आप, इसका अजाला कैसे करती हैं आप, इसके बारे में बताएं।
2: जिस तरीके से आपने सवाल पूछा मुझे लगा मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले खैर वो तो मिलने से रहा, लेकिन मैं पॉश एक्ट के बारे में जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बता दूं, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का है
1: जी।
2: ये एक बहुत ही थॉटफुल एक्ट है और बहुत ही विमेन सेंट्रिक एक्ट है। जो पॉश एक्ट है उसके तहत हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी ऑफिस जहां पर 10 लोगों से ज़्यादा लोग काम करते हो, जहां एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 10 हो, उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो रखनी है, जिसको हम पहले आईसीसी कहते थे और आजकल अब आईसी कहते हैं, इंटरनल कमेटी। तो इंटरनल कमेटी में 5 लोग होने चाहिए, जो उस ऑफिस से कुछ लोग और एक एनजीओ से भी एक बंदा होना चाहिए। और अगर किसी फीमेल को कोई भी ऐसी शिकायत या कोई भी ऐसा मामला दरपेश आए जो हैरेसमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे, तो वो

0: इंटरनल कमेटी के पास शिकायत कर सकती है, और इस कमेटी का ये रोल है कि वो अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो बढ़ाए अपने ऑफिस में, जो सेफ एनवायरनमेंट है अपने ऑफिस में वो दे दे, और साथ ही में ये भी है उनका काम कि जो भी कंप्लेंट्स आए उनको वो एड्रेस करे। जो ये कंप्लेंट्स आती है किसी जो कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसके पास, तो इनको ये एग्जामिन करना है कि जो ये कंप्लेंट है कितनी सही है, और अगर ये साबित हो कि ये सही है, जो प्रपेटेटर है जिसने कोई गलत किया है उसके लिए कोई जो रेमेडीज़ है वो सजेस्ट करें, विच इंक्लूड्स इवन सस्पेंशन फ्रॉम वर्क। तो अब हमारी ख्वातीन, हमारी लड़कियां ये कहेंगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट शायद तब होता है जब कोई हाथ लगाए या फिजिकली अब्यूज़ करे, लेकिन मैं बता दूं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन जो है इस एक्ट में सेक्शन 2 के अंडर वो बहुत ही वाइड है। उसमें अगर कोई ऐसा जेस्चर करे, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा गाना जो ऑफेंसिव है, कोई ऐसी ड्राइंग बनाए जो आपको ऑफेंसिव लगे, आपको सिर्फ न कि टच करके बल्कि नॉन वर्बल अब्यूज़ भी करे, जेस्चर्स से कभी आंख मारे, कभी चोटी काटे या आपके कपड़ों पे कमेंट करे, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। और अगर किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी भी ख्वातीन को ये मसला दरपेश आए तो वो ज़रूर इंटरनल कमेटी जो है वहाँ पर कंप्लेंट करे। अब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है उसके अलावा भी जो मिनिस्ट्री है ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उन्होंने शी बॉक्स पोर्टल जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स है बेसिकली, जिसको हम शी बॉक्स कहते हैं, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख वर्क प्लेसेस जो है वो ऑन बोर्ड की है। उसमें से तकरीबन 1 लाख जो वर्क प्लेसेस है वो गवर्नमेंट है और 60,000 प्राइवेट है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बोर्ड हो चुकी है इस सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स में, यानी कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं अगर उनको कोई कंप्लेंट है वो सीधे इस ई बॉक्स में ये कंप्लेंट डाल सकते हैं ऑनलाइन जाकर, और सज़ा भी अच्छी खासी है इसमें, और जो लॉ है दैट इज़ ऑन द साइड ऑफ द वल्नरेबल, दैट इज़ ऑन द साइड ऑफ वेमेन हु फेस दिस। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि विद विद राइट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी हम अपना पर्सनल मुद्दा रिजॉल्व करने के लिए किसी के खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट ना करे, उससे हमें बहुत ही रेजिस्ट करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। दिस इज़ नॉट फेयर कि अगर कोई कानून औरतों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाए है बनाया गया है उसे औरतें ही कभी मिसयूज़ करती हैं, वैसा कोशिश करें कि ना हो, जो कि हमारा अभी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में भी देखा गया है, कहीं ना कहीं कोई निजी मामले सुलझाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन मैं ये भी बताती चलूं कि ऐसे केसेस की परसेंटेज अभी भी बहुत
1: बहुत
0: कम
1: कम
0: है,
1: है
0: जो एक्चुअल केसेस है, एक्चुअल वायलेंस है, एक्चुअल हैरेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है,
1: और वो रिपोर्ट भी नहीं
0: और
1: होती
0: वो
1: फिर।
0: रिपोर्ट भी नहीं होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर्स है। अगर किसी के साथ कोई मामला ऐसा होता है तो उसको लोग बोलते हैं कि अगर तुम बात करोगी तो तुम्हारे पे ही बात आएगी, ये कहेंगे कि इसका कैरेक्टर कैसा था, इसके कपड़े कैसे थे, इसका बोलचाल, इसका उठना बैठना कैसा था। कहीं ना कहीं
1: कहीं ना
0: हमारे
1: कहीं
0: सोसाइटी
1: बोलते हैं
0: में,
1: कि ये तो ऐसी ही है,
0: बिल्कुल हमारे
1: बिल्कुल
0: समाज में लड़की पर ही बात
1: बात
0: आती
1: आती
0: है,
1: है।
0: तो अभी भी लड़कियां डिस्पाइट दिस प्रोविजन ऑफ लॉ बीइंग देयर अभी भी वो इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती है कि वो इसको इस्तेमाल करे। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, अगर आप एम्प्लॉयर है तो जरूर आप इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करें। अगर आप नहीं करेंगे और आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी तो 50,000 का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयज से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, लड़कियों से, यंग लड़कियां हैं हमारी प्राइवेट जॉब्स करती हैं जो कभी कभी बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं नेचर के, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस है कि आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए देर इज अ प्रॉपर लॉ, उसको इस्तेमाल करें अपने हकूक को। आप जाने कोई आपके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है, एडवांसेस कर रहा है, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, या वर्बल या नॉन वर्बल अब्यूज कर रहा है, प्लीज टेक अ स्टेप। मैं खुद भी एज अ सोशल वर्कर, मैं खुद भी एक दो इंस्टीट्यूशंस की कमिटीज पे मेंबर हूँ, NIFT यहाँ पर जो निफ्ट है फैशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज, उसके इंटरनल कमेटी पर मैं हूँ, और बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आए हैं। और मैं ये बताती चलूँ, अगर कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई और इसका मतलब ये है कि हमारी वर्क प्लेस सेफ है, दैट इज रॉन्ग। अगर कोई कंप्लेंट नहीं आई इसका मतलब ये है कि आपका मैकेनिज्म जो है वो पुअर है, वो वीक है। तो जो मैंने पहले भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था कि लेट्स नॉट बी ऑस्ट्रिच, अपना सिर छुपाने से, बात को डिनाई करने से बात खत्म नहीं हो जाती है, लेट्स ट्राई टू रिड्रेस द इश्यूज।
1: बिल्कुल सही।

0: इस इशू पर बात करना बहुत बनता है, और जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो हमें उनको इतना तैयार करना चाहिए कि अगर वो कहीं पर कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं या उनके साथ कहीं कुछ घटता है, वो आकर उसे कंप्लेन अपने कम से कम पहले पेरेंट्स से करें और उसके
1: बिल्कुल
0: बाद उस बात को आगे लेकर जाएं। इस पर और भी बात करेंगे। हेल्पलाइन जो हमारे इस बेटियों के लिए जो बनाई गई है सरकार की तरफ से, उस पर भी हम ममता शाह जी से बात करेंगे। उससे पहले एक और प्यारा सा ट्रैक यहां आप सबके लिए, ये रहा।

0: जी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पयाम सुबह, और ये हमारा सेगमेंट है इंटरेक्टिव सेगमेंट का। और आज इस सेगमेंट में हमारी मेहमान है के आई ऑफिसर
1: जी, डॉक्टर मंतशा बिन रशीद, के एस ऑफिसर हमारी।
0: हाँ,
1: जी,
0: जो कि फाउंडर है कश्मीर विमेंस कलेक्टिव की। तो आप मंतशा जी, आप बात कर रही थी गाने के उस पार की, ऑफिसर्स में जो हैरेसमेंट होती है उसके बाद बारे में आपने बात की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ऑफिसर्स के बाहर, तो उस पर आपने बात की, लेकिन जो उसके बाहर है,
2: बिल्कुल
0: कहीं पब्लिक प्लेस में है या बस में या कहीं और जगह पे है, तो वहाँ पे अगर हैरेसमेंट होगी तो बंदा कहाँ जाएगा?
2: जी नहीं, आपने बहुत सही फरमाया कि सिर्फ ऑफिसेज में या सारी औरतें ऑफिसेज में काम नहीं करती,
0: घर में भी होता है।
2: बिल्कुल, ऐसा रिसर्च जो है,
0: या मैं बात करूंगी कि टीनएजर्स की, वो तो
2: बिल्कुल
0: टीनएजर्स, बड़े तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे
2: जो घर पे अगर किसी औरत के साथ कोई भी मामला दरपेश आए, तो उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो गवर्न करती है। और अगर मान लीजिए कोई पब्लिक स्पेस है, बस हो गई हमारी या पार्क हो गई या सड़क हो गई, कोई भी जगह है जहां पर ऐसा हो, तो जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में आरपीसी हुआ करता था, अब ये सारा बीएनएस हो गया है। तो जो बीएनएस 2023 में जो इसकी ये लैंग्वेज चेंज हुई, बीएनएस हो गया, लेकिन जो उसकी सेक्शन

0: है, बहुत सारे सेक्शंस है।
1: जी
0: आपका सेक्शन 76 है, अगर किसी ने आपको हाथ लगाया, आपको छेड़ने की कोशिश की। सेक्शन 78 है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग मतलब कि पीछे पीछे आना, लड़की कोई घर से निकल रही है ट्यूशन के
1: को
0: लिए
1: फॉलो
0: तो
1: करना,
0: कोई
1: फॉलो
0: उसको फॉलो
1: करना।
0: कर रहा है, और उसमें ऑनलाइन स्टॉकिंग भी आता है। साइबर क्राइम्स भी अलग से जो हमारे IT एक्ट है उसके अंडर आ जाते हैं। वॉयरिज्म, कोई आपको घूरने की कोशिश कर रहा है या आप कभी चेंज कर रहे हैं तो वो ताका झाँकी करने की या बाथरूम में देखने की कोशिश कर रहा है, वो सेक्शन 77 से गवर्न होता है। वैसे ही डाउरी डेथ्स भी इसके अंडर आती है, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है। तो ये सारा जो फ्रेमवर्क है इंडियन लॉज का, ये बहुत ही वल्नरेबल और विमेन सेंट्रिक है। अगर कभी भी किसी औरत को जरूरत पड़े नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाने की, जा सकती है। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको उसी वक्त जाना है, 3 से 6 महीने का टाइम है आपके पास,
1: ठीक
0: क्योंकि बहुत स्टिग्मा अटैच्ड होता है। आपके
1: ठीक
0: साथ
1: जी,
0: कुछ
1: हाँ
0: हो गया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शायद
1: सही
0: आप पहले घर भागेंगे, फिर अगर आपको मम्मा और पापा का सपोर्ट मिला उसके
1: बिल्कुल
0: बाद आप कंप्लेंट करेंगे, तो
1: ठीक
0: इस सब में वक्त भी बीतता है। और इसमें यह भी प्रोविजन है कि 0 FIR लगे, विच मीन्स कि जरूरी नहीं है कि जहां पर ये हुआ हो इंसिडेंट वहीं आप पुलिस स्टेशन में जाए, आप किसी
1: कहीं
0: भी
1: भी
0: पुलिस
1: जाए
0: स्टेशन में
1: बिल्कुल।
0: जो आपको एक्सेसिबल होगा। तो ये सारे प्रोविजन्स है। इनफैक्ट जो BNS है, जो इसका चैप्टर 5 है जो मैं बता रही थी आपको, कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो गवर्न करता है, उसमें आपको बहैसियत एक औरत, एक लड़की या फिजिकली चैलेंज्ड है आप, आपको पुलिस स्टेशन भी आने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स का भी उसमें प्रोविजन है।
1: प्रोविजन है
0: तो बहुत सारी सहूलियतें हैं कानून के पास, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो औरतों को महफूज करने की कोशिश करते हैं, चाहे घर पे, चाहे पब्लिक
1: जी
0: स्पेसिस पे, ऑफिस पे। लेकिन ये है कि अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस है तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर्स है, फ्रेमवर्क्स है, उनको बेहतर भी बनाने की जरूरत है। क्योंकि
1: जरूरत है
0: नेचुरली जब एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बनता है तो फीडबैक से ही वो स्ट्रांग होता है। जब हमें समझ आता है कि इसमें एक औरत को दिक्कत हो रही है, तब हम कोई और चीज बनाएंगे। उसको आने में तकलीफ हो रही है पुलिस स्टेशन, इवन कभी कभी तकलीफ भी नहीं होती है, औरतों को ऐसा लगता है कि ये औरतों के जाने की जगह नहीं है। हमें ऐसा
1: हाँ
0: लगता
1: ये
0: है
1: तो
0: कि
1: ऐसा
0: पुलिस
1: लगता है
0: स्टेशन कौन
1: कि
0: जाएगा, अच्छे घरों की औरतें, अच्छे घरों
1: पुलिस
0: की
1: स्टेशन नहीं
0: लड़कियां पुलिस
1: जाती,
0: स्टेशन नहीं
1: नहीं जा
0: जाती है,
1: सकती।
0: जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था। जब मुझे याद है, जब हमने
1: अभी भी
0: कश्मीर,
1: है ये
0: हाँ
1: स्टिग्मा?
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है।
0: जब हमने कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव शुरू किया था 2017 में, हमने पहली ट्रेनिंग की थी। यहाँ पर जो पुलिस हेड थे सिटी में, हमने उनको एक फॉर्मल लेटर लिखा था एज कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव। तो हमने उन्हें कहा था कि जो सिटी में आपके पुलिस स्टेशंस है, जो भी आपके IOs, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एंड बिलो, उनको आप एक ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए। तो हमने उन सब पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग की थी कि जब आपके पास जेंडर वाले केसेस आते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कैसे इनको सेंसिटिवली डील करना है,
1: जी
0: क्योंकि ये आपकी रेगुलर पुलिसिंग में नहीं आता ना,
1: बिल्कुल सही।
0: ये आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जिसमें आपको स्ट्रांग और फियर्स रहना है, इसमें आपको सेंसिटिविटी और
1: बहुत
0: थॉटफुलनेस की
1: सॉफ्टनेस के
0: जरूरत है।
1: साथ।
0: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पुलिस डिपार्टमेंट से भी कि जो हमारे मैं ये कहूंगी जो हमारे फोरेनर्स होते हैं, जो फर्स्ट हैंड जिनके पास औरत जाती है, चाहे वो वकील है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कैसे इन चीजों के साथ सेंसिटिवली डील करे।
1: बिल्कुल सही।
0: क्योंकि आप देखेंगे UK में, लंदन में भी पढ़ती थी, PhD कर रही थी, वहां पर NHS जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम, वो डॉक्टर्स को ट्रेन करता है कैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस आइडेंटिफाई करो। अगर पेशेंट आ रहा है, उसकी बॉडी पे कोई मार्क है, तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप पुलिस पर रिपोर्ट करो। अगर वो बोलेगी लेडी नहीं, मैं तो सीढ़ी से गिर गई, ऐसे ही होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस के बाद, लेकिन ये डॉक्टर का वहां पर फर्ज है। सो वी नीड दीज ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेसेस, यू नो तबरीज, यहाँ पे बहुत जरूरत है इस चीज
1: बिल्कुल
0: की।
1: सही। अब हेल्पलाइन की बात करें, अगर एक फीमेल के साथ कहीं कोई घटना घट गई, उसके लिए कोई हेल्पलाइन है, वो किस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकती है, और अगर उसे कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव की जरूरत है तो वो
0: जी
1: वहां कैसे राबिता कर सकती है, इसके बारे में बताएं।
0: जी OSC है, वन स्टॉप सेंटर जिसको हम कहते हैं, या सखी सेंटर भी कहते हैं
1: जी
0: इन कॉमन पार्लेंस, 181 नंबर है उसका। तो ये एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम है उन औरतों के लिए जो कोई भी वायलेंस का शिकार होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या रेप हो या डोमेस्टिक अब्यूज हो। तो जो ये OSC है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है मिनिस्ट्री सेंटर पे उनका इनिशिएटिव हर स्टेट में है। तो इसमें क्या है कि आप एक कॉल करें तो आपको चाहे मेडिकल असिस्टेंस है, काउंसलिंग है, लीगल सपोर्ट है, फ्री लॉयर्स, वो सब मिल जाता है। लेकिन एक चीज की इसमें मेरे ख्याल में कमी है, जो शेल्टर है, शेल्टर इसमें टेम्प्ररी मिलता है। एक विमेन शेल्टर की बहुत जरूरत है यहाँ पर, पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कश्मीर में, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो भी मैंडेट करता है कि एक शेल्टर होम होना चाहिए जो बैटर्ड विमेन है, जो विमेन हु हैव सफर्ड वायलेंस एट होम। मायके जा नहीं सकती है, माँ बाप कहेंगे नहीं हमने तुम्हारी शादी कर दी।

0: नो लड़कियां हमारे पास है, इनसे कौन शादी करेगा अगर तुम डिवोर्स करके आओगी। या मायके जाते हैं तो घर पे भाभी है भाई है, वो कहेंगे हमारी अपनी जिंदगी है, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारा ख्याल कौन
1: ख्याल कौन
0: करेगा।
1: करे।
0: तो कहीं ना कहीं शेल्टर्स की ज़रूरत है, फिर इन औरतों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो पाए। ये बहुत ही होलिस्टिक रिसर्च और एक पॉलिसी सब्जेक्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ज़रूरत है कि जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क है वो एक्चुअल में ट्रांसलेट हो जाए इनटू एक्शन फॉर वुमेन, और उसमें बहुत स्कोप है। जैसे हमारा वुमेन्स कलेक्टिव, इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वी मे नॉट बी एबल टू ऑब्वियसली रीच आउट टू एवरी वुमन हु कॉन्टैक्ट्स अस, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम प्रो बोनो लॉयर्स या काउंसलिंग सर्विसेज औरतों को दे। तो हमारा फेसबुक पेज भी है कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, और हमारे फ़ोन नंबर्स भी, हमारे सर्कल्स भी बहुत बड़े हैं। वी हैव हेल्प्ड वुमेन फ्रॉम पूंछ, रजौरी, इवन जम्मू कुछ केसेस, और वैली की अगर बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ वुमेन हैव बीन हेल्प्ड इन वन स्मॉल वे और अदर बाय अस।
1: बहुत खूब। ये जो ख्वातीन के लिए आप काम कर रही हैं और आप खुद एक कोशिश में लगी हुई हैं कि ख्वातीन को कैसे आराम पहुंचाएं, अब कोई आपसे कांटेक्ट चाहती हैं करना तो वो किस तरह, कोई मेल आईडी आपका या कहीं, या फिर यही जो कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव है तो इसी पर आपसे रब्ता हो सकता है?
0: जी, कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव एट gmail.com भी हमारा ईमेल है, और
1: जी
0: फेसबुक पेजेस भी है। मेरा नंबर भी, खैर वेबसाइट्स पे, बिकॉज आई एम अ गार्मेंट सर्वेंट, मेरा
1: जी
0: फ़ोन नंबर भी वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट एंड कोशिश करेंगे कि ज़रूर जो आपकी परेशानी है उसका हल ढूंढने की।
1: आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे सुनने वालों के लिए, मेल फीमेल बोथ?
0: हाँ ऑफ कोर्स, ज़रूर। जो हमारी सोसाइटी है या कोई भी सोसाइटी है, वो तभी एक बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन समाज कहलाएगा जहाँ जो पावरलेस है या वल्नरेबल है उनकी देखभाल हम करें, जिनके पास ताकत कम है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग है, जो शायद उतने प्रोडक्टिव ना हो इकोनॉमिकली, जब जहाँ तक हम उनका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वी आर नॉट अ गुड एंड प्रोग्रेसिव एंड थॉटफुल सोसाइटी। ये तो एक चीज़ है कि ये समाज के लिए है, लेकिन जो समाज का हर एक फर्द है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स है, उसको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अवेयर हो जाए कि क्या अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत होती है तो क्या उसके पास लीगल प्रोविजंस है, और कैसे एक दूसरे की हेल्प करे। ऐसा होता है कि किसी ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की तो 10 लोग खड़े हो जाते, नहीं हम तो इस बंदे को जानते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, आपको नहीं मालूम है, आप वहाँ नहीं थे। एक इंसान 10 लोगों के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन 11वें लोग
1: के साथ बुरा
0: इंसान
1: हो
0: पे
1: सकता है।
0: अटैक कर सकता है।
1: जी
0: सो ये कोई गिवन नहीं है। डोंट बी एन एनेबलर इन सच सिचुएशंस। ट्राई टू आइदर सपोर्ट द विक्टिम इफ यू बिलीव देम, और इफ यू हैव एनी नो हाउ ऑफ द सिचुएशन, और ट्राई टू स्टे अवे रादर देन एक्चुअली बेसिकली एम्बोल्डनिंग द प्रिपिटेटर। मैंने बहुत सारे यहाँ केसेस देखे, बहुत उम्दा उम्दा स्कूल्स हमारे सिटी के अंदर या कॉलेजेस, जो इन चीज़ों को छुपाने की
1: छिपाने की
0: कोशिश
1: कोशिश
0: करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। चुप
0: मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगी, उन हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से, कि आप ऐसे प्रपिटेटर के खिलाफ एक्शन ले, इन्वेस्टिगेट करे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के थ्रू और पुलिस के थ्रू इफ रिक्वायर्ड, और उनको सस्पेंड कर दे, ट्रांसफर कर दे, और इस चीज को एक सक्सेस स्टोरी बताए, इसको फ्रेम करके मीडिया में दे दे कि हमने ऐसी एक्शन ली, न कि ये प्रोजेक्ट करे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ होता
1: कुछ
0: नहीं
1: होता
0: है।
1: नहीं है। ट्रू। बहुत
0: जी
1: बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू।
1: डॉक्टर मंतशा बिंदर रशीद, आपका आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है जो ख्वातीन अभी आपको सुन रही हैं, उन्हें लगता है कि कहीं आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आगे आएंगी और कहीं ना कहीं आपसे मदद ज़रूर लेंगी।
0: थैंक यू वेरी मच तब्रेज़ फॉर कॉलिंग मी।
1: थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया।
1: तो सामईन, ये थी डॉक्टर मंतशा बिंत रशीद, 2011 बैच JKS ऑफिसर और कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव की फाउंडर, जिनसे आज हमने बात की, जाना कि किस तरह से ये काम कर रही हैं और किस तरह से ये ख्वातीन को आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इनकी एक कोशिश ये भी है कि अपना एक पॉडकास्ट चलाती हैं जिसमें ये फीमेल्स से बात करती हैं। वो प्रोग्राम ही ऐसा है जिसमें फीमेल्स की बात होती है, फीमेल्स से होती है, और उन्हें कौन से मुश्किलात हैं, कौन से मसाइल उनके सामने हैं, उनको उनका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस प्याम सुबह में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह होगी मुलाकात। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़। नासिर
2: समीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पयाम सुबह। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 68.68 मीटर तो FM 103.5 MHz पर। समीन वाले छात्र

0: मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय 12 बज रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी खबरों के बुलेटिन निश करेंगे। जरा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के निर्वाचन

0: आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचे की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस कदम को चुनौती देने वाले तृणमूल कांग्रेस के लिए निर्णय एक बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारियों का चयन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर पहले से ही एजेंट और पर्यवेक्षक मौजूद हैं। आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission of India's decision to appoint only central government employees as counting supervisors.

जी सामाइन, ये है कर्ज फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी है और इस नगमे को गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने।

जी दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं और ये नगमा आपने सुना कर्ज फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें थी। और अगला गीत अब हम आपको सुनवाएंगे, ये है अनजान का लिखा हुआ नगमा, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में। इसे गाया है सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कशिश।

जी दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं और आपने ये नगमा सुना फिल्म कशिश से। अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी और ये आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार के। एक और नगमा आपको सुनवाते हैं, ये है आर्य बर्मन की कंपोजिशन है, ये गुलशन बावरा के बोल है। आवाज़ें इस नगमे को दी है किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और आर्य बर्मन ने, और ये फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

जी दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं और ये आखिरी नगमा था और ये हमने आपको सुनवाया फिल्म सत्य पे सता से, किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती, आर डी बर्मन और भूपेंद्र की आवाज़ें थी, आर डी बर्मन की मौसीकी थी, गुलशन बावरा के बोल थे और फिल्म थी सत्य पे सता।

0: जी दोस्तों, आप फिल्म नगमे समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम से मुनशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए एक बड़ी अवामी तहरीक में शामिल होने की अपील की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 3 मई को TRC फुटबॉल स्टेडियम श्रीनगर में एक मेगा पदयात्रा का इनेकाद किया जाएगा। LG ने कहा कि वो यूनियन टेरिटरी में मुनशियात की लानों को खत्म करने के लिए एक मजबूत और मुतासिरकुन तहरीक देख रहे हैं। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों, खासतौर पर नौजवानों से पदयात्रा में शिरकत करने और मुनशियात के खिलाफ मुतहिद होकर खड़े होने की अपील की। लोकभवन जम्मू में कल मुख्तलिफ शख्सियात ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ सियासी व समाजी मामलात उजागर किए गए और LG ने उन्हें गौर से सुना। मुलाकात करने वालों में मेंबर पार्लियामेंट संजय सेठ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और साबिक DDC मेंबर और भारतीय जनता पार्टी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत मुलाज़मीन को बेहतर सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने सिंपोरा पामपोर में सरकारी मुलाज़मीन के लिए 90,65,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए गए 368 रिहायशी यूनिटों का इफ्तिताह करने के दौरान किया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू को नौकरी की अहलियत से ड्रॉप करने का कोई मंसूबा नहीं है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान अपनी सर्विस का बाकायदा

0: ऐसा होता है कि एक जो मजदूर होता है वही लेबर क्लास हम लोगों के लिए बहुत एक अहम होता है। मैं जब छोटी थी तो अपनी दादी से अक्सर एक सवाल किया करती थी, मैं कहती थी कि अल्लाह तबरक ताला ने अगर हम सबको एक जैसा बनाया है फिर किसी को डॉक्टर, किसी को अमीर, और लेकिन किसी को गरीब क्यों बनाया है, किसी को मोची क्यों बनाया है, दर्जी क्यों बनाया है, सबको अल्लाह ने एक जैसा क्यों नहीं बनाया। आप कहती हैं कि अल्लाह तबरक ताला 70 माओ जैसा प्यार करता है, तो फिर किसी को मोची क्यों बनाया है, किसी को सफाई कर्मचारी बनाया है, कोई हमारा घर बनाता है। तो फिर मेरी दादी ने मुझे एक बात समझाई, उसने कहा कि जब बड़ा एक पत्थर कहीं पे होता है तो ज़रूर उसके स्पोर्ट के लिए एक छोटा पत्थर भी रहता है ताकि बड़ा पत्थर लुढ़क ना जाए। आप ये देखें कि अगर एक मैसन नहीं होगा, मिस्त्री नहीं होगा, तो हमारा घर कौन बनाएगा। अगर एक तरखान नहीं होगा तो हमारे घरों पे छत कैसे होगी। अगर एक मोची नहीं होगा तो हमारे जो जूते हैं वो कौन ठीक करेगा। तो हर एक का अहम रोल है, हर एक का अहम रोल है, लेकिन जिनको अल्लाह तबरक ताला ने असुदा हाल बनाया है उन्हें कहीं ना कहीं अमीन बनाकर भेजा है, यानी कि ज़िम्मेदार भी वही हैं और अपनी दौलत के अमीन भी वही हैं। ज़िम्मेदार इसलिए हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी अपने से जो रुतबे में कम लोग हैं उनके तई बहुत ज़्यादा है, और अगर अल्लाह तबरक ताला ने उनको दौलत से नवाजा है तो वो उस दौलत के मालिक नहीं हैं बल्कि उसके अमीन हैं। क्योंकि अल्लाह जब आपको दौलत नवाजता है ना तो वो ये देखता है कि आपका रवैया बाकी लोगों के साथ कैसा रहेगा। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहते हैं कि जब आपके घर में कोई मजदूर होता है तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही उसको अपनी मजदूरी मिल जानी चाहिए। देखें कितनी बड़ी बात है, और ये बात सही है कि पैसा तो हम ज़रूर उनको दे ही देते हैं लेकिन हमारा रवैया उनसे कैसा है ये बहुत मैटर करता है। हमें पैसे के साथ साथ अपने रवैये को भी उनके लिए बेहतर रखना चाहिए। और देखते हैं कि इस मौजू पे अफशा नदीम जो हमारी साथी हैं वो क्या कहती हैं।
1: हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया, दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। आज का दिन उन तमाम मेहनतकशों और मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है जो अपनी मेहनत, पसीने और कुर्बानियों से हमारे मुआशरे की बुनियाद मजबूत करते हैं। लेबर डे हमें याद दिलाता है कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने मेहनतकशों को इज्जत, इंसाफ और उनके हुकूक ना दे। ये वो लोग हैं जो कारखानों में, खेतों में, तामीराती जगहों पर और हर उस मकाम पर मौजूद हैं जहां मेहनत की ज़रूरत होती है। उनकी मेहनत ही हमारी मईशत को आगे बढ़ाती है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि एक मजदूर का हक सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि इज्जत, तहफ्फुज़ और बेहतरीन हालात कार भी है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम अपने मजदूरों को वो सहूलियात दे रहे हैं जिनके वो मुस्तहिक हैं, क्या उनके बच्चों को तालीम, सेहत और बेहतरीन मुस्तकबिल की गारंटी मिल रही है। लेबर डे की हिस्ट्री 19 सेंचुरी के अमेरिका से शुरू होती है। उस वक्त मजदूर दिन के 12 से 16 घंटे काम किया करते थे और उनके पास ना तो इंसानी हुकूक थे और ना ही बेहतरीन हालात कार। फर्स्ट में 1886 को शिकागो में मजदूरों ने एक बड़ा एहतजाज किया जिसमें उन्होंने दिन के 8 घंटे काम का मुतालबा किया। इस एहतजाज को हे मार्केट अफेयर के नाम से याद किया जाता है। ये वो लम्हा था जब मजदूरों की आवाज़ दुनिया भर में गूंज उठी। इसके बाद मजदूर तहरीक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल गई और आज के दिन को मजदूरों के हकूक के लिए मनाया जाता है। लेबर डे हमें ये याद दिलाता है कि एक मजदूर सिर्फ एक कारखाने का हिस्सा नहीं बल्कि कौम की तरक्की की बुनियाद है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वो अपने मजदूरों को इज्जत, इंसाफ और उनके हकूक ना दे। आज के दिन का पैगाम ये

है कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा बनाएं जहां मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का पूरा सिला मिले, जहां कोई भी मेहनतकश गुर्बत और महरूमी का शिकार ना हो। आइए हम ये अहद करें कि हम मेहनतकशों के हकूक का तहफ्फुज करने के लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करेंगे, उन्हें इज्जत देंगे और उनके साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि मजदूर की खुशहाली ही हमारी कौम की खुशहाली है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि लेबर डे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक सोच है, एक तहरीक है और एक वादा है कि हम अपने मेहनतकशों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। शुक्रिया।

एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। देखें, मैंने यही इस नक़्मे से पहले कहा था कि हमें सिर्फ पैसे से ही इनकी जो मजदूरी है वो अदा नहीं करनी है, बल्कि अपने रवैयों से भी करनी है। जितने भी हमारे लेबर क्लास होते हैं वो वाकई हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, तो हमें भी उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए रुपए पैसे के साथ साथ अपनी मुस्कुराहटों का नजराना भी उनको पेश करना होगा, क्योंकि अच्छी बात और एक मीठी सी स्माइल जो है वो भी सदका है। तो ये सदके बांटते रहिए, और सिर्फ लेबर क्लास जो है उसके साथ तो आपको मोहब्बतें अपनी लुटानी ही हैं, लेकिन कुछ सर अपने घर वालों का भी ख्याल करें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक खातून जिसे हम होम मेकर कहते हैं, वो भी सुबह से शाम तक कितनी मेहनत अपने घर के लिए करती है। फ़र्क ये है कि उसको ये कहा जाता है कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक, जब सुबह फजर की अज़ान होती है तब उसकी सुबह शुरू होती है, और फिर जाके कहीं देर रात को जब सब लोग खाना खा लेते हैं, अपने अपने बिस्तरों में चले जाते हैं, उसके बाद जाके कहीं घर की खातून को छुट्टी मिलती है। यानी कि अगर एक लेबर जो है वो 8 घंटे काम करता है, तो घर की खातून 12 से 13 घंटे काम करती है। लेकिन कई बार उसके साथ मीठे दो बोल भी नहीं बोले जाते हैं, और आजकल तो ये भी है कि होम मेकर होने के साथ साथ एक औरत जो है वो प्रोफेशनली भी बहुत साउंड है, अब पैसा भी कमा के लाती है। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि ख्वातीन को एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, उनकी शाबाशी, उनकी हौसला अफजाई नहीं होती है। बहुत ज़रूरी है जब आपके लिए कोई कुछ करे तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ही ना कि दो मीठे बोल बोल के उसकी हौसला अफजाई करनी है। ये कहना है कि ज़रा देर बैठ जाओ, तुम भी थक गई होंगी, या फिर ये कहना है भूख लगी होगी पहले खाना खा लो, तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा, या तुम जाके अपनी कमर सीधी कर लो, काफ़ी देर से खड़ी हो, पहले अपना ख्याल करो फिर दूसरों का ख्याल करो। यही तो वो लफ्ज़ है ना कि जिससे इंसान ख़ासकर एक खातून खुश हो जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ख्याल कर लिया तुमने सबका, बहुत शॉपिंग कर ली सबके लिए, दिखाओ अपने लिए क्या लाया है। कभी ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता ये है कि अगर इंसान कोई खातून अगर अपने लिए शॉपिंग कर भी दे तो उसे बार बार ये कहा जाता है कि अभी तुम्हारे पास इतने कपड़े तो थे, अभी तुम्हारे पास रखी हुई चीज़ें तो थी, क्यों तुमने ये सब फजूल खर्ची की। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक खातून जो है वो आज अच्छी ड्राइवर भी है, यानी आपके ड्राइवर की सैलरी बच गई, वो अच्छा खाना पकाती है और बहुत इमोशंस के साथ पकाती है, तो आपके लिए कुक की सैलरी बच गई। फिर घर के काम हैं, आपके घर को संवारना है, सजाना है, किचन गार्डन मेंटेन करना है, तो मालिका का को भी कहाँ फिर हम सैलरी देते हैं। सारा जो पैसा है वो अपना बचा लेते हैं और एक खातून सुबह से शाम तक घर में मेहनत करती है। तो आज जो है हम ये वीक ही मनाते हैं, और ख़ासकर 1 मई जो है वो लेबर डे के हवाले से मनाया जाता है, तो क्यों ना जो मर्द हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्यों ना आज घर की ख्वातीन से जाकर ये कहें कि आप थक गई होंगी, चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं, या आज हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, या फिर ऐसा कहें कि चलो आज तुम्हें शॉपिंग पे ले जाते हैं, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो इन अल्फाज से जो है आपकी शरीक हयात हो, माँ हो, बहन हो, या फिर आपकी बेटी हो, बहुत खुश हो जाएगी, और यकीन माने उसमें एक नया हौसला, एक नया वलवला जाग जाएगा। इस खुशी और इस हिम्मत के साथ जब आप उसको वो कॉन्फिडेंस

इंश्योरेंस दिलवाएंगे ना, तो फिर आपके लिए वो बहुत सा काम करेगी। तो चलिए आज इस प्रैक्टिस को जो है वो अपनाया जाए। आपने पहले भी शायद मुझसे सुना होगा कि मैं शायद दो एक बार पहले भी मैंने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया है। आज बहुत ज़रूरी फिर से मैं वो बात दोहराना चाहती हूँ कि कहते हैं कि इससे हमारी बहनों का ना ज़रा हौसला बढ़ जाएगा। कहते हैं कि एक शख्स था, अपनी बीवी को लेकर कहीं किसी पार्टी में गया, तो सभी आपस में बात करने लगे कि कौन किसकी जो वाइफ है वो क्या काम करती हैं। तो मर्द ने कहा, मेरी बीवी कुछ नहीं करती हैं, बस सुबह उठती हैं, बच्चों का लंच बनाती हैं, उनको स्कूल भेजती हैं, तैयार करती हैं, फिर उनको बस तक छोड़ के आती हैं, ये कोई जॉब नहीं करती हैं। उसके बाद नाश्ता बनाती हैं, मुझे ऑफिस के लिए रवाना करती हैं, मेरे कपड़े इस्त्री करती हैं और फिर मेरा नाश्ता लंच पैक करके मुझे भेजती हैं। ये कुछ खास काम बाहर जाकर नहीं करती हैं। फिर सारे घर का काम करती हैं, दिन का खाना बनाती हैं, बच्चों के आने का इंतज़ार करती हैं, उन्हें जाकर बस स्टैंड से लेकर घर लाती हैं, ये कोई काम नहीं करती हैं। फिर 4 बजे मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखती हैं, फिर बाज़ार जाके सब्ज़ी तरकारी लाती हैं, ये कोई काम नहीं करती हैं। शाम गए तक पौधों को पानी, घर के कपड़ों की इस्त्री, सारे काम एक खातून करती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। तो आज अपने घर की ख्वातीन को सलूट कीजिए और हर उस शख्स को सलाम कीजिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई है। क्योंकि जब आप दूसरों का एहसास करेंगे, दूसरों के लिए रास्ते आसान करेंगे, तो अल्लाह तबरक ताला खुद ही आपके रास्ते जो है आसान कर देगा, आपके मामलात में आसानियां फरमाएगा। बहुत ज़रूरी है आप अपना और अपने सब का ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक ताला आप सभी को उम्र नूर शाने ज़ुल्करनैन अता फरमाए। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपके खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।

0: Возьми свас.
1: समय आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बज्म निस्मा। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 208.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए।

मीडियम वेव 268 मीटर और FM 103.5 MHz पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन एक बच्चा चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी।

0: बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission of India's decision to appoint only central government employees as counting supervisors. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bagchi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. Counsel for the Commission clarified that returning officers are state government employees and are responsible for appointing other officials. In its order, the Apex Court reiterated that the Election Commission circular must be implemented in letter and spirit. The Supreme Court has said that no further order was required on the plea filed by the All India Trinamool Congress challenging the dismissal of its petition by the Calcutta High Court. The petition was against a circular issued by the Election Commission of India on deployment of central government personnel for vote counting in West Bengal. Polling for the 294-member West Bengal Assembly was held in 2 phases on April 23 and April 29. Counting of votes will take place on May 4. Nearly 37% voting turnout has been recorded till

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दुश्मन फिल्म के नगमे से। आनंद बख्शे के बोल है, उत्तम सिंह की मौसिकी है और इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

जी फौजी भाइयों, ये था प्रोग्राम का पहला नगमा और ये हमने लिया था दुश्मन फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे, उत्तम सिंह की मौसीकी थी, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ें थी। और अब अगला गीत आपकी खिदमत में पेश है। समीर ने इसके बोल लिखे हैं, नदीम शवन की मौसीकी है, कुमार सानू की आवाज़ है और फिल्म है ये दिल आशिकाना।

जी दोस्तों, आपने अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में डुप्लीकेट फिल्म का नगमा सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं राहत इंदौरी के अशआर अनु मलिक की मौसिकी में। फिल्म का नाम है द जेंटलमैन और आवाज़ें इस में है विनोद राठौर और साधना सरगम की।

0: सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जरूरी सूचना। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक से संपर्क करें।
2: नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी भी पंचायत हल्के में ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फॉर्म और अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं।
1: पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश होने की तारीख 27 मार्च 2026 है और 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
2: ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 8 मई तक एवं फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल 2026 15 मई 2026 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: जी फाजी भाइयों, ये था एक कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको सुनवाते हैं इरशाद कामिल के बोल। सुल्तान फिल्म से विशाल शेखर की मौसीकी है और इस नगमे को गाया है राहत फतेह अली खान ने।

जी फौज भाइयों, ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत और इसे हमने लिया था फिल्म जीत से। समीर के बोल थे, नजीम शवन की मौसीकी थी और आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी में खबरें नश्र करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरब बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मानसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादला ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आज शाम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स

0: का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है, जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, इसके अलावा दीगर अमले की तकरीरी के जिम्मेदार भी वही होते हैं। कमीशन ने अदालत को मुत्तला किया कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा किया कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले की 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तफसील हमारे नामनगार से।
1: मगरबी बंगाल में मगरा घाट पश्चिम इलाके की 11 बूथों और डायमंड हार्बर हल्के की 4 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% पोलिंग दर्ज की गई। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। एक और पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: केरलम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। वहां अप्रैल की 9 तारीख को 140 हलकों में वोट डाले गए थे। आला चुनाव अफसर रतन यू केलकर ने बताया कि 43 जगहों पर बनाए गए तमाम 140 वोट शुमारी मरकजों पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए मजमूई तौर पर 15,465 अहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, माइक्रो मुशाहिद, वोट शुमारी के लिए निगरान और असिस्टेंट शामिल हैं। सबसे पहले डाक से आने वाले वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में रिकॉर्ड किए गए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की असरे नौ तश्कील की है। लोकसभा के बीजेपी के मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल को तखमीना कमेटी का सरबराह बनाया गया है। इस कमेटी में ऐवान ज़ेरी के 30 मेंबर शामिल हैं। बीजेपी के ही मेंबर बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और कबीलों की फलाह बहबूद से मुतालिक कमेटी के सरबराह लोकसभा के बीजेपी के मेंबर फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबरों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की मुद्दत इस महीने की 1 तारीख से अगले साल 30 अप्रैल तक होगी। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकानात की फेहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए कल से फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये काम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अज खुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसी दौरान बिहार में 2027 की मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। वहां भी मकानात की फेहरिस्तबंदी की जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा एमपी संदीप पाठक के खिलाफ FIR दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी के 6

0: राज्यसभा अरकान के हमरा बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। जराए के मुताबिक पंजाब के 2 जिलों में 2 FIR दर्ज की गई हैं, ताहम दोनों जिलों के नाम अभी तक सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अप्रैल की 30 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों मुल्कों के हुक्काम तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा ले रहे हैं और कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के तवील अरसे से चले आ रहे तकनीकी और इंतजामी उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए आफात से मुतालिक फौरी इंतबाही खिदमात फराहम करने की गरज से मुल्क में ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस निज़ाम की जांच के लिए आज दोपहर शहरियों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक नोटिफिकेशन भेजा गया। जांच के दौरान भेजे गए पैगाम में कहा गया था, अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुआसलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतालिक नए मुआसलाती निज़ाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद दो दिन तक दर्जे हरारत में कमी रही। IMD ने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को एहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की नए सिरे से तश्कील की है। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरक कमेटी की 11वें मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Supreme Court declines to interfere with Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. Says choice of officials rests with the Election Commission. Re-polling underway at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Over 55% voter turnout reported till 1 p.m. Lok Sabha Speaker reconstitutes 4 parliamentary committees for the year 2026-27. India and Nepal discuss flood forecasting model ahead of the upcoming monsoon season. IMD forecast heavy rainfall over several parts of northeast and peninsular India during the next 2 days. And in IPL cricket, Chennai Super Kings to take

लक्ष्मीकांत तरेलाल की मौसीकी में प्रेम रोग फिल्म से नगमा, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल हैं।

जी दोस्तों, कभी ख्वाब में या ख्याल में, ये थे सनीम सूरज के, या सूरज सनीम के अशआर थे डैडी फिल्म से, और इसमें आवाज़ें दी थी तलत अज़ीज़ और दिलराज कौर ने। और अब आइए आपको सुनवाते हैं

जी दोस्तों, आप फिल्म नगमे समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। इस आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जात 68.8 मीटर तो FM 73.5 MHz पर समिन वले छकरत्रु बोजो फनकार छ गुलाम महियुद्दीन शाहतीन सती यमन निश बुजुते कलामे महमूद गामी।

जय हिंद फौजभाइयों। फौजभाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं चित्रा के गाए हुए नगमे से। ये नगमा हमने लिया है फिल्म प्यार तूने क्या किया से।

जी फाजी भाइयों, आपने नगमा सुना। ये था प्रोग्राम का पहला नगमा। इसे हमने लिया था फिल्म प्यार तूने क्या किया से, चित्रा की आवाज़ थी। और अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा। हमने क्यों किया है ये, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है प्रेम ग्रंथ, आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी है। लीजिए समाप्त कीजिए।

जी दोस्तों, आपने सुना प्रेम ग्रंथ फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी और आवाज़ें इस नगमे को दी थी विनोद राठौर और अलका याग्निक ने। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, ये है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में, समीर का लिखा गीत, दिलीप सेन और समीर सेन की मौसीकी है और फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

जी फौजी भाइयों, आपने हेलो ब्रदर फिल्म का ये नगमा सुना। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें थी, जली शेरवानी के बोल थे और हिमेश रेशमिया की ये मौसीकी थी। और अब अगला नगमा पेश करते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, और ये है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या।

प्यार किया तो डरना क्या। जी फौजी भाइयों, आप इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये नगमा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। और इस वक्त आप फिल्मी संगीत सुन रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर भी।

0: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: जी फौज भाइयों, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी में प्रकाश मेहरा के बोल। फिल्म का नाम है ईमानदार और इस नगमे को आवाज़ें दी हैं सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने।

जी फौजी भाइयों, आपने ईमानदार फिल्म से सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ये नगमा सुना, और अगला गीत हम पेश करने जा रहे हैं, ये है अनवर सागर का लिखा हुआ गीत, नदीम श्रवण की मौसीकी है, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

जी फौजी भाइयों, ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत और इसे हमने लिया था फिल्म सपने से। साधना सरगम की आवाज़ थी। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से उर्दू में खबरें नष्ट होंगी।

0: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू कश्मीर में मनुष्यवाद के खिलाफ शुरू की गई तहरीक में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील। यूटी भर में ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वाघामा बिजबिहाड़ा में एक बदनाम जमाना स्मगलर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनहदिम। वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला के हाथों सेमपोरा पांपोर में सरकारी मुलाजमीन के लिए तामीर किए गए 368 रिहायशी यूनिटों का इफ्तिताह। और जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस का बाज़ाब्ता तौर से आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों का मनुष्यवाद की बिद्दत में मुलव्वस होना एक तश्वीश की बात है। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतजामिया 2021 से जम्मू कश्मीर से मनुष्यवाद के खात्मे के लिए मुनज्जम तरीके पर काम करती आ रही है, ताहम इस मुहिम ने अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। श्रीनगर में एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत पसंदी और मनुष्यवाद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसकी सप्लाई चेन तोड़ने, लोगों में बेदारी पैदा करने और ड्रग एडिक्ट्स की बाज़ाबादकारी और इलाज मुआलजे के लिए खातिरखा इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कल फुटबॉल स्टेडियम टीआरसी श्रीनगर से मुनाकिद होने वाली पदयात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
1: इसकी व्यापक रणनीति बनाकर के 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी, हर क्षेत्र का सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। दवा की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी दवाइयां जो नशे के एवज में इस्तेमाल होती है उनकी जब्ती भी तेजी से की जा रही है। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सकें, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं और इसलिए 3 तारीख को कल

0: 9 बजे फुटबॉल स्टेडियम में एक व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करते हुए लाल चौक तक पदयात्रा भी हम सब करेंगे। मेरी अपील है सभी भाई बहनों से कि बड़ी संख्या में वहां आवें।
1: दरी हंसना कल श्रीनगर में मुनाकिद होने वाली एक बड़ी पदयात्रा के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फुटबॉल ग्राउंड TRC श्रीनगर से इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इंतजाम का जायजा लेते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नरों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों को हिदायत दी है कि वो सुबह 7:30 बजे तक तमाम शुरका की हाजिरी को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के पस मंजर में एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा गया है कि वो इस एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
0: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक सामाजिक कारकुन मोहम्मद गुलजार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हमारा पैगाम ये है कि जो ये नौसर समाज में पैदा हुआ है ड्रग्स का, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पुलिस इसमें बहुत कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करनी है इसको जड़ से खत्म करने के लिए, क्योंकि इसने बहुत से नौजवानों को, बहुत से छोटे बच्चों को, इवन लड़कियों को भी बहुत खराब किया है। बहुत से घर बार बर्बाद हुए हैं, जिनके माँ बाप बहुत तंग आ चुके हैं। माँ बाप से भी गुजारिश है सिर्फ उतने पैसे देना है अपने बच्चों को जितनी उनकी जरूरत होगी। समाज में हर एक फर्द का फर्ज है कि जो ये ड्रग्स है नशा मुक्त करना है।
1: पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए वाघामा बिजबिहाड़ा के एक बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर सजाद राथिर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को मुनहदिम कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि मजकूरा पेडलर ने यह जायदाद मंशियात से हासिल की गई आमदन से बनाई थी। अनंतनाग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो मंशियात से मुतालिक कोई भी जानकारी पुलिस को दें ताकि समाज को इस बिद्दत से मुकम्मल तौर से छुटकारा दिलाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत ने एतमाद, वकार और तरक्की का नया दौर देखा है। LG लोक भवन जम्मू में गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय बरादरी आज फख्र महसूस कर रही है और मुल्क में खुद एतमादी की नई लहर पैदा हुई है, जो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए तमाम तबकात को मुत्तहिद कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने सैमपोरा पांपोर में सरकारी मुलाजमीन के लिए 90,65,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए गए 368 रिहायशी यूनिटों का इब्तिदा करने के दौरान किया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू को नौकरी की अहलियत से ड्रॉप करने का कोई मनसूबा नहीं है। उन्होंने इस ताल्लुक से PDP की नुक्ताचीनी करते हुए कहा,
3: ड्रॉपेज ऑफ उर्दू, हमने उनसे कहा ना खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड ड्रॉपिंग अ सब्जेक्ट। ड्रॉपेज की फाइल आज भी मेरे टेबल पे है। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने टिकन पुलवामा के 4 साल बच्चे मोहम्मद हंजाला के दबजन शोपियां में घर के आब होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस हादसे को दिलखराश वाकया करार देते हुए बच्चे की रूह के अब्दी सुकून और लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए दुआ की है। लोक भवन जम्मू में मुख्तलिफ शख्सियात ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ सियासी व समाजी मामलात उजागर किए गए और LG ने उन्हें गौर से सुना। मुलाकात करने वालों में मेंबर पार्लियामेंट संजय सेठ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और साबिक DDC मेंबर और भारतीय जनता पार्टी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन शामिल हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। अब रेल सर्विस से मुतालिक खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान अपनी सर्विस का बाकायदा

0: का आगाज कर दिया है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई, जो खत्ते में रेल रबते को बेहतर बनाने की जानब एक अहम कदम है। पहली सर्विस में सफर करने वाले मुसाफिरों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए वजीर अजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों ने इस लम्हे को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आसानी और बेहतर राबता लेकर आई है। तवक्कु है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राबते को मजबूत करेगी। वाजह रहे कि यह सर्विस का इफ्तिताह जुमेरात को रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने किया। उन्होंने ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा संग मील करार दिया। द ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन जम्मू कश्मीर ने जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त रेल खदमात शुरू होने का खैर मकदम किया है। जीसीसी के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने एक प्रेस बयान में मुतालबा किया है कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में एक हॉल्टिंग स्टेशन कायम किया जाना चाहिए, ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों के साथ साथ सयाहों को भी राहत मिल सके। आठवां पे कमीशन यकम जून से 4 जून तक श्रीनगर का दौरा करेगा। इस सिलसिले में पे कमीशन के डायरेक्टर की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मुतालिकीन से कहा गया है कि वो रवां महीने की 16 तारीख तक याददाश्त और मुलाकात के लिए अपनी दरख्वास्तें कमीशन की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें। मुतालिकीन से कहा गया है कि वो ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा कराने के बाद हासिल होने वाला यूनिक मेमो आईडी अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच करें। कश्मीरी पंडित बरादरी ने 35 साल से ज्यादा अरसे के बाद कुपवारा के लोलाब सोगाम में गणेश चतुर्थी मेला मनाया, जो खत्ते में मजहबी और सकाफती रसूमात की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। यह प्रोग्राम सनातन सभा सोगाम ने जिला इंतजामिया और कुपवाड़ा पुलिस के तावुन से मुनक्कद किया था। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सोगाम मंदिर में हाजिरी देकर पूजा की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने गणेश चतुर्थी मेले की बहाली को एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने मंदिर का दौरा करके मेले में शरीक लोगों के साथ बातचीत की है। मरकजी सरकार ने मुल्क के शहरों के लिए नागहानी आफात से मुतालिक बरवक्त अलर्टिंग सर्विस शुरू की है। यह सर्विस अंदरून मुल्क टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए से शुरू की गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन सपहर 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी के अंदर श्रीनगर थी आयदा पारी प्रोग्राम कैन का मैं तुस्ता मेज़बान शबीरम शमस तुस्ती खिदमत भेज हाजरा और संसारियों को अदब तताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जे तुसी सारे खैर खरीयत नाल होसो। सामीन निके बच्चे वास्ते माऊ दा दुध ही मुनासिब है और इस बगैर कोई दूई चीज़ इब्तदाई दौर बिच बच्चे वास्ते फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। इस लई बच्चों ते बड़ियां वास्ते गाइयां मंजियां बकरी या ऊंट चीनी का दुध है जिहड़ा उह भरपूर गिज़ा वाला है। असं देखा पहाड़ी इलाकों में गाइया तो बकरियां पालदे आसियां मगर वेला गुजरता गया तो अज असते इन इलाकों में यह माल भी मुकता जुलदा है या मुँह ही घट हो गया है और दुध जी नहमत ही महरूम आते जुलते हैं। असी अज भी इस पास तवज्जा देवा घर गाइया पालं या कदे ये मुमकिन नहीं तो फिर पशु पालन महकमे नाल या उनकी मदद नाल निके निके फार्म खोलां। इस नाल एक तो अस्ते बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के वसायल जिहड़े वो हासिल हो सन उन्हां वास्ते पैदा हो सन। दूआ इन इलाकों में साफ तो खालस दुध है जिहड़ा आम लोगों को मुहैया हो सी जिस वास्ते जिहड़ी परेशानी होंदी है दुध ना होने की वह दूर हो गए सी। तो सामीन गल्लां असीं होर भी कर सन तो आओ पहले सुनते हैं सुभाष दत्ता की आवाज़ में एक गीत।

जी सामीन तुसी सुन रहे हो गुलाम हसन तबसम की आवाज़ में गीत। तो सामीन इस अज के प्रोग्राम का वेला इत ही मुकदा है। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शब्बीर अहमद शमस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मारूफ उन निसा को दे इजाजत।

सस्टेनेबल तो टूरिज्म कोई असल हिसाब गोरा जस और खास करके कोई गोराई हूँ मतलब टूरिज्म एट मतलब पाजी जे एक सदाए दिशे है कोई वेनु ठू साफ सफाई छिन और खास करके पिठोकुन पार्क एक वारक एक जे एक सदाए निश टूरिस्टों का रुकून इंसान बेबल इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट एट ही ऐसी गुजारिश की सस पाजी सुनो थोड़ा बहुत वे चीज़ें तवज्जा दी ताकि मतलब कोई वादू दिशे हैं सब जिन मैंने फिरा के बस किया मुठूट पे खाली हवा खातून हूँ या अंगाए कोट हूँ या इजमरग हूँ वे चीज़ ने बोझिन बल मतलब या व्यू पॉइंट हूँ वेनु कूने चे वे दिशू जक इन हा बोझिन हा होपा जी थोड़ा बहुत वे चीज़ सम थे मॉडिफाई थी बस कोसे रन यानी वनुट असल हिसाब अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई थी तो यकीन कोई ऐसी जाखा कोई दारू टू इन मतलब सनुटे को असली साबी सस्ते मजा थी और खास करके फिर कोई वधू जाखा को गिजा विजा थी ना होटल उज बाकी सुन पाजी थोड़ा बहुत हमेशा एक चीज़ खाया चुन क्योंकि क्वालिटी कोई हूँ मतलब सो पाजी सुन हमेशा वो चीज़ ख्याल चुन क्योंकि क्वालिटी कोई से बुट जुबाड़ी चीज़ है कासी और सुन खून पीन कोई उसे पोजिन असल हिसाब और खास करके कोई गोरायु क्यूजीन सा गोरायु कोई खून पीन हूँ लोकल कोई सुनट पाजी गोरा चुट मतलब थोड़ा बहुत से चीज़ अट पा चुन तो आ चुन पाजी असल हिसाब है बट उम्मीद ही कि कोई माहौल उबार के फिर हमें कोई टूरिज्म उबारे सोसी नाला में मुश्किल था यकीन छोट पसंद और मोस्ट एक चीज़ ना यजूब राम तो मैं गोरा चुट कोई टूरिस्ट ही उससे मतलब हौसला अफजाई था सेठ साम हिसाब प्यार मोहब्बत पशा ताकि सो टूरिस्ट कोई दोबारा गोराई फिरा गई उम्मीद आजू को शो कोई सोट जरूर सो पसंद आला दिया आजू को प्रोग्राम जो तुम मेज़बान शाहनवाज सामून प्रोग्राम प्रोड्यूसर मारूफा निसाट इजाज़त खुदा हाफिज़।

0: समय नबी आप अशना प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे शाह नवाज सामो।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज का गोजरी प्रोग्राम।
2: अस्सलाम वालेकुम सामिन मोहतरम, आज का गोजरी प्रोग्राम लेख के थारी हिदमत में थारा मेज़बान जाकिर हुसैन हाजिर है। आज का प्रोग्राम कलाम शायर का सिलसिला के तहत रिकॉर्ड कियो गुलाम मोहम्मद इदरीस शाद साहब और की जबानी तब सुनेगा। तो इसके अलावा प्रोग्राम में एक आर्काइव कड़े हुए इंटरव्यू भी है। यह इंटरव्यू गोजरी और पंजाबी का नामवर शायर और अदीब और रेडियो कश्मीर श्रीनगर का पहला अनाउंसर आज जो इंटरव्यू थारी खिदमत में पेश करेंगा वो चौधरी इकबाल अजीम साहब को है। तो प्रोग्राम का शुरू में नात शरीफ सुन लिया।
3: एक

0: आज का प्रोग्राम मजिस्ट्राम ने थारनल वादुकियत हो के एक इंटरव्यू हमारे को इकबाल अजीम चौधरी साहब और को आप सुन लिया।
1: आज हमारे सामने इकबाल अजीम जैसी शख्सियत है जिन्होंने गोजरी जबान व अदब उर्दू और पंजाबी के हवाले नाल काफ़ी कुछ सामने रखे हुए हैं, जुड़ो एक हमारा नवा राइटर्स जड़ा या बाकी लोग हैं उन वास्ते एक हदायतनामा भी है और हम चाहवा कि यो मिशन इनको इसी तरह जारी रहे और यो एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जुड़ो आइंदा आने वाली नस्लों वास्ते भी महफूज हो जाएगा। इनकी शख्सियत हमें जहत है और इन्होंने पंजाबी में भी शायरी की है, गोजरी जुबान का फ़रोग वास्ते भी इनने काफ़ी शुरुआत की थी, बल्कि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए कश्मीर अकेडमी का हवाला नाल शुरुआत इन्होंने की और रेडियो को प्रोग्राम जुड़े तो शुरू हुआ था वो भी इन्हें का हवाला नाल शुरू हुआ था। इनकी इस शख्सियत को आम कहाँ के आम हमारा जरा सामीन है वह भी फ़ायदा उठाना चाहिए। आज तक इनकी जड़ी किताब सामने आ गई हैं उनमें रीज कवली पंजाब और पंजाबी में कुली नी फकीर दी विचों ये किताब जड़ी ये सामने है और भी इनको नसरी अदब जुड़ो है वो भी महफूज है। जहाँ हम चाहवागा कि इन नाल कुछ ख्यालात अपने जड़े ये हम शेयर करें। अजीम साहब थारा तो हम पहला जो ही पूछना चाहवागा कि थारो अदबी सफ़र किस जमाना में शुरू हुआ, किस दौर में तुमने जो सिलसिलो शुरू किया और किस उम्र में अगर हम कहेंगे तो उस तुम भी अंदाजा हो जाएगा कि थारे इस नाल कितनी रकबत रही है और आज तक के कुछ की हुआ।
2: आज़ाद साहब दरअसल यह गल कहनी कि हम कोई अदीब या अदब का हवाला ना बड़ी शख्सियत हूँ

0: या तो नहीं, वो समझो कि जो भी थो लिखे हो या काई चीज भी करी उसको एक सिलसिला जोड़ियो। मारो खानदान जुड़ो है, वो पाकिस्तान का जिला हजारा थे, सुजोड़ा नाह का ग्रांत आयो
1: जी जी हाँ।
0: उतिया थी कि मारा बुजुर्ग जड़ा था, उन्होंने कई लोग जड़ाए वे उच्चा दर्जा का शायर होया, अदीब होया और आलिम होया और रूहानी शख्सियत हुई। मैंने भी जो एक तरीका के नाल बड़ी नदामत के नाल बड़ी इनकसारी के नाल हूँ या अर्ज करूँगो कि मेरो खानदान जड़ो थो उसके बीच बड़ा उच्चा दर्जा का लोग था और मेरी जिंदगी हूँ तो कश्मीर में पैदा हो, लेकिन जो

0: آنکھ
1: उसका हाथ ना से एक हिजर को साड़ गयो, दुखिया दिल पर जिसने फायो तरियो यार।
0: ये तो एक अलामती इजहार है
1: जी। आस को बूटो हरियो परियो रखनो थो, आस को बूटो हरियो परियो रखनो थो, धरती ऊपर कणिये कणिये भरियो यार। हर दरिंदा ने मेरे पर तरस कियो, हर दरिंदा ने मेरे पर तरस कियो, आदमिया ना हेर के खासो डरियो यार। गालू करू तो लोगो वो के हम कि तू अपनो शेरी सरमायो ले आया, ते उस दरबार ते ले आया जिस जिस ना आज भी और तद भी रियासत जम्मू कश्मीर का एक आखिरी कोना के बिच एक हैसियत हासिल थी। जेत शेर ते अदब का लोक जमा में था, जेत शेर ते अदब को खजानो आतो रह थो, और जितू लोग सिख के जाए था। उसे बाड़ी का सिख्या वा लोक जड़ा है उनके बिच खुदा बख्शार है, उसे बिच मौलाना मोहम्मद असीन मोहम्मद इस्माइल जबी है, मौलाना मेरुद्दीन कमर है, खादम हुसैन है, और बरकत शाह है, बाग हुसैन है, और वे सारा का सारा लोक जड़ा था उन्होंने उत अपना शेरी जड़ा कलाम थो उसकी दाद बाबा जी साहब थे और फिर हजरत मियां निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे सिखी। इसके बीच मारा बुजुर्गों के बीच मेरा चाचा था, सगा चाचा जी, था इसराइल असर साहब, मेरा वाल साहब भी शायरी करे था लेकिन शेर को बड़ो जोक थो और उन्होंने हजारा शेर याद था। तो इस तरह यू सिलसिलो जुड़ो थो वो उतू आयो जिसते इस वक्त को गोजरी अदब जुड़ो है बिला शुबा उससे मुतासर हो, और उससे स्कूल का लोग जुड़े उससे दर्शगा का लोग जुड़े भी आगे चलने लगा और उन्होंने बड़ो काम कियो।
0: यो इल्मी ते अदबी सिलसिलो जुड़ो है और तमने ये जड़ा जिन शख्सियात का इसमें ग्रामी सामने आने इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और आज भी मारा कोल अगर देखे जाए गोजरी अदब की पूरी रवायत बनी हुई मारा कोल इसे बुनियाद पर और इससे प्रसार ये सिलसिला आगे चलने लगा हुआ।
1: नसीम पूंछी है, डॉक्टर रफीक अंजम है, बाकी का कुछ शायर इंजड़ा, और एक नौजवानों को सामने एक काफलो आया हुआ मुख्तलिफ मुशायरों में उन्होंने सुने तो मैं ना लगो कि गोजरी अदब जुड़ो है वो काफ़ी संजीदगी के नाल भले भले होले होले ही से
0: जी जी।
1: लेकिन बड़ी बाकी चाल नाल चले लोगो और ना उम्मीदी की गल नहीं। लेकिन कुछ लोग चढ़े हैं, मैं पहले तमना अर्ज की होगी कुछ लोग चढ़े हैं वे यो ले के एक नारो ले के एक उस अंदाज नाल ले के, फिर बहुत सारा लोग चढ़े हैं मैं नकाली की तरफ चले लगा, खैर उस ना रहने दो। लेकिन असनाफ सुखन की हद तक तमकें ते इस वक्त गोजरी के बीच तकरीबन सारा मानूस उर्दू का मानूस जड़ा भी नजरिया है या जड़ा तरीका है या जड़ी तकनीक है उसके ऊपर शेर किया जा रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग जो है वे अच्छी शायरी करने लगा हुआ। उन्होंने गजल भी कही है, गजल बिच ज्यादा लोगों ने जोर मारे हुए, नज़म भी कही है, नात शरीफ भी कही है, बाकी चीज भी कही है। और दूजी एक अजीब गल जड़ी है वाह है कि पंजाबी को असर है जड़ो वो गोजरी शायरी के ऊपर काफी वाजह रंग जुड़ो है, और खास तौर पर ये जुड़ी असनाफ सुखन में जिड़ी बहर है, मसलन सैफल मलूक की बहर में गोजरी आला ने गजल भी कही है, मैं भी कही है।
0: तो बिल्कुल याद है एक बहुत बड़ी रवायत है इस पंजाबी का हवाला
1: चीज जिड़ी है, इसके पीछे एक और चीज भी है
0: जी।
1: वह यह है कि पंजाबी को सिलसिलो जुड़ो, पंजाबी शायरी को, क्लासिकल पंजाबी शायरी को जुड़ो सिलसिलो है, उसमें भी तम देखेगा कि तसव्वुफ की गल है, सूफियत की गल है। पंजाबी का भी पुराना जितना भी बड़ा शायर जड़ा था उनका कलाम न तम देखो उसके बीच वा चाशनी जड़ी है वो मौजूद है। इसी तरह यह चाशनी जड़ी है क्योंकि पंजाबी का पढ़ने वाला लोग था ये, यानी कि उन्होंने वे उनके ख्यालात लिया, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि बहुत बड़ी देन है गोजरी जबान न पंजाबी की।
0: इसमें थारी गल थोड़ी कठिन आएगी, उनको लगो कि पंजाबी जड़ी अगर देखे जाए तो अदब की रवायत गोजरी जुबान के पीछे जड़ी है पंजाबी की बहुत ज्यादा रही है इस पिछला दौर में।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आजकल भी अगर पुराना बुजुर्ग नाल अगर हम गल करेंगा वे हीर रांझा की, मिर्जा साहेबा की, सोनी महिवाल की, शशि पुनू की, या इन हवाला नाल जिस वक्त में गल करें हमारी शायरी में जिड़ा वे रंग आया है या इल्मी तौर पर इनका तवज्जो दी गई बाद में गोजरी की तरफ है। और इसे की चोली में थारी दक्कनी भी आई, हिंदवी भी आई, लाहौरी भी आई, उर्दू भी आई, ये सारो कुछ जो भी तो इसे चोली में पड़े हैं। लेकिन इस जुबान ने भी जिस वक्त इंगा आऊंगा थोड़ा जो ये पंजाब का इलाका का आस पास की जिड़ी रवायत बनी तो उसमें पंजाबी शायरी को एक बहुत बड़ो एक सिलसिलो रहे हो, तो उस सिलसिला के तहत तमने कुछ पंजाबी में भी तखलीकात की।
1: मैं पंजाबी में दरअसल मैंने लगे कि हूँ जो सुखत गोजरी में अपने मुतालिक उतनी गाल करना हूँ अच्छा नहीं लगता, मैंने पसंद भी नहीं कि हूँ के हूँ तो यू के कुछ होते रहे हो।

0: यो रेडियो कश्मीर श्रीनगर है। इस वक्त शाम का 5:30 बजे हैं और गोजरी प्रोग्राम शुरू हुआ है। मैंने लगे कि गोजरी को एक रियासत जम्मू कश्मीर में जुड़ो पहलो नसरी जुमलो था वो यो ही था। लोग बोले था कितनी खूबसूरत गोजरी बोले था कुछ करें था, लेकिन नसर वाले पास कोई रुझान था ही नहीं। फिर जिस वक्त हम आ गया रेडियो विच, जिस वक्त हम आया तो हमने अपनी तरफ से काफी कोशिश करी। खुशकिस्मती थी कि इसका नसरी अदब की कि मैं अपने नाल किसी न किसी तरीका ना नसीम पुंछी ने जोड़ लियो। हम जिस वक्त आ गया तो फिर हमने लिखना शुरू किया और एक फैसलो कर लियो कि हर हफ्ता के बीच एक आध कहानी या एक बेहतरीन किस्म की गोजरी में टाक जड़ी है वह नशर की जाए। उस वक्त मारी नजर यहाँ बड़ा अदीबंदर या बड़ा शायरंदर नहीं थी क्योंकि वे नसर का लोक नहीं था। ते हम कॉलेजों दर ते यूनिवर्सिटियों दर टूरिया ते तम गवाह हैं कि तमना हम यूनिवर्सिटी ते ले आया इस पास है। तम इस गल का गवाह है कि हम शरीफ शाहीन ना यूनिवर्सिटी ते ले आया, हैदर आदिल ना हम ले आया, दूजा लोका नाम नसर आले पास ले आया। फिर गोजरी में जड़ो अदब तखलीक होन लगो उसमें ज्यादातर अफसानवी अदब थो। तो यो अफसानवी अदब जड़ो है उसके बीच एक टामक टोई मारन वाली गल थी क्योंकि फन को किस्सो है जड़ो वो पूरा तौर पर तकनीक ते बहुत घट लोग वाकिफ था, लेकिन लिखता गया ते मश्क सुखन जारी रही ते उसके बीच एक निखार भी आ गयो। एक वक्त मैं स्टेज दे या गल कही दावो कियो के गोजरी की कहानी जिड़ी है मारो कहानीकार जुड़ो वो उत पहुंच गयो कि वो किसी भी दूजी गुमाड़ी जबान का कहानीकार के नाल पंजो लड़ा सके। फिर तनकीदी मजामीन भी लिखा गया, फिर लसानियात पर भी मजामीन लिखा, फिर कॉन्फ्रेंस जिड़ी हुई। रेडियो की जिड़ी देन थी वह अपनी जगह क्योंकि शुरुआत रेडियो की थी जी, और फिर उस वक्त के बाद जुड़ो कल्चरल एकेडमी के बीच जो शोबो खुलियो उस वक्त गोजरी को नसरी अदब जुड़ो उसने काफी फरोग मिलियो, काफी चीज लिखी गई। फिर ऐसे हाथ तोड़िया हो कि हमने फोकलोर जितनों भी फोकलोर थो गोजरी को वो कलेक्ट कियो और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की कई किताब जिड़ी है, कई जिल्द जिड़ी है इसकी छपी और इसे तरीका के नाल खसूसी नंबर जड़े वे भी छपिया
1: जी।
0: अफसाना नंबर छपियो, गजल नंबर छपियो, दूजा नंबर जड़े वे इस स्पेशल मशाहिर नंबर छपिया। ते इसमें गोजरी की नसर जड़ी है उसने काफी फरोग मिलियो, एक ऊपर तक आ चंगो ग्राफ ऊपर तक आयो। लेकिन फिर बदकिस्मती जा है तमके था कि नौ लोगों ने तमके कहना चाहे नौ लोगों ने हम यही गल कहा कि चीजें ना महसूस करो, सच्चा दिल नाल सच्ची नीयत नाल महसूस करो। सीधी गोजरी की गल कहूं कि चंगी नीयत जड़ी है चंगी नीयत के नाल चंगी चीज हो और वे अगर चंगी नीयत या मुराद है कि तुम अपनो माहौल अपना मामलात अपना दुख दर्द अपनी खुशी सादा जी खुशी जड़ी है उन्होंने अपने अंदर महसूस करो और अपना दिमाग में उन्होंने एक किस्म को चक्कर लुआ उन ख्यालात ना ते फिर कलम ते उन्होंने बांधे लियाओ ते नसर अच्छी बन जाएगी। हमने नसर में जो कुछ लिखे हो
1: जी जी
0: मैं कहानी भी लिखी है, रवायती अंदाज की कहानी भी लिखी है और अलामती कहानी भी लिखी है। फिर मेरे सामने गोजरी के बिजड़ा अच्छा कहानीकार आया हूँ एडिटर की हैसियत नाल थोड़े जो नकाद भी थो मेरे सामने जेड़ा चंगा कहानीकार आया उन्होंने गुलाम सुल आजाद अमीन कमर मोहम्मद हुसैन सलीम नसीम पुंछी शरीफ शाहीन और बहुत सारा इस किस्म का जेड़ा पढ़िया लिखे आदमी था जेड़ा तकनीक का वाकिफ था उन्होंने कहानी जिड़ी है वे ऊ बोल नहीं सकते और मैं भी जिड़ी कुछ कहानी लिखी वे हूँ ये जेड़ो मौजूदा एक जो टर्माइल है जेड़ो
1: तनकीद नगारी का हवाला ना अज उस तरह को मैंने नहीं लग रहे कुछ चीज सामने आई है इस पर थारा के ख्याल आते हैं।
0: तनकीद की हद तक यह है कि काफी गुर्बत है
1: जी
0: क्योंकि तनकीद को मजमून जुड़ो है तनकीद को जुड़ो असलूब है
1: जी जी
0: असलूब की बात की गल है लेकिन तनकीद को कंसेप्ट जुड़ो है मारा अदीबाना बहुत काट है। इसकी वजह जड़ी है वह यह है कि वे इस पास अपना ध्यान नहीं देना चाहता। तनकीद जुड़ो वो नहायत ही खुश्क मजमून है। मेरे को तनकीद की किताब हो लोग खुली किताब हो थी पेवी दे कोई किसने चाले अफसाना की कोई शायरी की कोई कुछ की तो मेरे को जिड़ी भी तनकीद की किताब थी वे तद जद खरीद के रखी थी तो मैं ही वर्क पर आया था मुड़ के कोई आदमी जुड़ो है वे उतु किताब नहीं उठा के ले गए वह ध्यान तो न रही ते तनकीद को चूंकि

0: कलाम शायर के सिलसिला के तहत हमारा कुल महमूद इदरीस शाह साहब को कलाम है, तो पेश है।
1: गजल अर्ज है। सांस जद तक चलती रहेगी, आस की दिनी बलती रहेगी, तेरी याद ता हया।

0: समय ने भी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय शाम के 5:50 होने वाले हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम का 5:55 होया है और तम गोजरी में खबर सुनो। पहला खास खास खबरें की सुर्खी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू कश्मीर में मुंशियात के खिलाफ शुरू की गई तहरीक में बढ़ चढ़ के शिरकत करने की अपील। पूरी यूटी में ड्रग स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई जारी। वाघहामा बिजबैड़ा में एक बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ रुपया मालियत की जायदाद मिसमार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों सिमपुरा पांपोर में सरकारी मुलाजमीन वस्ते तामीर किया गया 368 रिहायशी यूनिटों को इफ्तिताह तय। जम्मू और श्रीनगर के बीचकार वंदे भारत एक्सप्रेस को बाजाब्ता तौर तो आगाज। और पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मनशियात की बिदत में मुलवस आनो एक तशवीश की गल है। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया 2021 तो जम्मू कश्मीर तो मनशियात का खात्मा वस्ते मुनज़म तरीके पर काम करती आ रही है, ताहम इस मुहिम ने उन एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। श्रीनगर में एक न्यूज़ एजेंसी के नाल गल करता हुआ उन्होंने कहा कि दहशत पसंदी और मनशियात एक दूजा के नाल जुड़िया हुआ है और इसकी सप्लाई चेन त्रोड़न लोगों में जानकारी पैदा करन और ड्रग एडिक्ट्स की बाजाबतकारी और इलाज वस्ते खातिर ख्वा इकदाम किया जाना जा रहा है। उन्होंने लोगों ने अपील की कि वे कल फुटबॉल स्टेडियम TRC श्रीनगर तो मनगदा ओण आली पद यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सों लें।
2: इसकी व्यापक रणनीति बनाकर के 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी हर क्षेत्र का सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। दवा की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी दवाइयां जो नशे के एवज में इस्तेमाल होती है उनकी जब्ती भी तेजी से की जा रही है। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सकें, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं और इसलिए 3 तारीख को कल 9:30 बजे फुटबॉल स्टेडियम में एक व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करते हुए लाल चौक तक पदयात्रा भी हम सब करेंगे। मेरी अपील है सभी भाई बहनों से कि बड़ी संख्या में वहां आवें।
1: इसे दौरान कल श्रीनगर में मुनक़द होने वाली एक बड़ी पदयात्रा का सिलसिला में तमाम इंतजाम मुकम्मल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फुटबॉल ग्राउंड TRC श्रीनगर तो इस यात्रा ना चंडी 10 के रवाना करेंगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इंतजाम को जायजा लेता हुआ तमाम डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमा का सरबराहों ने हिदायत दी है कि वे सुबह 7:30 बजे तक सारा शरीक होने वाला की हाजिरी ने यकीनी बनावे। ट्रैफिक पुलिस का यात्रा का पस मंजर में एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है और लोगों ने कहा गया है कि वे इस एडवाइजरी पर सख्ती नाल अमल करें। जम्मू कश्मीर ने मनुष्यात की बिदतों पाक करने वास्ते सोते

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईई

0: आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तो एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

وند حسبُ ذو جان سبحان اللہ چم ہول سینس گچھا مدینس

وند حسب زو جان سبحان اللہ وشمس رویس ولیل مویس وشمس

0: मम्मी की सेहत खराब हो सकती है।
1: अच्छा भाभी,
0: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
1: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
2: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
3: शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन, जम्मू शहर के बनतलाब इलाके में कल शाम एक जेरे तामीर पुल के गिर जाने से 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। बताया जाता है कि ये तीनों मुतवफी अफराद पुल की तामीर में मजदूर की हैसियत से काम कर रहे थे। हादसे के बाद शुरू की गई बचाव कार्रवाई में एक मजदूर को जिंदा बचा लिया गया। यह हादसा बनतलाब में ठट्ठर के मकाम पर पेश आया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हादसे का संजीदा नोटिस लेते हुए प्रोजेक्ट से जुड़े 2 इंजीनियरों को मुअत्तल किया है, जबकि मुतालिका ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब।
4: सरमाई राजधानी जम्मू में गुज़श्ता देर शाम जम्मू के बनतलाब में ठट्ठर इलाके के नजदीक एक दिलसोज हादसा पेश आया, जहां जेर तामीर पुल का एक हिस्सा अचानक गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए। हादसे के नतीजे में 3 मजदूरों की मौत वाका हो गई, जहां एक मजदूर को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू के मुताबिक हादसे के वक्त कुल 12 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ पुल के ऊपर जबकि कुछ नीचे मौजूद थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके बाइस ये सानहा पेश आया। हादसे के बाद इंतजामिया ने पूरी कार्रवाई करते हुए मुतलिका तामीराती इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया है और एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हुकाम का कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुराने इस पुल में पिछले साल अगस्त सितंबर में फ्लैश फ्लड्स के बाद दरारें और शगाफ पड़ गए थे, जो कि हादसे की वजह हो सकते हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुल का एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हुआ, जिससे वहां काम करने वाले मजदूरों को संभलने का मौका भी न मिल सका और वो मलबे तले दब गए। हादसे की इतला मिलते ही मुकामी लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की जुदजहद के बाद एक मजदूर को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, जबकि 3 मजदूरों की लाशें मलबे से बरामद हुई। हादसे में मारे गए मजदूरों की पहचान उड़ीसा से पुंछु सेठी, छत्तीसगढ़ से राजकुमार और मनीष कुमार के तौर पर हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। मुकामी लोगों और जां बहक हुए अफराद के खानदान के लोगों ने हादसे पर गहरे रंजो गम और दुख का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि तामीराती कामों में हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचा जा सके।
3: जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू शहर के बनतलाब इलाके में पेश आए हादसे के बारे में, जिसमें 3 मजदूरों की जान चली गई। इधर बनतलाब जम्मू में पेश आए हादसे पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे दुख का इजहार करते हुए अपने ताज़ेती पैगाम में मुतासर कुंभों से हमदर्दी जाहिर की है और जख्मी मजदूर की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। वजीर आला ने वाकई की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म देते हुए हिदायत दी है कि पुल गिरने की वजूहात का पता लगा लिया जाए और किसी भी कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इधर एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने पटरारा से शाहदरा शरीफ तक तामीर किए जाने वाले गंभीर मुगलन रोड के काम को फिलफौर रोके जाने का हुक्म दिया है। उनके मुताबिक इस सड़क की तामीर में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। समिन, कटरा जम्मू शाहरा पर मोरी चेक पोस्ट के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि वहां एक स्लीपर बस और बोलेरो गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को बाहर निकालकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा पहुंचाया। डॉक्टरों ने वहां इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मी अफराद की हालत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मजीद इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया है। दरगिस्तान बानिहाल में 20 रोज से लापता नौजवान की लाश आज नाले बिशलरी से डिगडोल के करीब बरामद हुई और यूं नौजवान की तलाश का सिलसिला खत्म हो गया। मुतवफिक

0: ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के बाद जहाँ आवाम जदीद सफी सहूलियत का खैर मकदम कर रहे हैं, वही इस सर्विस को मजीद फहाल मौसर और आवाम दोस्त बनाने के मुतालबात भी इख्तियार करते जा रहे हैं। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अनंतनाग रेलवे स्टेशन के पड़ाव पर हॉल्ट के मुतालबे ने एक मजबूत अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। ताजरूप की अंजुमनों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों मुअज्जज शहरों समाजी कारकुनान सियासी कादीर और मुख्तलिफ तबका हाई ऑफिशियल्स से वाबस्ता अफराद ने मुतहदा होकर हुकूमत हिंद और मुतअल्लिका रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर बाकायदा क्याम आराम किया जाए। अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ तंजीमों का कहना है कि अनंतनाग में वंदे भारत ट्रेन की हॉल्ट से न सिर्फ जनूबी कश्मीर के अवाम को जदीद और तेज रफ्तार सफरी सहूलियात मैसर आएगी, बल्कि इस इकदाम से सयाहत तजारत कारोबार और मुकामी मईशियत को भी नुमाया फरोग हासिल होगा। इनके मुताबिक तलबा मरीजों सरकारी व निजी मुलाजमीन और रोजमर्रा सफर करने वाले मुसाफिरों को भी इस सहूलियत से बेहद फायदा पहुंचेगा। वफूद ने शहरबीन से बात करते हुए इस बात पर जोर भी दिया है कि अनंतनाग जनूबी कश्मीर का एक अहम तजारती तालीमी और आबादियाती मरकज है, लिहाजा रेलवे मनसूबाबंदी में इस जिला को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में वंदे भारत ट्रेन के हॉल्ट से न सिर्फ जिला अनंतनाग बल्कि कुलगाम शुपियान पुलवामा और दीगर मुल्क अजला के लाखों अफराध मुस्तफीद होंगे। तमाम तबका है फिक्र ने मुतफिक तौर पर हुकूमत हिंद और रेलवे हुकाम से अपील की है कि जनूबी कश्मीर के अवाम के इस दीरी नाजायज और अवामी मुफाद से वाबस्ता मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को अंतराग रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट फराहम किया जाए।
1: अनंतनाग को वंदे भारत ट्रेन के लिए हॉल्ट स्टेशन मुकर्रर किया जाए, इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की तरह कि जिले के कुआड़ इलाके में कल शाम शबीर अहमद नामी नौजवान ड्राइवर बिजली के तार की जद में आकर जान बहक हुआ। मकामी लोगों ने कुआड़ अस्पताल में डॉक्टर और एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इंतजामी और मकामी क्यादत के खिलाफ नारेबाजी की। इधर रुकने पार्लियमान सज्जाद अहमद किचलू ने नौजवान की मौत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए मुतासर कुंबे के लिए माली इमदाद का मुतालबा किया है। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इतला है कि इलाके के दूरफ्तादा गांव शाजन में महकमे बिजली की मुबैन लापरवाही से बिजली की तरसीली लाइन गिरने के नतीजे में एक गरीब शहरी का घोड़ा हलाक हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि गांव में बिजली का तरसीली निजाम खस्ता हाल हो चुका है, अलबत्ता बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद सूरत हाल जों की तों है। दरअसल अवंतीपुरा में जेर तामीर एम्स अस्पताल के काम पर मामूर एक मजदूर सर पर पत्थर लगने से जख्मी हो गया। जख्मी मजदूर की शनाख्त नजीर अहमद लोन के तौर पर हुई है, उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर डोडा किश्तवाड़ शाहरा पर गटसू पुल डोडा के करीब बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग होने के 22 गाड़ियों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ये वाकया आज सुबह पेश आया, जिसके नतीजे में सड़क मलबे से भर गई और इस अहम शाहरा पर गाड़ियों की नकल हरकत रुक गई। ट्रैफिक पुलिस के बकौल मलबा हटाने के लिए अमला और मशीनरी तैनात कर दी गई है और सड़क को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। ताहम लैंडस्लाइडिंग की शिद्दत के पेश नज़र ट्रैफिक की बहाली में कुछ और वक्त लग सकता है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: अपने सपनों को दो एक पावरफुल डायरेक्शन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रेस्टिजियस MBA प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स अब ओपन है। CMAT स्कोर के बेसिस पर चूज

0: From four career-defining options, MBA, MBA in Financial Management, MBA in Craft Management or Executive MBA. यहाँ मिलेगी आपको quality education, experienced faculty और real industry exposure, जो आपको बनाए future-ready leader. याद रखें, selection होगा सिर्फ आपके CMAT score पर. Last date extended है 4th May तक. अभी भी वक्त है, लेकिन ज्यादा नहीं. Apply now और अपने management career को ले जाएं next level पर. University of Kashmir, shaping leaders of tomorrow.
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहर बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समन जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम गैर मुस्तहकम रहने की पेशेंगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक कल 3 और परसों 4 मई को बेशतर इलाकों में वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, आंधी और बाज़ मकामात पर जालेबारी का इम्कान है। और अभी मुख्तलिफ ज़िलों से इत्तला मिली है कि कई मकामात पर जालेबारी और हल्की बारिशें आज भी हुई हैं। बताया जाता है कि 5 मई को चंद मकामात पर थोड़ी बारिश हो सकती है, जबकि 6 से 9 मई के बीच मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम दोपहर के वक्त कहीं कहीं हल्की बारिश खारिज इम्कान नहीं करार दी जा सकती है। इसी तरह 10 से 12 मई तक भी मौसम ज्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने वस्ती और शिमाली कश्मीर के अलावा जम्मू के कुछ इलाकों में जालेबारी और तेज हवाओं के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है और 3 और 4 मई को यानी कल और परसों दोपहर से शाम तक कश्ती रानी और शिकारा सर्विस मुअत्तल रखने की हिदायत दी है। उधर कठुआ से रमेश मरहटा की इतला है कि जिले के बनी और मुल्हिका इलाका जात में आज शाम लगभग 5:50 पर भारी बारिश शुरू हुई, जिसके नतीजे में वहां मामूलात शिद्दत से मुतासिर हो गए हैं। दरियासना कश्मीर को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली सिंथन टॉप को आज दोतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एसडीएम मड़वा के मुताबिक मरगन टॉप शाहरा को भी दोतरफा आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है, जिसका मुतालबा वाड़वन के लोग बहुत वक्त से कर रहे थे। समय जम्मू कश्मीर में मेगा इंसदाद मनशियात रैली के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यह रैली कल श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हरी झंडी दिखा के रवाना की जाएगी। रैली के पुरमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि किसी भी किस्म की दिक्कत पेश न आए। हुक्काम के मुताबिक टीआरसी ग्राउंड से लेकर लाल चौक तक मुख्तलिफ सरकारी महकमे सरगर्म में अमल हैं और रैली के रास्ते में तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से नशामुक्त जम्मू कश्मीर रैली का आगाज किया था। ये रैली 100 रोज तक चलने वाली है। इसी दौरान आज यूथ वेलफेयर एसोसिएशन दिवर लोलाब की तरफ से एक रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के मुख्तलिफ तालीमी इदारों, समाजी तंजीमों और अवामी हलकों ने भरपूर शिरकत की। इस रैली में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दिवर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिवर, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल दिवर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दिलबाग दिवर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इंद्रबुग दिवर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मरगी दिवर, मॉडल पब्लिक स्कूल दिवर, अलमीन पब्लिक स्कूल दिवर, वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंद्रबुग दिवर, लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल दिवर के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, ट्रेडर्स फेडरेशन दिवर के अराकीन और दीगर समाजी शख्सियात भी इस मुहिम में शरीक रहीं। प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन ऑफिसर सोगाम मुश्ताक अहमद मीर, रेंज ऑफिसर सोगाम अथर परवेज, एसएचओ लालपुरा शौकत अली, 28 आरआर के कैप्टन हेमंत और ट्रेडर्स फेडरेशन दिवर के सदर मुश्ताक अहमद भट्ट मेहमाना नजीविकार की हैसियत से मौजूद रहे। समय रवा माह से वादी भर में आबपाशी की सहूलियात में नुमाया इजाफा मुतवक्के है, चूंकि मई से ही वादी भर में धान की पनीरी लगाने का अमल शुरू होता है। इस सिलसिले में अलबत्ता वादी के मुख्तलिफ जिलों से शहरबीन को शिकायत तबातुर के साथ मौसूल हो रही हैं कि महकमा आबपाशी ने अभी तक आबपाशी कोहलों और कनालों की बहाली उस दर्जा अमल में नहीं लाई है कि जिसकी तवक्कु की जा रही थी। काश्तकार परेशान हैं और उन्हें खदशा है कि अगर आबपाशी सहूलियात का बरवक्त बहाल मुमकिन न हो पाया तो उनकी मेहनत रायगां होगी। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राठौर।
2: जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में आबपाशी कनालों की खस्ताहाली, सफाई के फुकदान और बर वक्त तैमीर मरम्मत न होने के बायस खेत खलियानों तक पानी की फराहमी तकरीबन नामुमकिन बनकर रह गई है, जिसके बायस जिला भर के जमींदारों में खदशात और बेचैनी की लहर दौड़ गई है और महकमा इरीगेशन के साथ साथ दीगर निगरान एजेंसियों की गफलतशारी पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। जिले के सभी जमींदारों में इस बात को लेकर शदीद खदशा पैदा हो गया है कि एक तरफ जहां

0: फसलों की बुआई का मौसम करीब आ पहुंचा है। वही तबाहशुदा और मिट्टी से भरे आपाशी कनालों की तजदीद मरम्मत और उनके करीब किनारों पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ढांचों को मुनहदिम करने में सरकारी सतह पर पाई जा रही बेहसी और बेबसी एक संगीन मसला बन गया है। जिले में पाए जाने वाले आपाशी नदी नाले, टरबुजी कनाल, दिरीगाम लाद, रुजलू कनाल, आमनू लाद, लेवडोरा कनाल, गुरपाई लाद, गुनीगाम कनाल, बानी लाद, ग्रमतू कनाल, विसु लाद और वट्टू कनाल के साथ साथ खिदर लाद, नांदी कनाल, नागम लाद, नूराबाद कनाल, चुरठ लाद, छानकोल, रुजलू कनाल और सिनीगाम लाद के अलावा विसु कनाल, यमरश लाद, पांजतनाग कनाल, यारी लाद और दीगर मुतादिद कनालों में गारे मिट्टी के बड़े बड़े अंबार जमा होने और किनारों को नुकसान पहुंच जाने के साथ साथ उनके किनारों पर तामीरात खड़ा करने से पानी की रवानी में शदीद दिक्कतें पेश आ रही है, जिसके नतीजे में जमींदारों में शदीद तशवीश का माहौल पैदा हुआ है। जिले के अक्सर इलाकों के जमींदारों ने शहरबीन को बताया कि अगरचे एक तरफ आवियानी की फीस की वसूली के खातिर जमींदारों को शदीद दबाव डाला जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब महकमे इरीगेशन की तरफ से आपाशी कनालों की तजदीद मरम्मत और उनको सही सिमत पर लाने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। नालों की खुदाई और तजदीद मरम्मत के खातिर अगर हंगामी बुनियादों पर फौरी इकदाम न किए गए और पानी की बहाली के खातिर ठोस इकदाम न किए गए तो इलाका जोसर, कुलगाम, नूराबाद, मजगाम, होम शालीबुक, यारीपोरा, काजीगुंड और इलाका कोंड के अलावा जिले के दीगर इलाकों के हजारों जमींदारों को अपनी जरूरी जमीन को सैराब कराने के हवाले से शदीद मुश्किल से दुचार होना पड़ेगा और सारी जमीन बंजर में तब्दील हो जाएगी। मुद्दा जिक्र नदी नालों की तजदीद मरम्मत के खातिर महकमे इरीगेशन कुलगाम की जानिब से अगर हर साल हायर अथॉरिटीज को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजने के साथ साथ याददाश्तें भी पेश की जाती है, ताहम जमीनी सतह पर मुस्बित आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाइस जमींदारों को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। जिला भर के जमींदारों ने आपाशी कनालों की पूरी तजदीद मरम्मत और नदी नालों के किनारों पर गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम करने के खातिर मुतल्लिका महकमे और जिला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है।
1: कुलगाम से फारूक राठौर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर सेहत, तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना एतू ने आज कुलगाम जिले के डीएच पूरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने जम्बल नाड़ में नौ तामीरशुदा प्राइमरी स्कूल इमारत का इफ्तिताह किया और जम्बल नाड़ बाड़ी जालन सड़क का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए सकीना एतू ने कहा कि मेयारी तालीम तक रसाई एक तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद है और हुकूमत तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने और तदरीसी मेयार बेहतर बनाने के लिए हद दर्जा संजीदा है। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा है कि उर्दू चूंकि जम्मू कश्मीर की सरकारी जबान है, लिहाजा इसे नजरअंदाज करना का कोई भी कोशिश खित्ते की सकाफती और इंतजामी विरासत को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जबानी यकीन दहानियों के बजाय वाजह और बाजाबता बयान जारी करना चाहिए ताकि इबहाम खत्म हो सके। इधर एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में छह कमरों वाली एक दो मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा। बताया जाता है कि यह इमारत यूटी कैपेक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस पर 3.5 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। अलावाजी सैफुद्दीन भट्ट ने समग्र प्रोजेक्ट के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में साइंस रूम, लाइब्रेरी और एसीआर की तामीर का संग बुनियाद रखा। जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आए रोज पत्थर और पसियां गिराने की वजह से न सिर्फ लोगों का सफर मुतासिर होता है बल्कि कई बार उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने सड़कों और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी से अपील की है कि कौमी शाहरा की तामीर और तजदीद पर संजीदा तवज्जो दी जाए ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द अपनी तकमील को पहुंच पाए। समन्वादीय कश्मीर में तमाम बड़े अस्पताल शहर श्रीनगर के अंदरून या फिर मजाफात में कायम हैं। इन अस्पतालों में जहां बढ़ती आबादी के बायस खासा दबाव है, वहीं यहां पर पार्किंग के लिए मखसूस जगह भी अब कम पड़ने लगी है और इसकी वजह से अक्सर तीमारदार सड़कों के किनारों पर ही गाड़ियां पार्क करने को मजबूर होते हैं। नतीजा ये कि तमाम अस्पतालों को जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है और इन सड़कों को तौसी देने का कोई मौका हाथ नहीं आता। एक रिपोर्ट के साथ इसी तनाजुर में इमरान नायकू।
2: शहर श्रीनगर में अस्पतालों और अहम शहरी इलाकों के अतराफ बढ़ती हुई तजावजात और सड़कों की तंगी ने ट्रैफिक निजाम को बुरी तरह मुतासर कर दिया है, जिसके बाइस मरीजों, तलबा, मुलाजमीन और आम शहरियों को रोजाना शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक शहर के अहम तिब्बी मराकज जैसे एसएमएचएस अस्पताल

0: सिक्किम में सोरा लाल डेथ हस्पताल, चिल्ड्रन हस्पताल, जेएलएनएम रेनावारी हस्पताल, बोन एंड ज्वाइंट हस्पताल बरजुला के अतराफ राबता सड़कें अक्सर ट्रैफिक जाम का शिकार रहती है। दुकानदारों की जाने से फुटपाथों और सड़कों के किनारे सामान रखने की वजह से रास्ते मजीद तंग हो गए हैं, जिसके नतीजे में एम्बुलेंसेज तक फंस जाती है और मरीज बर वक्त हस्पताल नहीं पहुंच पाते। ये मसला सिर्फ हस्पतालों तक महदूद नहीं बल्कि शहर के दीगर अहम इलाकों में भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लाल चौक और इसके अतराफ, डाउन टाउन के इलाका नवाठा, खानिया, रेनावारी, डलगेट, सोनवार, बागात, बरजुला समेत कई इलाकों में रोजाना ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिलते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इन इलाकों में न सिर्फ सड़कें पहले ही महदूद हैं बल्कि फुटपाथों पर दुकानदारों और दीगर अफराद की जानिब से बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है, जिससे राहगीरों के लिए चलना भी मुश्किल हो गया है। कई मकामात पर फुटपाथ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जिसके बाईस लोग सड़क पर चलने पर मजबूर हैं और इससे हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। शहरियों ने मजीद कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक मसाइल में कमी के बजाय इजाफा देखने को मिला है। इनका कहना है कि कई मकामात पर फुटपाथ गैर मामूली तौर पर कुशादा कर दिए गए, जबकि सड़कों की चौड़ाई कम हो गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। मिसाल के तौर पर करनगर चौक से SMHS अस्पताल और सिक्किम सौरा तक सड़क पर फुटपाथ इतने वसी कर दिए गए हैं कि गाड़ियों की गुंजाइश कम हो गई है, जिसके बाईस एम्बुलेंसेज, स्कूल गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्सर जाम में फंस जाती है। अवामी हलकों ने इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे इंतजामिया की जानिब से कई बार तजावजात हटाने के दावे किए गए, ताहम जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। लोगों का इल्जाम है कि दुकानदारों और मुतलिका इदारों के दरमियान मुबैना मिली भगत के बाइस ये मसला बरकरार है। शहरियों ने जिले इंतजामिया, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुतलिका महकमों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर हस्पतालों, स्कूलों और अहम शहराओं के एतराफ से तजावजात हटाएं और फुटपाथों को खाली कराएं। साथ ही मुतालबा किया गया है कि स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए फुटपाथों और सड़कों का अज़्तरीनो जायजा लिया जाए और जहां जरूरत हो वहां सड़कों को कुशादा किया जाए ताकि ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाया जा सके। आवाम का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो ये मसला मजीद संगीन हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर मरीजों की जानों, तलबा के मुस्तकबिल और शहरी जिंदगी के मामूलात पर पड़ेगा।
1: इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामुल्ला से करामत कयूम की तलाश, आज बारामुल्ला में महकमे उमूर सार्फीन, पुलिस, महकमे माल और फूड सेफ्टी महकमे ने एक मुश्तरक कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की बेकरी, जिनमें बिस्किट, केक और दीगर अशिया शामिल थी, को एक गोदाम से जब्त करके जाया कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये माल ईद उल फित्र के मौके पर बनाया गया था और इसमें जो माल बचा था उसको अब ईद उल अजहा के मौके पर फरोख्त किया जाना था। इस माल पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी गई थी। महकमे फूड सेफ्टी ने अफसरान ने बताया कि ये सारी चीज़ें नाकाबिले इस्तेमाल थीं और मुजर सेहत थीं। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज जोनल एजुकेशन ऑफिसर नारबल ने यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स और महकमे पुलिस के बाहमी इश्तराक से गुलमर्ग शाहरा पर वाकई गागरपुरा इलाके से नारबल तक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक रैली मुनाकिद की, जिसमें जोन नारबल से वाबस्ता मुतादिद स्कूलों के तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
2: खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है।

0: क्योंकि इसने बहुत से नौजवानों को, बहुत से छोटे बच्चों को, इवन लड़कियों को भी बहुत खराब किया है। बहुत से घर बार बर्बाद हुए हैं, जिनके माँ बाप बहुत तंग आ चुके हैं। माँ बाप से भी गुजारिश है, सिर्फ उतने पैसे देना है अपने बच्चों को जितनी उनकी जरूरत होगी। समाज में हर एक फर्द का फर्ज है कि जो ये ड्रग्स है, नशा मुक्त करना है।
1: सीनियर बीजेपी लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशां अंद्राबी ने राजपुरा पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे समाज के नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में हमें अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर बेदारी पैदा करने से इस बिद्दत का कलाकमा किया जा सकता है। तकरीब से बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी मुदस्सिर वानी और बीजेपी किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी अरशद भट्ट ने भी खिताब किया। इन लीडरों ने समाज पर मंशियात के पड़ने वाले बुरे असरात को उजागर किया। अब पेश हैं पुलिस की अवाम दोस्त और मंशियात मुखालिफ सरगर्मियों से मुतलिक खबरें। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए वाघामा बीच बिहाड़ा के एक बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर सजाद राथिर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को मुनहदिम कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि मजकूरा पेडलर ने यह जायदाद मंशियात से हासिल की गई आमदन से बनाई थी। अनंतनाग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो मंशियात से मुतलिक कोई भी जानकारी पुलिस को दे ताकि समाज को इस बिद्दत से मुकम्मल तौर से छुटकारा दिलाया जा सके। पुलिस ने अनंतनाग और शोपियां अजला में कई मकामात पर गैर कानूनी तौर काश्त की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया है। उधर पुलिस ने सोपोर में मंशियात मुखालिफ कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत बड़गाम के मुख्तलिफ जिलों में बेदारी प्रोग्रामों और PCPG मीटिंगों का इनेकाद किया। पुंछ पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मंशियात मुखालिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया। राजौरी पुलिस ने सलानी इलाके में एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। उधमपुर पुलिस ने हाजी बस्ती सैनिक कॉलोनी जम्मू के रफीक अहमद नामी ड्रग स्मगलर की 40 लाख रुपये मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। सांबा पुलिस ने रेलवे स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा के नजदीक एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। पुलिस ने बारामूला और हंदवाड़ा में 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मकदार में नशीली अशिया बरामद की है। 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने आज लोक भवन श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुपवाड़ा के साबिक वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से श्रीनगर में मुलाकात हुए। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के एक वफद ने इसके चेयरमैन नासिर अली खान की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। जिन दीगर शख्सियात ने LG से मुलाकात की उनमें साबिक DDC मेंबर BK पोरा बड़गाम, सायमा जान, CEO रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन शेख इनायतुल्लाह और सामाजिक कारकुन सबा जुल्कार नैन शामिल हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने सैमपोरा पांपोर में सरकारी मुलाजमीन के लिए 90 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 368 रिहायशी यूनिटों का इफ्तिताह करने के दौरान किया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू को नौकरी की अहलियत से ड्रॉप करने का कोई मनसूबा नहीं है। उन्होंने इस ताल्लुक से PDP की नुक्ताचीनी करते हुए कहा,
2: ड्रॉपेज ऑफ उर्दू। हमने उनसे कहा ना, खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड ड्रॉपिंग अ सब्जेक्ट। ड्रॉपेज की फाइल आज भी मेरे टेबल पे है। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बनतलाब जम्मू में एक पुल ढह जाने से हुए कीमती जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने गमजदा कुंभों के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मुतासरा कुंभों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। दरियासना वजीर आला ने भी इस हादसे में 3 मजदूरों के जान बहक होने पर दुख का इजहार किया है। एक ताजियती पैगाम में वजीर आला ने सोगवारों के साथ ताजियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने हिदायत दी कि इस हादसे की वजूहत का पता लगाया जाना चाहिए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। और अब रेल सर्विस से मुतालिक खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है।

0: उन्होंने शिवखोड़ी यात्रा के एहसन इनाकात के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत दी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से 9 से 4 मई तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप 2026 का इनाकात किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे और इन मुकाबलों में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाली 195 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले 1500 एथलीट और 300 एहलकार शिरकत कर रहे हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की तरफ से आज HADP के तहत स्टूडेंट रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ज़रई शोबे के जदीद साइंसी तौर तरीकों और रिवायती तौर तरीकों में तफावतों को कम करना है ताकि यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ साथ आम किसानों को भी फायदा मिल सके। डायरेक्टर सीरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में वादी के मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक रखने वाले किरमकशु में बीज की एक और खेप तकसीम की। इस सिलसिले में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि महकमा सीरीकल्चर सनत को दवाम बख्शने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। आठवां पे कमीशन यकम जून से 4 जून तक श्रीनगर का दौरा करेगा। इस सिलसिले में पे कमीशन के डायरेक्टर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मुतलकीन से कहा गया है कि वो रवा महीने की 16 तारीख तक याददाश्त और मुलाकात के लिए अपनी दरख्वास्तें कमीशन की वेबसाइट hcpc.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें। मुतलकीन से यह भी कहा गया है कि वो ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा कराने के बाद हासिल होने वाला यूनिक मेमो आईडी अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच करें। मरकजी सरकार ने मुल्क के शहरों के लिए नागहानी आफात से मुतलिक बरवकत अलर्टिंग सर्विस शुरू की है। यह सर्विस अंदरून मुल्क टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए से ही शुरू की गई। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज दोपहर तमाम शहरों के मोबाइल फोन्स पर एक नोटिफिकेशन और सायरन अलर्ट भेजा गया। अब पेश है मौसम से मुतलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:40 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:16 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं आबिदा अख्तर। वो ख्वाब जो 26 बरस बाद आज हकीकत बन गया। आज उस वक्त एक नई तारीख के बाब का इजाफा हुआ जब पहली बार जम्मू से बराह राह श्रीनगर आने वाली वंदे भारत ट्रेन नौगाम स्टेशन तक पहुंची। ये दिन बिलाशुबा वादी कश्मीर के लोगों के लिए रेल सर्विस का सबसे बड़ा तोहफा है। अब कश्मीर बाजाबता तौर पर भारत के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है और वो दिन दूर नहीं जब श्रीनगर से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और मद्रास जैसे शहरों तक बराह रास्त ट्रेन सर्विस शुरू की जा सकती है। ये रेलवे लाइन इस लिहाज से तारीखी है क्योंकि इसमें तीन बड़े संगमील उबूर किए गए हैं। इसमें चिनाब के मकाम पर दायरा वाला पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसके अलावा बनिहाल और काजीगुंड के दरमियान भारत की सबसे बड़ी रेलवे टनल और उंजीखड़ के मकाम पर भारत का पहला केबल पुल है। ये रेलवे मनसूबा जो जम्मू कश्मीर की सरसब्ज वादियों, घने जंगलात, दरियाई चिनाब के किनारे और सुरंगों के बीच से गुजरता है, न सिर्फ तकनीकी लिहाज से एक अजीम कारनामा है बल्कि कश्मीर वादी के लिए जिंदगी की नई लहर बनने जा रहा है। ये रेलवे लाइन कश्मीर को साल भर हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से जोड़े रखेगी जो कि आवामी और तिजारती रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। रेल सर्विस से न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि तिजारत और मईशत को भी नई रफ्तार मिलेगी। कश्मीर से खासकर मेवा दूर दराज शहरों तक सस्ते दामों में पहुंचेंगे और बाहर से आने वाली हर तरह की अशिया, बशमूल सब्जी, खाने पीने की चीजें, चावल, आटा और दीगर चीजें अब सस्ती मिलेंगी। जो इलाके अब तक सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी हलकों की पहुंच से दूर थे अब उनके लिए भी तरक्की और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8

0: 1 मीटर और FM 103.5 MHz पर, समीन रात के 8 बजे हैं।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

दोस्तों प्रोग्राम के नाम अगली फरमाइश आई है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से। आप हैं अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। आपने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से नगमा सुनना चाहा है आशा भोंसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं भद्रवा से पुरुषोत्तम कुमार, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, फाजिलका पंजाब से मेल आया है भूषण खेरा की जानिब से। आपके साथ हैं विशाल खेरा, विशु खेरा, लाडी खेरा, शालिनी खेरा, टिवानसी खेरा, वानी खेरा, आर बी खेरा और जीवन बुक। जिला खरगोन सनावत एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बुढ़ाना। सुदामा नगर खंडवा से मेल आया है लक्ष्मी, नंदनी, राहिल, रितु, मुकेश और जगताप की जानिब से। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी और बक्सर बिहार से राज वलीउल्लाह अंसारी और एसटी राज अंसारी ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर आशा भोंसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में नगमा। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और वादी की आवाज के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के हुए नगमे। दोस्तों, आप पेश हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में नगमा। फिल्म का नाम है मजदार, और पसंद करने वाले दोस्त हैं आकली दीवान मध्य प्रदेशी भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी, दिलीप कुमार चंद्रवंशी, दतरेंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने मेल भेजा है। पीरजादा मेराजुद्दीन, कैसरुद्दीन और निजामुद्दीन, आपने हमें पोस्ट कार्ड भेजा है सल्लर पहलगाम से, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्या नगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी कार्वी और हिमाक्ष चौहान, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह ने मेल भेजा है। डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया ने हमें मेल भेजा है पटेल नगर मलोट पंजाब से। आपके साथ हैं गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरिजू जजोरिया और गुड्डू, अपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आभान और अब्बासी परिवार, और जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयश सबीहा, अनस और रिहान ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म मजदार से नगमा एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में।

जी दोस्तों, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से मेल आया है सिद्धार्थ गोंडाने की जानिब से। आपके साथ हैं अर्चना गोंडाने, प्रणय कुमारी, प्रसिद्धि प्रतिभाताई गोंडाने और हीरामन शिंडे। गिलकदल नौशार से जमीला जावेद, इजहान लारेब, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अशरफ। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर। वाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटो टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम बकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम ने मेल भेजा है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, पायल जोशी जी ने मेल भेजा है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह ने मेल भेजा है। दोस्तों, आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में नगमा फिल्म कयामत से। सुनिए अपनी पसंद।

दोस्तों, प्रोग्राम के नाम अगली और आखिरी फरमाइश आप सभी दोस्तों की पसंद पर आप है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित व्याल, प्रथमेश देशमुख, शरद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी, पूजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा, प्रकाश अरोरा, चंदन अरोरा और अंकुश अरोरा, मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकार, सुशीला भटकार, अनिकेत अकिनेत भटकार, संबलपुर कोंकेर से ये मेल हमें मौसूल हुआ है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की जानिब से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश, सूरज कुमार दक से आपने हमें मेल भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से और गांव कल्याणा राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म इनकार से नगमा उषा मंगेशकर की आवाज में। सुनिए अपनी पसंद।

0: दोस्तों, इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: परसेंट जो हमारा इस साल का टारगेट आया था वो हमने कंप्लीट किया है। हमने कई सारे ट्रैक्टर्स इसमें इस साल इशू किए हैं, 18 इस साल का नहीं थे जो कि हमने इस साल के 18 किए हैं। इसके अलावा पावर टिलर्स हमने 27 इस साल ही दिए हुए हैं, हमारे पावर ऑपरेटर स्प्रेयर दिए हैं, बाकी छोटी छोटी चीजें जो इसमें है वो हमने फराहम की है जमींदारों को। और इसके अलावा हमारा एक यहाँ पे जो है फार्म बैंक मशीनरी जो है वो कांगन सब्डिविजन में हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसकी वसादत से जो हमारे किसान भाई है उनको हम जो खुद से खरीद नहीं सकते हैं वो क्रॉपिंग सीजन में मशीनरी जो है हायर करके ला सकते हैं, जिनकी छोटी छोटी फार्म्स है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वो किराए पे भी ले सकते हैं उनसे। इसके अलावा हमारा जो है प्रमोशन ऑयल सीड्स में है, जिसमें हमें अश्योर्ड इरिगेशन प्रोवाइड करना था फील्ड्स को, उसमें बोरवेल्स कुछ थे वो हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, और हमने जो है ज्यादा एरिया एक्सपेंड किया है इस साल ऑयल सीड में, ताकि हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा अपना ही जो है ऑयल निकले यहाँ से, मस्टर्ड ऑयल हमें फराहम हो। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आता है प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें एक जमींदार को हमें मल्टीपल वेंचर्स देने थे, जैसे कि हमें अगर वो धान भी लगाता है तो उसको हमें वेजिटेबल भी प्रमोट कराना था, उसको वर्मी कंपोस्ट भी वहां पे रखना था अवेलेबल, उसको मशरूम का भी एक यूनिट देना था, उसको बी हाइव्स भी देने थे, उसको बाउंड्री प्लांटेशन में फॉडर भी प्लांट करना था। तो उनकी मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए हम IFS में मुख्तलिफ हमारे फैमिली जो थे फार्म ऑपरेटिंग फैमिली, जिनको हमने 173 फैमिली को हमने इस साल कवर किया हुआ है, जिसमें सारी फैमिलीज को हमने जो उनके हमें मिले हुए थे जिनको हमें फराहम करने थे इंसेंटिव्स, उसमें हमने इनको वो इंसेंटिव्स फराहम किए हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो है, चूंकि इस साल भी आपने देखा होगा कि बारिशें कम होती है ज्यादातर, और हमारा रेन फेड एरिया जो है जहाँ पे बिल्कुल बारिशों पर ही मुनहसर है, पानी के वसाइल बहुत कम है, उनके लिए हमने जो है एक प्रोजेक्ट आता है प्रमोशन ऑफ रेन फेड एरियाज, उसमें हमें जो फार्मर्स है उनको मल्च वगैरह देना था, ताकि उनको कंजर्वेशन, ताकि उनका जो मॉइस्चर जो है वो कंजर्व रहे और वो प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट करें, ताकि उनको जो है पानी की कमी जो है वहां दूर हो जाए। इसमें कुछ बोरवेल्स हमें इस्टेब्लिश करने थे, डीप बोरवेल्स, इसमें हमें फार्मर्स को रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर्स देने थे।
1: जमींदार है, कुछ कल्टिवेटर्स है, वो अक्सर बेशतर शिकायत करते हैं जब भी आप हाई ब्रीड जो होते हैं ये वक्त के बाद दिया जाता है या ऐसा कभी अवेलेबल नहीं होते, और दूसरी बात और इनके लिए अवेयरनेस नहीं होती है, आप अवेयरनेस कैंप ब्लॉकों में या गांव में क्यों नहीं करते हैं?
0: हमारे अवेयरनेस कैंप भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा जो है इस बारी इस गुज़श्ता साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें हमें हर ब्लॉक में हर हफ्ते में प्रोग्राम करने थे, ताकि फार्मर्स को नई टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस फराहम हो सके। इसके अलावा सीड हम वक्त से पहले ही अपने सीड बैग्स में अवेलेबल करते हैं, तो इस टाइम अब तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई शिकायत आनी चाहिए और ना ही इंशाल्लाह आएगी।
2: और अब माइक मसर्रत शाह के हवाले।
3: शुक्रिया तजम्मुल। सामईन, ये बात बिला खौफ तर्दीद कही जा सकती है कि महकमे ज़राअत की जानिब से अमलाई जा रही स्कीमों ने जम्मू कश्मीर के ज़रई मंजरनामे को तब्दील करने और ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में एक काबिल-ए-क़दर रोल अदा किया है। ताहम ये बात भी एक मुसलिमा हकीकत है कि सरकार के फलाही प्रोग्रामों से मुतलिक आम लोगों, खास तौर से दूर दराज इलाकों के पास कोई खास जानकारी पहुंच नहीं पा रही है। गांधरबल जिला के किसानों की शिकायत है कि महकमे ज़राअत अगरचे जिला के ज़राई शोबे को तरक्की से हमकिनार करने की खातिर काफी कोशिशें कर रहा है, ताहम कहीं किसानों को फराहम किए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के बीज मयारी नहीं होते और कहीं सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने ऐसे ही कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने अपने तासुरात यूं बयान किए।
4: असल ज़ोहर अहमद सोफी, जिला गांधरबलस में रोजान, जमींदारी से ताल्लुक थावान, जन महकमे एग्रीकल्चर पन्ने हिसाब से कोशिश करान, मगर पतिमन दोन वरियन हिस मे एक्सपीरियंस उस मे पटेटो बीज इन निश हासिल कर सह ना द्रा मयारी कहें तथा द्रा फसल बिल्कुल कहें, बह महकमे गुजारिश कर तम स्टैंडार्ड दल ताकि लूकन मिल तम सायदे।
5: मेरा नाम उबैद है और मैं जिला गांधरबल के मनगाम इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं जमींदारी के साथ वाबस्ता हूँ। जिस तरीके से

0: बात है महकमे एग्रीकल्चर की तो उनकी जानिब से वो कोशा है अपनी तरफ से कि जमींदारों को जो है वो फायदा पहुंचे और वो अपनी तरफ से बिल्कुल मिनो अन काम कर रहे हैं। हम उनको सराहते हैं और हर एक जमींदार उनको सराहता है, लेकिन ताहम जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरीके से सीड्स में जो है मॉडिफिकेशन होनी चाहिए और लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के सीड जो है वो जमींदारों को फराहम किए जाने चाहिए ताकि उसमें जो यील्ड है वो अच्छा निकल के आए और ऐसा सीड उनको बराबर मार्केट में लाना चाहिए जिससे कि जो बीमारी वगैरह है वो उन सीड्स पे असर न करे। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा वक्त में महकमा जो है वो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स का भी इनेकाद करेगा और साथ साथ ऐसी सीड्स भी मार्केट में लाएगा जो न सिर्फ डिजीज के लिए जो है वो सख्त हो बल्कि वो उनका यील्ड भी बहुत अच्छा हो।
1: और अब माइक रिहाना अजीज के हवाले।
2: शुक्रिया मसरत। समीन, ज़राअत का शोबा किसी भी मुल्क व कौम की मईशत को तकवीयत बख्शने में अहम किरदार अदा करता है और हुकूमत की कोशिश है कि ज़राअत के शोबे के फरोग को मद्देनजर रखते हुए लोग साइंसी बुनियादों पर ज़रई सरगर्मियाँ अंजाम दें। इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत ने तरह तरह की स्कीमें और प्रोग्राम मरतब किए और इन प्रोग्रामों के तवस्त से जहाँ किसानों को तरबियत और मयारी बीज फराहम किए जाते हैं वहीं लोगों को माली मदद फराहम की जाती है। किसानों में सरकारी स्कीमों से मुतलिक बेदारी पैदा करने के गरज से महकमा ज़राअत जानकारी कैंपों का इनेकाद भी कर रहा है। हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए मेंबर असेंबली कंगन मियां महर अल्ताफ ने कहा,
3: स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुई भी हैं, लास्ट ईयर भी कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई थी पर जो पेंडिंग थी जो नहीं हुई इंशाल्लाह ताला वो इस साल हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लास्ट ईयर भी इनने एक दो कैंप किए थे अवेयरनेस के, मैंने डिपार्टमेंट को बोला था और करने के लिए। इस साल अगर लास्ट ईयर हमने अगर फॉर एग्जाम्पल 2 किए, इस साल हम 5-6 और करवाएंगे और हर ब्लॉक में करवाएंगे, पर इस साल उसको ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। गांधरबल जो है ये सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी वजह से इसमें जो है वो स्पेशल ख्याल रखा जाए। लोगों के पास यहाँ पे एग्रीकल्चर के सिवा कोई उतना बड़ा आमदन का जरिया नहीं है, तो जितनी ज्यादा स्कीम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट यहीं की जाए और जो नई से नई स्कीम आए वो यहीं से स्टार्ट की जाए।
2: आप माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
4: शुक्रिया रिहाना अख्तर। सामईन, हमारी मईशत चूंकि ज़रई मईशत है और हमारी आबादी का कमोबेश 80% हिस्सा दिही इलाकों में रिहाइश पजीर है, लिहाजा ये बात बिला खौफे तरदीद कही जा सकती है कि ज़राअत का शोबा हमारी कुलहम घरेलू पैदावार में काबिले कदर हिस्सा अदा करने की सलाहियत रखता है। इस सिलसिले में इंतहाई जरूरी है कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों को जमीनी सतह पर पुरअसर तरीके से रुबे अमल लाने के लिए एक ऐसे अमलावरी निजाम को तश्कील दिया जाए जिसमें एहतिसाब मुमकिन हो या जिसमें जानिबदारी और बेपरवाही का कहीं नामो निशान न हो। ये भी जरूरी है कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय ज़राअत के शोबे में रोजगार तलाश करें। इस सिलसिले में अगरचे पहले ही कामयाबी की कुछ कहानियां रकम की जा चुकी हैं, ताहम इस शोबे में अभी भी बहुत कुछ करने की सलाहियत और जरूरत है जिसके लिए अवाम और लोगों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
5: इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लोन, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
6: समीन शोबे खबर की पेशकश जिलानामा आप सुन रहे थे। आज का जिलानामा ज़िले गांधरबल से मुतालिक था।

0: समीन, रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के 2रे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग

0: केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: छह स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है से फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
5: श्री सांघवी ने दक्षिण गुजरात के

0: तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
2: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 390,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुच्चेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक IED विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष

0: नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
1: इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव ज्यादातर 8.8 मीटर तो एफ एम आखिर 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पे समय वलू कह बोझ।

Allah'a emanet olun.

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय शब के 11 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में आप खबरें सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the election.

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, इसके अलावा आप हमें DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले कल यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों पर एक नज़र डालते हैं।

सुबह 6:35 पर प्रोग्राम समाप्त करें सुबुगाही मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत लाइव पयाम सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर सुबह 8:15 पर प्रोग्राम नशर होगा सैन तारीख़।